मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर और FM बैंड 103.5 मेगा हर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 7वीं तिथि यानी 24 मई सन 2026 सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर हिंदी समाचार के बाद आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: Expanded commercial ties. अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब सुनते हैं आज का चिंतन। मनुष्य को आवश्यकताओं और इच्छाओं के भेद को अंतर्मन से समझना चाहिए। इच्छाएं मनुष्य को एक अंधे कुएं में धकेल देती हैं। एक पूर्ण होती है और 10 नई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। वही आवश्यकताएं मनुष्य को साधारण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं और वो अपना अधिक समय प्रभु भक्ति, जीव कल्याण और सेवा में व्यतीत कर सकता है और यही प्रभु प्राप्ति का मार्ग भी है। अभी आप सुन रहे थे चिंतन। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना।

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति होती है और यही हमारा परम कर्तव्य भी है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो मात्र प्रभु की आराधना करता है, ईश्वर स्तुति में लीन रहते हुए अपने सभी कर्म पूर्ण करता है।

ईश्वर में सच्ची लगन हो तो भक्ति अवश्य सार्थक होती है। प्रभु की भक्ति मनुष्य को शक्ति और विश्वास प्रदान करती है।

श्रोताओं, इस संसार रूपी भवसागर में हमारा मार्ग रोकने के लिए माया, मोह, लोभ, क्रोध आदि जैसे अनेक दानव हैं, लेकिन ईश्वर भक्ति ही वो उपाय है जिस पर चलकर हम अपनी सत्य की राह प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को सार्थक बना सकते हैं।

जीवन में सकारात्मक होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम सकारात्मक होंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। तभी कहते भी हैं कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। प्रभु का भजन करते हुए अपने कर्म और कर्तव्य को पूर्ण करना चाहिए।

आप महाकल्याणकारी हैं, आपकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसीलिए हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सभी को सद्बुद्धि दें और नेक कर्म करने की शक्ति प्रदान करें।

अभी आप सुन रहे थे ईश्वर स्तुति का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

वन गमन के समय श्री राम के शोक में व्याकुल अयोध्या के नरनारी किसी प्रकार भी उनका साथ छोड़ने को राजी नहीं हुए। वे रथ के पीछे खींचे से चल दिए। प्रेम युक्त वचनों द्वारा उन्होंने लोगों को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु स्नेह डोर में बंधे लोग किसी भांति लौटने को तैयार नहीं होते। शोक और परिश्रम से थके लोग जब रात्रि में सो गए तो उन्हें देवताओं की माया से गाढ़ी नींद आ गई। दोपहर रात गए श्री राम ने सुमंत्र को रथ कुछ इस प्रकार हांक ले चलने को कहा कि पृथ्वी पर उसके पहियों के निशान ना दिखें। इस प्रकार शिव के चरणों में सिर नवाकर सीता और लक्ष्मण सहित राम अयोध्या के नरनारियों को सोता छोड़कर चल दिए। सवेरा होने पर जब लोग जागे तो श्री राम को न पाकर हाहाकार मच गया। कहीं रथ के पहियों के निशान तक नहीं मिले। संताप से भरे लोग प्रलाप करते अयोध्या लौट चले। उधर सीता तथा मंत्री समेत दोनों भाई गंगा तट पर बसे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। रथ से उतरकर उन्होंने पतित पावनी गंगा को हर्षित होकर प्रणाम निवेदित किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।

0: किसान बहनों और भाइयों, राम राम भाइयों। आज कृषि की बातों में चर्चा करेंगे धान की नर्सरी तैयार करने के बारे में। भाइयों, धान हमारी एक मुख्य फसल है और बहुत बड़े क्षेत्र में धान की खेती करी जा है। इसमें देखो, जितनी अच्छी हमारी जो नर्सरी तैयार होगी उतना ही बढ़िया आगे हमें इसकी पैदावार मिलेगी। उसमें देखो, सबसे पहली बात तो हम ये करें कि भाई जो नर्सरी बोने का समय है वो कौन सा है। इसमें जो कम अवधि वाली बोनी किस्में हैं उनकी जो बिजाई है हम 15 मई से लेकर और 30 जून तक कर सकते हैं, और जो मध्यम अवधि वाली किस्म हैं उनकी बिजाई हम 15 मई से लेकर और 30 मई के बीच में हमने उसकी करनी पड़ेगी। इसके लिए हम देखो 10 किलो बीज यदि ले रहे हैं तो 10 किलो का हिसाब तो हम बात करें तो उसमें 1 किलो नमक ले लें हम और 10 लीटर पानी ले लें, और फिर उस बीज को धीरे धीरे उसमें डुबो दें और अड़के से हाथ से उसको हिलाते रहें, और जो रोगग्रस्त बीज हैं उनको हम ऊपर तैरने जब वो लग जाएं उनको निकाल दें, चाहे जैसे चाय छानने वाली जो छलनी हो उससे भी हम निकाल सकते हैं, जिससे जो खराब बीज है वो ऊपर तैर जाए और उसको हम बाहर निकाल देंगे, और जो बाहरी बीज है और बहुत अच्छा बीज है स्वच्छ पानी में उसको फिर हमने 3 से 4 बार उसको धो देना है जो बाकी नीचे बैठ गया है, और उसके अंदर ये ध्यान रखना है जो नमक का असर है वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसमें इस बात का भी भाइयों हम ध्यान दें कि भाई जो फफूंद वाली दवाई है उन पे हम जो बीज को उपचारित कर दें, और इसमें जैसे हम बात करें कि 10 ग्राम कार्बेंडाजिम और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये दवाई ले लें और 10 लीटर पानी ले लें। इसमें 10-12 किलो बीज को हम लगभग पूरे के पूरे कोशिश करें कि हम उसको 24 घंटे तक भिगो कर रखें, और फिर जब वो उपचारित बीज जो हमने बाहर निकाला है उसको हम कुछ समय के लिए एक बोरी के नीचे दबा के रख दें जहाँ पे हवा ना जावे, और उसमें जब वो
1: अंकुर आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान विषयान समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं संप्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचने इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य ईशा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सह प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढयितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरंतर प्रगतेः विषये प्रधानमंत्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शांति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च संभाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शांतिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतृणाम एकेन प्रतिनिधिमंडलेन सह कनाडा देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मंत्रालयेन सूचितं यत् श्री गोयल व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47-2000 वर्ष पर्यन्तं विकसितं भारतं इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते आईसीएफ इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तर प्रदेशाय, पूर्वीय मध्यप्रदेशाय, विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी संचेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तर पश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपय क्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामि 7 पर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रो लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां 71 शतधावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 7 क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं मुंबय्याम् अपराह्णे 3:30 मुंबई इंडियंस दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते, ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वंद्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
3: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यवसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा के 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कैनेडाई डॉलर तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Anuja Kumar. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with the US Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues including regional and global peace and security. U.S. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting. He called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Modi asserted that India and the United States will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts in West Asia through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio shared U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. He called India a vital partner to the United States. The government has published draft rules under the Viksit Bharat Ji Ramji Act 2025 for wider public consultation. The Rural Development Ministry said that any person, stakeholder, organization or institution may submit objections or suggestions on the draft rules for consideration by the 21st of next month. The Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari announced this in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister J.P. Nadda yesterday. The existing beneficiaries under the state health scheme, Swasthya Sathi, will be incorporated into the Ayushman Bharat scheme. The Memorandum of Understanding in connection with the Ayushman Bharat Arogya Mandir will be signed in June in New Delhi. Mr. Adhikari said that a proposal has been sent to the centre regarding an increase in the number of PM Jan Aushadhi Kendras in West Bengal from the existing 117 to 469. The chief minister also said that proposals for new medical colleges in Alipurduar, Kalimpong and South Dinajpur districts, as well as a new AIIMS for North Bengal, have also been sent to the central government. In Maharashtra, a 1,500-page charge sheet has been filed before the court at Nashik in connection with the alleged sexual assault and attempted religious conversion case linked to a TCS facility in the city. According to an SIT chief, Sandeep Mithke, the charge sheet was filed yesterday against four accused, Martin Patel, Nida Khan, Danish Sheikh and Tosif Attar. He said additional charge sheets related to 7 to 8 persons connected to offences are expected to be filed within the next 3 to 4 days. U.S. President Donald Trump said that a deal with Iran, including opening of the Strait of Hormuz, has been largely negotiated after consultation with Israel and other allies in the region. Announcing progress on his Truth Social platform, Trump said final aspects and details of the deal are being discussed and will be announced shortly. President Trump said he had spoken with leaders from Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan and Bahrain, along with Israel. Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Baghail earlier today said to the state television that the U.S. and Iranian positions had been converging in the last week, but warned that did not mean agreements would be reached on key issues. A major security scare has unfolded near the White House after multiple gunshots were heard close to the presidential complex in Washington, prompting an immediate lockdown response from law enforcement agencies. The U.S. Secret Service shot down a person, reportedly the suspect, near the scene, while a bystander was also struck down during the chaos. During the time of shooting, U.S. President Donald Trump was inside the White House. The IMD has forecast severe heat wave conditions today in parts of Delhi, Haryana, Chandigarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha. The weather agency also predicted heavy rainfall today in parts of Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. And that is the end of this news bulletin.
5: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रूपरेखा।

आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसका अनुप्रसारण आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कार्यक्रम घर आंगन आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। आज के विषय रहेंगे राष्ट्रमंडल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जंगली बकरी दिवस, गोवा स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। दोपहर 1:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम आपके अनुरोध।

Tudo bem. शाम 5:30 पर होगा कार्यक्रम युवा संसार। विषय रहेंगे राष्ट्रमंडल दिवस और सींगों वाली बकरी का संरक्षण दिवस। साथ ही आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत युवा पसंद। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 7:30 पर। कार्यक्रम सुगम संगीत हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे रात्रि 8:25 पर। आज रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत।

कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा शाम 6:20 पर। विषय रहेगा कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन। साथ ही आप सुनेंगे बातचीत गर्मियों में मछलियों की देखभाल। जानकारी देंगी डॉक्टर सुनीता रानी। शाम 7 का समय रहेगा कार्यक्रम ग्रामीण संसार का। आज का विषय रहेगा समय सारणी और साथ ही आप सुनेंगे कार्यक्रम भेंट वार्ता एक कलाकार से। आज कलाकार होंगी लीला सैनी। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। आज का विषय रहेगा बेल वाली सब्जी फसलों की देखभाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारे आज के कलाकार हैं हंसराज हंस।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थे हंस राज हंस। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और साथ ही स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त हितेश का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज है रविवार यानी छुट्टी का दिन। हम सभी के दिलों में इस दिन ने एक खास जगह बनाई है। रविवार के दिन हम बहुत से काम करते हैं, खुश होते हैं और बहुत मेहनत भी करते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। ये आप सभी जानते हैं कि ज़िंदगी खुशनुमा तभी होती है जब हम संघर्ष करते हैं, क्योंकि संघर्ष से मिले सुख का स्वाद अमृत के समान ही होता है। साथियों, हर जीव का इस धरती पर आगमन ही संघर्ष के साथ शुरू होता है और जीवन मिलने के बाद हर सांस के लिए संघर्ष करना होता है ताकि जिंदगी को एक सही मुकाम पर पहुंचाया जा सके। हम और आप सभी संघर्ष शब्द के महत्व को समझते हैं, इस शब्द के गौरव को, इस शब्द की खूबसूरती से परिचित हैं, भली भांति अवगत हैं। एक छोटी सी चिड़िया भी पहले पहल उड़ने के लिए करती है संघर्ष और फिर एक एक दाने के लिए ताउम्र जारी रहता है ये सफ़र, क्योंकि इस सफ़र में फतेह करने होते हैं कई मैदान।

वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य नद सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ये चंद पंक्तियाँ साहस को दर्शाती हैं। साथियों, संघर्ष के बाद जो सुख उपजता है उसका इतिहास भी सदियों तक याद किया जाता है। राम ने अमर्यादा के खिलाफ मर्यादा का संघर्ष किया। कृष्ण ने भी मानव जीवन को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए साम दाम दंड भेद के सिद्धांत को खूबसूरती से बताया। खुद से संघर्ष करते हुए सिद्धार्थ ने राजपाट त्याग दिया। लड़ते रहे खुद से, तब जाकर बुद्धत्व मिला और फिर मानव को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखलाया। और भी जाने संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो मशहूर नहीं हैं, लेकिन उनका संघर्ष भी साथियों किसी नामी व्यक्ति से बिल्कुल भी कम नहीं है। संघर्ष तो बस साहस है, हिम्मत है, हौसला है, शौर्य है। संघर्ष बस एक राह है जब हम आगे बढ़ते हैं जोश से और अपने आप रगों में खून दौड़ने लगता है।

साथियों, पृथ्वी पर जब से जीवन है तभी से सभी जीवों का एक ही लक्ष्य है। आज भी ऐसा ही है। हम और आप भी ये उद्देश्य लेकर हर दिन की शुरुआत करते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, घर परिवार, बाल बच्चे, अंदर बाहर हर जगह सब खुश हों, शांत हो। प्रयास भी पूरा करते हैं, पर क्या हर पल हम खुश हो पाते हैं? साथियों, असल में हर शख्स के लिए सुख के अलग मायने होते हैं। इसकी तलाश में हर कोई भटक रहा होता है, पर तलाश है कि पूरी नहीं होती। हम हर रोज सुख चाहते हैं, हर पल चाहते हैं। बचपन में पढ़ाई के लिए संघर्ष करते हैं, रातों को जागकर, खेल कूद को छोड़कर, भूख प्यास को भूलकर पढ़ते हैं ताकि सफल हों, अच्छी नौकरी मिले, अपने पांव पर खड़े हो सकें। खुद के साथ साथ हम सोचते हैं कि अपने से जुड़े हर शख्स की बेहतरी के लिए। पढ़ाई, नौकरी, विवाह, घर, बच्चे, नाते पोती, सैर, पहाड़, नदियाँ, समुद्र, आकाश, फूल, खुशबू, जाने क्या क्या हम सोचते हैं सुखी होने के लिए। पर सुख तो मिला पर ठहरा नहीं। जाने अनजाने दिल में आ ही जाता है कभी ये खालीपन और सूनापन। साथियों, इसी रहस्य को, इसी पहेली को गौतम बुद्ध ने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी सटीकता से समझाया है। कुछ इस तरह कि सुख को चिर मानना, स्थाई मानना ही असल में दुख का एक बड़ा कारण होता है, जबकि सुख तो क्षणिक ही होता है। संघर्ष के बाद उपजी अनुभूति ही सुख है। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतना ही बड़ा सुख भी होगा।

साथियों, थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था कि इतिहास कभी आसान जीवन जीने वालों को याद नहीं रखता, इसीलिए आराम मतलबी को छोड़ते हुए हमें संघर्ष करना चाहिए और फिर सुख और संतुष्टि को महसूस करना चाहिए। इससे भी एक कदम आगे जाते हुए थोन चोइनार्ड ने कहा कि शिखर पर पहुंचना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि आप किस तरह चढ़ाई करते हैं। साथियों, सच है, लोगों को किसी की सफलता नहीं बल्कि उस सफलता को पाने के लिए किया गया संघर्ष ज़्यादा प्रेरणा देता है। हम यही दुआ करते हैं खुदा से कि आप भी अपने जीवन को कुछ यूं संवारें कि आप भी किसी को प्रेरणा दे जाएं। किसी को तो प्रेरणा दें, बेशक अपने आप को, अपने साथी को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, परिचितों को या किसी अनजान को। साथियों, मेहनत करें, हौसला रखें, हिम्मत करें, संघर्ष करें और सदा खुश रहें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
4: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
2: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
3: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
2: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
5: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
8: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
2: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटना स्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरत नाज।
9: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
2: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasth Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against four accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. U.S. President Donald Trump says Iran deal, including reopening of Strait of Hormuz, largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a four-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
11: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives, and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. With Suparna Sakya, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
10: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. He shared US perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. Prime Minister Modi asserted that India and the United States will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio called India a vital partner to the United States. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Executive Vice President, Global Public Policy and Corporate Strategy at Boeing Company, Jeff Shockey, in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said that during the meeting, both sides discussed measures on advancing India-US cooperation in aviation and aerospace manufacturing. He added that the meeting also followed discussions focused on developing maintenance, repair and overhaul opportunities, skilling, supply chains, innovation and growing India's role as a trusted global manufacturing and engineering hub. The Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari announced this in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister JP Nadda yesterday. The existing beneficiaries under the state health scheme Swasthya Sathi will be incorporated into the Ayushman Bharat scheme. The memorandum of understanding in connection with the Ayushman Bharat Arogya Mandir will be signed in June in New Delhi. Mr. Adhikari said that a proposal has been sent to the centre regarding an increase in the number of PM Jan Aushadhi Kendras in West Bengal from the existing 117 to 469. The Chief Minister also said that proposals for new medical colleges in Alipurduar, Kalimpong and South Dinajpur districts, as well as a new AIIMS for North Bengal, have also been sent to the central government. In Maharashtra, a 1,500-page charge sheet has been filed by the state special investigation team before a court in Nashik in connection with the alleged sexual assault and attempted religious conversion case linked to a TCS facility in the city. According to SIT Chief Sandeep Mitke, the charge sheet was filed yesterday against four accused, Martin Patel, Nida Khan, Danish Sheikh and Tosif Athar. He said additional charge sheets related to 7 to 8 persons connected to offences are expected to be filed within the next 3 to 4 days. Police said the first case in connection with the matter was registered at the Deolali Camp Police Station on the 25th of March. Officials further stated that 2 cases have been registered against Nida Khan, while 6 to 9 cases each have been registered against the other accused. Health and Family Welfare Minister JP Nadda has said that along with healthcare infrastructure, training of health experts and medical professionals is equally important. He made these remarks while addressing the 23rd convocation ceremony of the National Board of Examinations in Medical Sciences in New Delhi yesterday. Mr. Nadda emphasized that doctors serve as the software of the healthcare system, while infrastructure and other facilities function as the hardware for the nation.
12: We as policymakers give you infrastructure, but that is only going to remain as a hardware. The software is the doctor. The software are the people who are working in the field of health. I'm also happy to note that today we have started 11 new courses. I really congratulate NBEABS for this initiative that they have taken.
10: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at EIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. The government has published draft rules under the Viksit Bharat Ji Ramji Act 2025 for wider public consultation. The Rural Development Ministry said that any person, stakeholder, organization or institution may submit objections or suggestions on the draft rules for consideration by the 21st of next month. Our correspondent has the details.
5: The Viksit Bharat Ji Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. The ministry said that the draft rules, including transitional provisions rules, national level steering committee rules, Central Gramin Rojgar Guarantee Council rules, administrative expenses rules and grievance redressal rules, have been placed in the public domain for consultation. The new act places strong emphasis on timely, transparent and accountable wage payments. The Act also provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time. The VBG Ramji Act 2025 was notified on the 11th of this month for commencement across all the states and union territories with effect from 1st of July this year. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
10: U.S. President Donald Trump said that a deal with Iran, including opening the Strait of Hormuz, has been largely negotiated after calls with Israel and other allies in the region. Announcing progress on his Truth Social platform, Trump said final aspects and details of the deal are being discussed and will be announced shortly. President Trump said he had spoken with leaders from Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan and Bahrain, along with Israel. Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakai earlier told state television that the US and Iranian positions had been converging in the last week, but warned it did not mean agreements would be reached on key issues and accused the Americans of contradictory statements. A ceasefire in Iran was agreed on 8th of April, and since then, Washington and Tehran have engaged in talks over a long-term peace deal. In the United States, a person who opened fire near a White House security checkpoint was shot dead by Secret Service officers after they returned fire. The Secret Service said in a preliminary statement posted on X that the suspect near 17th Street and Pennsylvania Avenue pulled a weapon from his bag and began firing. Officers responded by opening fire, injuring the suspect, who was later declared dead at a hospital. The suspect was identified as a 21-year-old man, according to a law enforcement official. A bystander was also injured in the incident. U.S. President Donald Trump was inside the White House at the time of the incident. This was the third gunfire-related security incident near the president in the past month. President Draupadi Murmu will present Padma Awards for the year 2026 at the civil investiture ceremony tomorrow. On this occasion, we bring 16 programs as part of our series, People's Padma on Akashwani. In these episodes, you would get an insight into the work and life of Padma awardees. These episodes would be broadcast today and tomorrow on 100.1 Akashwani Gold. It can also be heard on News on EIR app and News on EIR official YouTube channel. Stay tuned to Akashwani today and tomorrow from 9:10 a.m. onwards. The India Meteorological Department, or IMD, has forecast severe heat wave conditions today in parts of Delhi, Haryana, Chandigarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha. Similar weather conditions are also likely in places over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Punjab, Rajasthan, Telangana, West Madhya Pradesh and West Uttar Pradesh. The weather agency also predicted heavy rainfall today in parts of Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. In Meghalaya, a vibrant musical evening was held last evening at the State Convention Hall in Shillong to mark the 90 years of Akashwani's service to the nation as a public broadcaster. Jointly organized by Akashwani Shillong and Akashwani Northeastern Services, the musical evening featured dynamic performances by leading artists and bands of Meghalaya. On to sports, Gurinder Veer Singh has clinched the gold medal in the men's 100-meter event at the 2026 Athletics Federation Cup in Ranchi with a new national record timing of 10.09 seconds. He improved his previous personal best of 10.17 seconds and comfortably surpassed the Commonwealth Games qualification mark of 10.16 seconds. Animesh Kujur secured the silver medal with a timing of 10.2 seconds, while Pranav Pramod took bronze, clocking 10.29 seconds. In the men's 400-meter event, Vishal TK won the gold medal with a new national record of 44.98 seconds, becoming the first Indian athlete to break the 45-second barrier in the event. And in IPL cricket, riding an unbeaten 101 runs by skipper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in Lucknow last night. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants, Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
13: Thank you, Anuja. The visit of U.S. Secretary of State Marco Rubio and his meeting with Prime Minister Narendra Modi has been prominently covered by most of the newspapers. PM backs peace push with renewed push to repair ties in meeting with Rubio is a front page headline in Hindustan Times, while the Tribune writes, India flags energy crisis. State Secretary tows U.S. oil, extends Trump's invite to Modi to visit White House. Another headline in Hindustan Times says, headway in Iran-U.S. talks raises truce hopes. Quoting Defense Minister Rajnath Singh, a Sunday Pioneer headline says, India to be biggest weapon exporter in 25-30 years, adding the government wants private sector share in defense production to rise to 50%. The Hindu reports on new law Viksit Bharat Jiramji replacing the 20-year-old MG Narega, set to come into effect from 1st of July, with draft rules open for feedback till 3rd week of June, under the headline, Big Poor States to get higher funds under government's new rural job scheme. Hindustan Times editorial writes how Sikkim showcases a thoughtful vision of development while respecting tradition and an exemplary social harmony to its education sector, opening the doors to the future. More red, white and blues for green card applicants, states the Economic Times, as new policy for U.S. immigration may force permanent residency seekers to return home for paperwork. And finally, the Sunday Times reports that only 6 states now have fertility rate above replacement level. The paper refers to latest sample registration report of 2024. And with that, it's back to Ganucha.
10: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. H. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasthya Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against four accused in Nashik DCS sexual assault and religious conversion case. US President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderweep Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
14: मीडियम वेव तो 62.64 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर डीटीएच और न्यूज ओन एआईआर पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब बच्चे सुनेंगे अपना साप्ताहिक आयोजन बाल कुंज।

सभी साथी मिलकर बोलेंगे जय हिंद। जय हिंद साथियों, आज मैं आयुष आप सभी का इस बालकुंज कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। साथियों, कॉमनवेल्थ डे उन देशों में मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। यह दिवस महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन 24 मई पर मनाया जाता है। साथियों, आज 24 मई को हम कॉमनवेल्थ डे या फिर राष्ट्रमंडल दिवस मनाए रहे हैं। यह दिवस राष्ट्रमंडल देशों के बीच एकता, सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। साथियों, राष्ट्रमंडल कई स्वतंत्र देशों का समूह है जो विभिन्न देशों की संस्कृति, परंपरा और आपसी संबंधों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करता है। साथियों, भारत भी राष्ट्रमंडल का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। हम सभी इस दिवस से अंतर्राष्ट्रीय एकता और सहयोग का महत्व सीख सकते हैं। साथियों, हमें इस दिवस पर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी देशों के साथ मित्रता और सहयोग की भावना बनाए रखेंगे और विश्व शांति के लिए कार्य करेंगे। साथियों, आज मैं आप सभी को एक और जानकारी देना चाहूंगा, विश्व फुटबॉल दिवस। साथियों, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल के महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। फुटबॉल केवल एक खेल ही नहीं है बल्कि लोगों को जोड़ने का माध्यम भी है। यह खेल टीम भावना, अनुशासन और मेहनत की सीख देता है। साथियों, फुटबॉल खेलने से शारीरिक विकास होता है और मानसिक सक्रियता भी बढ़ती है। बच्चों और युवाओं में फुटबॉल बहुत लोकप्रिय है। साथियों, विश्व फुटबॉल दिवस हमें खेलों के महत्व को समझने और स्वस्थ जीवन अपनाने की प्रेरणा देता है। साथियों, क्यों ना आप सुन ले एक मधुर सा गीत।

0: गीत कैसा लगा साथियों?
1: बहुत अच्छा आयुष।
0: क्यों ना अब हम बात कर ले अपने साथियों से। तो हमारा पहला साथी अपना नाम बताए।
2: अनन्या।
0: आज आप हमें क्या सुनाएंगे?
2: एक कहानी
0: सुनाइए।
2: एक छोटा सा तालाब था। तालाब के किनारे एक बुगला रहता था। बुगला बहुत चालाक था। अब वह बूढ़ा हो गया था। उसे कम दिखाई देता था, इसी कारण वह मछली नहीं पकड़ पाता था। एक दिन उसने सभी मछलियों को बुलाया और बोला, यह तालाब सूख रहा है। मैं तो गांव के पार जंगल में एक तालाब देख आया हूँ, वहीं रहने जा रहा हूँ। यह बात सुनकर सभी मछलियाँ चिंता में पड़ गई। उन्होंने बुगले से कहा, हमें भी तो तालाब सूखने पर मर जाएंगी। बुगले दादा, हमारी मदद कीजिए, हम तो आपकी तरह उड़ नहीं सकती, हमें बचा लीजिए। बुगला बोला, वैसे तो मैं अब ज़्यादा उड़ नहीं पाता, पर तुम्हारे साथ इतना लंबा समय बिताया है, तुम्हें मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकता। चलो एक एक करके अपनी चोंच में दबाकर तुम सबको वहाँ ले चलता हूँ। मछलियों ने बुगले की प्रशंसा की और बुगले ने सबसे पहली मछली को चोंच में दबा लिया और उड़ा चला। जंगल में कोई तालाब न था। बुगला एक चट्टान के पीछे बैठकर मछली को चट कर गया। थोड़ी देर में उड़ता हुआ फिर आ पहुंचा। अब दूसरी मछली ले उड़ा। उसे देखकर सभी मछलियां पहले मैं करती उछल पड़ी। वह मस्ती किससे दावत उड़ाता। कुछ ही दिनों में सभी मछलियां मर गई। तालाब के किनारे रहने वाला केकड़ा बोला, बुगले दादा मुझे भी ले चलो ना। बुगला ने कहा, हाँ हाँ तुम भी चलो। बुगले की गर्दन पर सवार केकड़े ने आकाश से ही बेचारी भोली मछलियों के कंकाल देख लिए। उसने बुगले की गर्दन को जकड़ लिया और बुगला वहीं मर गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, बुरा काम करने वाले के साथ बुरा ही होता है। धन्यवाद।
3: पर एक बात कहेंगे अनन्या, कि ये बुगला है या पक्षी का नाम बगुला है? इसे कहते हैं बगुला। बोलिए
1: बगुला।
3: चलिए तालियां बजाइए।
0: हमारा अगला साथी अपना नाम बताए।
4: सूर्यांश।
0: आज आप हमें क्या सुनाएंगे?
4: एक कविता।
0: सुनाइए।
4: जोकर मुझे बना दो जी, मोटी तोड़ लगा दो जी, नाक गाल को खूब सजा कर, बंदर जैसे दांत दिखाकर, रोतों को भी खूब हंसाऊं, हंसा हंसा कर आंसू लाऊं जी, करता जोकर बन जाऊं, जोकर मुझे बना दो जी, उल्टा सीधा मुंह बनाकर, छोटी सी एक पूंछ लगाकर, बच्चों का टट्टू बन जाऊं जी, करता जोकर बन जाऊं, जोकर मुझे बना दो जी, मोटी तोड़ लगा दो जी। धन्यवाद।
0: आपने हमें बहुत अच्छी कविता सुनाई सूर्यांश। अब हमारा अगला साथी अपना नाम बताए।
5: सृष्टि।
0: आज आप हमें क्या सुनाएंगे?
5: एक कविता।
0: सुनाइए।
5: बहुत दिनों से सोच रहा था, थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले, लेकिन एक इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई, हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लगे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो सकता है कहीं शांत शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों, तो विनती है यही, कभी मत खोना उस दुनिया को, पेड़ों को मत काटने देना, मत चिड़ियों को रोना, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें काटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। धन्यवाद।
0: सृष्टि, आपने बिल्कुल सही कहा, पेड़ हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। चलिए अब सुन लेते हैं CIET द्वारा तैयार किया गया ये कार्यक्रम।
6: बताने आज भैया कौन सी कहानी सुनाएंगे? कैसे हो तुम? वाह वाह वाह वाह शाबाश, बस बस बस बस भाई कमाल है, आज तो इतने सारे बच्चे आए हुए हैं।
7: हमें कहानी भी तो सुननी थी।
6: यानी कि सारे के सारे कहानी सुनना चाहते हैं? लेकिन पहले मेरा सवाल है आपसे कि ग से क्या होता है?
8: गाय।
6: ग से गाय और ग
8: से गोभी।
9: ग से गोभी।
10: ग से गमला।
6: बिल्कुल सही कहा तुमने।
11: गाजर का हलवा।
6: गाजर का हलवा। क्या बात है, गधा। तो ठीक है बच्चों, आज हम जो कहानी सुनेंगे ना, वो एक गवैये गधे की ही कहानी है और नाम है ग से गवैया।
11: ये गवैया क्या होता है?
6: यानी कि जो
12: गाना गाता है।
6: हाँ, शाबाश। तो इसी बात पर बजाओ ताली।
11: मेरी मम्मी भी गाना गाती है।
6: अरे वाह, बड़ी खुशी की बात है। हाँ तो बच्चों, आज हम ग से गवैये की कहानी ही सुनाते हैं आपको। एक गाँव में कहीं से दो मित्र आए। मित्र यानी
8: दोस्त।
6: शाबाश शाबाश। हाँ तो बच्चों, एक
13: सुर में गाना सीखिए। पधनी सा
6: गाय और ग से
8: गधा।
6: और हाँ, गाय जो होती है वो कैसे रंभाती है, कैसे बोलती है? हाँ, हाँ। तो बच्चों, होता यह है कि गधे को गाना गाने का बहुत शौक था। जब उसका पेट भरा होता तो वो मजे से देर तक गाना गाता, और तेज आवाज में जब वो गाना गाता तो दूर दूर तक उसकी आवाज पहुंचती थी। ऐसे। हाँ तो बच्चों, इसी तरह वो गाना गाता। और हाँ, गाय को गाजर और गधे को गोभी बहुत पसंद थी। गधे को ग से क्या पसंद था?
8: गोभी।
6: गाय को ग से क्या पसंद था?
8: गाजर।
6: गाजर। ग से गाजर। शाबाश। अच्छा, एक दिन बच्चों, गोभी का खेत देखकर गधे का मन बहुत ललचाया। उसने कहा,
14: मैं तो यहाँ पेट भर कर गोभी खाऊंगा और मजे से गाना गाऊंगा।
6: लेकिन बच्चों, गाय ने कहा,
14: देखो गधे, तुम किसान से पूछकर गोभी लेना, कहीं चोरी करके गाना मत गाने लगना, नहीं तो बहुत पिटाई होगी।
6: पर बच्चों, गधा भला गाय की बात कहां मानने वाला था, है? सो वो नहीं माना। गधे ने पेट भर कर गोभी खाई। क्या खाई?
8: गोभी।
6: ग से गोभी। और फिर लगा गाना गाने जोर से। हाँ तो बच्चों, गधे का ग से गाना किसान ने सुना तो उसे ग से बहुत गुस्सा आया। उसने चोर गधे की खूब पिटाई करी। देर दनादन, देर दनादन, देर दनादन। और गधा जोर जोर से रोने लगा। और तब मार खाकर गधे को अपनी गलती समझ में आई। ग से गलती। गधे ने किसान से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो कभी चोरी नहीं करेगा।
15: अरे किसान जी, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा।
6: और फिर पता क्या हुआ?
11: क्या हुआ?
6: उसके बाद बच्चों, गधा और गाय दोनों गांव छोड़कर भागे।
15: भागो भागो,
16: अरे भागो, मैंने कहा था ना तुझे चोरी मत करिए।
6: गाय और गधा दोनों गांव छोड़कर भागे। और अब गधे को ये बात समझ में आ गई थी कि चोरी नहीं करनी चाहिए।
11: गंदी बात भी होती है।
6: हाँ शाबाश, गंदी बात भी होती है।
11: किसी की मेहनत का फल होता है वो।
6: हाँ बेटा शाबाश। तो अब आज की कहानी तो यहीं पे खत्म। अब मैं चलूं?
8: आप कल भी आएंगे ना?
6: हाँ हाँ बच्चों, बिल्कुल आऊंगा। कल मैं फिर आऊंगा और एक नई कहानी लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। नमस्ते, बाय बाय। खुश रहो बच्चो।
0: साथियों, कार्यक्रम कैसा लगा?
10: बहुत अच्छा आयुष।
0: साथियों, ये कार्यक्रम कितना ज्ञानवर्धक था। ये मजे मजे में हमें गए अक्षर से कितने सारे शब्द

0: संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। इस दिवस के अवसर पर गोवा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, परेड, संगीत और नृत्य का आयोजन किया जाता है। साथियों, गोवा स्थापना दिवस हमें अपने देश की विविधता, संस्कृति और एकता का महत्व समझाता है। साथियों, अब मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के बारे में बताना चाहूंगा। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य आलू के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। साथियों, आलू में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और ऊर्जा भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इससे कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जैसे आलू की सब्जी, चिप्स, पराठे और फ्रेंच फ्राइज। साथियों, आलू कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाली फसल मानी जाती है। इस दिवस पर आलू की खेती से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथियों, अब सुन लेते हैं एक गीत।
1: गुम दुम, गुम तुम तुम।

0: साथियों गीत कैसे लगा?
1: बहुत अच्छा आयुष।
0: अब हमारा अगला साथी अपना नाम बताए।
2: मेरा नाम दिशा है।
0: आज आप हमें क्या सुनाएंगे?
2: आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी।
0: सुनाइए।
2: जो तेरे अंदर के साहस को पहचान लेता है, कोई है जो तेरे हौसलों को उड़ान देता है। छुपा नहीं रह सकता किसी फनकार के अंदर, हर फन परिश्रमी को मैदान देता है। सिर्फ वही बदल सकता है सपनों को हकीकत में, जो शख्स जिंदा दिल रहकर अपनी जान देता है। किस्मत भी कांप उठती है उसकी कोशिशों से, जो शख्स जिंदगी को कर्मों का तूफान देता है। कहने को तो इंसान है सिर्फ मिट्टी का पुतला, हीरा है जो तराशने वाले को शान देता है। यूं तो कितने इंसान हैं यहाँ एक ही नाम के, यूं तो कितने इंसान हैं यहाँ एक ही नाम के। अमर है जो मेहनत से नाम को पहचान देता है, अमर है जो मेहनत से नाम को पहचान देता है। धन्यवाद।
0: आपने बिल्कुल सही कहा दिशा, मेहनत करना एक बहुत ही अच्छा कार्य है और मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारा अगला साथी अपना नाम बताए।
3: मेरा नाम लावण्या है।
0: आज आप हमें क्या सुनाएंगे?
3: एक कविता।
0: सुनाइए।
3: दिन में सूरज है अगर तो रात को भी चांद तारे हैं, पर जीत तो वे लोग भी सकते हैं जो कभी हारे हैं। कभी धूप कभी बारिश ये तो कुदरत के नज़ारे हैं, पर प्यासे तो वे लोग भी हैं जो समुद्र के किनारे हैं। कुछ ना कर सके तो कहते हैं हम तो किस्मत के मारे हैं, पर जान न सके तुम खुद को कि कितने रूप तुम्हारे हैं। हिम्मत और हौसला हो अगर तो रास्ते कई सारे हैं, पर जीत तो वे लोग भी सकते हैं जो कभी हारे हैं। धन्यवाद।
0: आपने बिल्कुल सही कहा, हिम्मत और हौसला हो तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। सेलोनी, अब आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे?
4: आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी।
0: सुनाइए।
4: एक बार चार साधुओं ने 2 सप्ताह तक बिना बोले चुपचाप ध्यान करने का निर्णय लिया। उन्होंने बड़े जोर से शुरुआत की और पूरे दिन किसी ने कुछ नहीं बोला। पहले दिन रात होते होते जो उनकी मोमबत्ती लगाई थी वे टिमटिमाने लगी और फिर बुझ गई। मोमबत्ती बुझते ही पहले साधु ने कहा, ओह नहीं, मोमबत्ती तो बुझ गई है। दूसरे साधु ने कहा, अरे हमें बोलना नहीं था। उनकी बात सुनकर तीसरे साधु ने गुस्से से कहा, ये क्या है, तुम बात क्यों कर रहे हो। चौथा साधु हंसा और घमंड से बोला, वाह मैं ही अकेला हूं जो कुछ नहीं बोला। प्रत्येक साधु ने अलग अलग कारण से चुप्पी तोड़ी। पहला साधु भूल गया कि क्या अधिक महत्वपूर्ण था। दूसरा साधु स्वयं नियमों को पालन करने के बजाय दूसरों का ध्यान रख रहा था। तीसरे साधु ने अपने क्रोध को अपने ऊपर हावी होने दिया और चौथा साधु अहंकार के कारण रास्ता भटक गया। मित्रों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें मंजिल से भटकाने के बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ही ध्यान रखना चाहिए।
0: सलोनी, ये तो एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और साथ ही साथ एक मजेदार कहानी भी थी।
5: बहुत अच्छी कहानी सलोनी आपने सुनाई, और जिस संदेश के साथ कोई भी आपका साथी आयुष कार्यक्रम में कहानी लेकर आता है, कविता लेकर आता है या चुटकुला होता है, तो उसके पीछे एक संदेश छिपा होता है। जैसे कहानी का तो हम कह देते हैं इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, कई बार कविता से भी हमें शिक्षा मिलती है, कोई चुटकुला ऐसा होता है उससे भी हमें कोई शिक्षा मिलती है। हमें ना जो उसमें मॉरल होता है ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी हम जिसको कहते हैं, उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि कहानियाँ भी इसी तरह से बनती हैं और कविताएं भी इस तरह से बनती हैं। तो आज बच्चों ने बहुत अच्छी कविताएं और कहानी सुनाई। एक बात और करेंगे, पर्यावरण आप सभी समझते हैं, पर्यावरण जो हमारे चारों ओर का आवरण है जिसमें हम रहते हैं। आपको ये पता है कि पर्यावरण हमारा लगातार प्रदूषित हो रहा है। जितने भी हम प्रयास कर रहे हैं, जितनी भी हम बातें करते हैं बच्चों अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो बातें ऐसा लगता है कि सिर के ऊपर से जाती हैं, हम ज़्यादा सा संदेश ग्रहण नहीं करते। जैसा कि हमने अभी बात की, कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, तो जब हम कंपेयरिंग्स करते हैं अपने कार्यक्रमों में, जैसे आपको ही कई बार कहा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में आप बोलें, हम अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन हम उस पर, उन बातों पर या अपनी ही बातों पर अमल नहीं करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पर्यावरण को हमें प्रदूषित होने से बचाना है, और जितना सहयोग आप बच्चे दे सकते हैं या हमारे कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे श्रोता दे सकते हैं, उतना सहयोग शायद हम दे नहीं पा रहे, तभी पर्यावरण लगातार प्रदूषण की ओर बढ़ रहा है, है ना। कितने कार्यक्रम हम चलाते हैं, कितनी बातें हम करते हैं। तो असली बात यह है बच्चों, कोई भी शुरुआत हम अपने आप से कर सकते हैं। कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, कोई भी शुरुआत हम अपने से करते हैं। तो आप सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं या जो भी हमारे श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए जो भी कदम आप उठा सकते हैं उठाएं। सबसे पहले तो पेड़ लगाएं, है ना। अब आपकी छुट्टियां हो गई हैं तो सबसे अच्छा काम ये हो सकता है ना, पेड़ लगाएं, फिर उनका पालन पोषण करें। जो पहले से पेड़ पौधे आपके घर में लगे हैं, आपके घर के आसपास लगे हैं, उनकी देखभाल करें। आप एक ग्रुप बना सकते हैं, अपनी एक टोली, बच्चों की टोली के आगे तो सब हारते हैं, तो आप लोग जाएं उसकी सेवा करें पेड़ की। कल को वो छाया देगा, ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को का अवशोषण करेगा, है ना। तो कितना बड़ा काम आप ये करेंगे। और अगर हम स्वस्थ पर्यावरण में रहेंगे तभी हम सही तरीके से जी पाएंगे। आप देखिए, शोर प्रदूषण है, धुआं प्रदूषण है, और तमाम तरह के प्रदूषण हमारे चारों ओर हैं, और सांस लेना कई बार मुश्किल हो जाता है। आजकल भी आप सड़कों पे देखिए, लोग मास्क लगा के चलते हैं जिनको थोड़ी सी सांस लेने की दिक्कत है या कोई और प्रॉब्लम है। तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि जितना हम अपने छोटे स्तर पर काम कर सकते हैं वो करें, और अपने माता पिता को भी चेता सकते हैं। कई बार बच्चे माता पिता को अच्छी बातें बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके माता पिता आपको अच्छी बातें बताएं, आप भी बता सकते हैं। कक्षा में आप पढ़ के आते हैं तो इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, एक्टिविटीज़ भी होती हैं आपकी तो स्कूल में होती है ना, कि ग्रीन रखें हम अपना सारा, और अच्छी अच्छी तरीके से हम अपने पर्यावरण को बचाएं। अगर पर्यावरण बचेगा तभी हम बचेंगे बच्चों। और हाँ, एक और संदेश, पानी बहुत वेस्ट करते हैं आप बच्चे, गर्मियों में नहाते बहुत हैं, है ना। जब देखा नहा रहे हैं, बहुत सारा पानी आप इस्तेमाल करते हैं, गर्मी लगती है तो नहाने का मन करता है, लेकिन आप नहाते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि पानी आप ज़्यादा व्यर्थ ना करें, और दो बार नहाना काफ़ी होता है। ये नहीं है कि अब छुट्टियां हैं, पाइप लगा दी मम्मी ने और वो पानी आप अपने ऊपर उड़ेले जा रहे हैं, पानी से खेल रहे हैं, है ना। तो पानी बचाएं। पंखे घर में चलते हैं आपके, तो देखिए किस कमरे में कोई बैठा नहीं है, वो पंखा बंद, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मम्मा की नहीं है, सारी जिम्मेदारी आपके पिताजी की नहीं है या बड़े भाई बहनों की नहीं है, आपकी भी है। जहाँ पे भी पंखे खाली चल रहे हैं उसमें कोई है ही नहीं, कमरे की दीवारों को ठंडा करने के लिए पंखे चल रहे हैं, तो उसका ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिसिटी सेव करें, पानी बचाएं और पर्यावरण को स्वच्छ रखें। ये तीन टारगेट्स हैं आपकी इस बार की छुट्टियों में, आप इनको पूरा करें। आप करेंगे?
0: जी मैम, हम अवश्य करेंगे। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए सभी साथी मिलकर बोलेंगे जय हिंद।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
2: RBI कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल कुंज। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक कलाकार।

कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और साथ ही स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त हितेश का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का ये पहला नगमा करते हैं आपकी नज़र

साथियों, ये मखमली स्वर अमृत के समान होते हैं और दुआएं जादू की तरह होती हैं। वो रुके और थमे हुए आप को मुसलसल करती हैं, फूलों को खिलाती हैं, बच्चों को तरक्की बख्शती हैं, हुनर को उनके मुकाम तक पहुंचाकर पूरी दुनिया में रोशनी कर देती हैं। दुआएं माँ के ताबीज से निकलती हैं और हिफाजत का साया बन जाती हैं। बुजुर्गों की हथेलियों से सिर पर घूमती हैं तो मोहब्बत नवाजती हैं, और जिस दिन किसी फकीर की झोली से निकलती हैं तो बरकत और रहनुमाई बरसाती हैं, इल्म से लबरेज कर देती हैं और यकीन मानिए मोहम्मद रफ़ी बना देती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहनशाह तरन्नुम, सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी की। साथियों, रफ़ी साहब की मदमस्त आवाज़, उनके सुर, उनकी प्रीतम मनमोहक शख्सियत, उनका सरल स्वभाव, उनकी हर बात काबिले गौर, काबिले तारीफ थी, बिल्कुल उनके गाए नगमों की तरह।

साथियों, रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर सन 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। उनके परिवार का संगीत से कोई खास सराकोर नहीं था। जब रफ़ी छोटे थे तो अपने बड़े भाई की नाई की दुकान पर जाते थे। वहाँ एक फ़कीर गाते हुए जाया करते थे। तब 7 साल के नन्हे रफ़ी उस फ़कीर का पीछा करते थे और गीत सुनते थे। रफ़ी भी उसकी नकल करते थे और लोगों को रफ़ी साहब की ये नकल बहुत पसंद आती थी और जो भी दुकान पर आता उनकी आवाज़ की तारीफ़ करता रहता, जैसे आज भी हम उनके हर गीत की यूं ही तारीफ़ करते हैं।

साथियों, रफ़ी साहब के बड़े भाई ने संगीत के प्रति इस रुचि को देखकर रफ़ी को उस्ताद अब्दुल वाहिद के पास संगीत शिक्षा के लिए भेजा। उन्हीं दिनों की बात है, एक बार ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में उस समय के प्रख्यात गायक अभिनेता कुंदनलाल सहगल अपना प्रदर्शन करने आए थे। उन्हें सुनने के लिए रफ़ी भी अपने बड़े भाई के साथ गए थे, लेकिन वहाँ बत्ती गुल हो गई। तब सहगल जी ने गाने से मना कर दिया। फिर रफ़ी साहब के भाई ने आयोजकों से निवेदन किया कि भीड़ की व्याकुलता को शांत करने के लिए रफ़ी को गाने का मौका दिया जाए। अनुमति मिल गई और कुछ इस तरह 13 साल की उम्र में रफ़ी ने अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन दिया।

साथियों, शुक्रिया तो रफ़ी साहब का इस पूरी कायनात पर रहा जो उनके मधुर दिलकश नगमों को आज भी लुत्फ ले रही है। साथियों, जब ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में रफ़ी साहब ने उनका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया तो वहीं श्याम सुंदर जी भी बैठे थे जो एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। उन्होंने भी रफ़ी साहब को सुना और काफ़ी प्रभावित भी हुए और रफ़ी को अपने लिए गाने का न्योता दिया। तो इस तरह रफ़ी ने अपना पहला गीत 1944 में पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया था और फिर 1946 में रफ़ी ने बम्बई आने का फ़ैसला किया और वहां संगीतकार नौशाद ने फिल्म पहले आप के लिए गाने का मौका दिया। तो इस तरह शुरू हुआ मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों का कारवां, जो रहती दुनिया तक उनकी मखमली मिठास बिखेरता रहेगा।

साथियों, रफ़ी साहब हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में से एक थे। उनकी आवाज़, मधुरता, परास, उनका अंदाज लाजवाब था। उन्होंने अनेक गायकों को प्रेरित किया, जैसे सोनू निगम, मोहम्मद अजीज़, उदित नारायण और भी जाने कितने। 1940 से लेकर 1980 तक रफ़ी साहब ने कुल 26,000 गीत गाए। इनमें मुख्य धारा के हिंदी गीतों के साथ गजलें, भजन, देशभक्ति गीत, शास्त्रीय संगीत, कव्वाली, बच्चों के लिए गीत और अन्य भाषाओं में भी गीत गाए। सच कहें तो रफ़ी साहब ने हर अंदाज, हर रंग, हर एहसास, हर मौके का गीत गाया और हर गीत बेमिसाल गाया। उन्हीं में से आपको हम आज नज़र कर रहे हैं।

सच है साथियों, रफ़ी साहब से अच्छा कुछ भी नहीं। रफ़ी साहब ने हर अभिनेता के लिए अपनी सुरीली आवाज़ में गीत गाए, जिनमें गुरुदत्त थे, दिलीप कुमार, देवानंद, भारत भूषण, जॉनी वॉकर, जॉय मुखर्जी, शमी कपूर, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, ऋषि कपूर और किशोर कुमार और भी जाने कितने। साथियों, शम्मी कपूर कहते थे कि रफ़ी साहब उनकी आवाज़ हैं और रफ़ी के बिना उनकी ही फिल्मों में वो अधूरे हैं।

हर गीत अद्भुत है। साथियों, 24 दिसंबर 2017 को मोहम्मद रफ़ी साहब के 93वें जन्मदिवस पर गूगल ने उन्हें सम्मानित करते हुए उनकी याद में डूडल बनाकर उनके गीतों को और उनकी यादों को समर्पित किया था। रफ़ी साहब को उनके पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा गया। बहुत बार उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया और उन्होंने 6 फिल्मफेयर अवार्ड्स जीते। सुमधुर गायन के लिए भारत सरकार ने 1965 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और उन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साथियों, फिल्म नील कमल के समय की बात है कि उसी नील कमल फिल्म का गीत बाबुल की दुआएं लेती जा को गाते वक्त बार बार रफ़ी की आंखों में आंसू आ जाते थे और उसके पीछे कारण था कि ठीक एक दिन पहले रफ़ी साहब की बेटी की सगाई हुई थी और वो बहुत ही भावुक थे। आपकी नज़र कर रहे हैं यही गीत।

बहुत ही भावुक नगमा रफ़ी साहब की आवाज़ में आपने सुना। साथियों, मोहम्मद रफ़ी एक बहुत ही समर्पित इंसान थे। व्यसनों से दूर रहने वाले शर्मीले स्वभाव के थे। रफ़ी साहब को उनके परमार्थों के लिए भी जाना जाता है। बड़े ही हसमुख, दरिया दिल, सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। कई बार उन्होंने बिना पैसों के या बिल्कुल कम पैसों के भी अनेक गीत गाए। साथियों, उनकी दरिया दिली का एक वाक्य आपको सुनाते हैं। उस समय की बात है कि लता जी का कहना था कि उनको जो गीत गाते हैं उनसे होने वाली आमदनी का एक अंश, जिसे रॉयल्टी कहते हैं, गायक और गायिकाओं को मिलना चाहिए। पर इस पर रफ़ी साहब कहते थे कि ये गलत है। एक बार जब गाना रिकॉर्ड हो गया और गायक को उसकी फीस मिल गई, तो उसके बाद और

साथियों, अब बात करते हैं 31 जुलाई 1980 की। इसी दिन गाने की रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद रफ़ी साहब ने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा, ओके नाउ आई विल लीव, ठीक है अब मैं जाऊंगा। साथियों, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि आवाज़ की दुनिया का ये जादूगर सचमुच ऐसी लंबी छुट्टी पर जा रहा है जहाँ से कभी लौट के नहीं आने वाला। यही शब्द उनके आखिरी शब्द थे। उस दिन जोर की बारिश हो रही थी। शाम 7:30 पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और रफ़ी साहब अपने करोड़ों चाहने वालों को छोड़कर इस नश्वर दुनिया से रुखसत हो गए। पीछे रह गई उनकी अमर आवाज़। आसमान भी उस दिन रो रहा था। उसके आंसुओं की धार ऐसी थी कि पूरा देश भीग चुका था। फिजा में खामोशी तैरी थी, जैसे कोई नश्तर सा टूट के हर दिल में रह गया हो। इसी खामोशी में, इसी मायूसी से भरे सन्नाटे में शहंशाह तरन्नुम सुपुर्द खाक हो गए थे। उस दिन मनोज कुमार ने कहा था, सुरों की माँ सरस्वती भी अपने आंसू बहा रही है आज। कहते हैं न कि फरिश्ते होते हैं वो जिन्हें एहसास हो जाता है कि दुनिया में जिस कार्य हेतु खुदा ने भेजा था वो पूरा हुआ, अब कूच कर देना चाहिए। और कुछ इस तरह कूच कर गए थे सभी के मोहम्मद रफ़ी साहब।

0: इसी नगमे के साथ आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम एक कलाकार यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
2: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र में हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। इसके लिए 21 मई को वोट डाले गए थे। निर्वाचन आयोग ने फालता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर 29 अप्रैल को हुआ मतदान रद्द कर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट के बाद यह निर्णय लिया गया था। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़कर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आज गोलीबारी हुई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य खोलना भी शामिल है। श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक भारतीय सेना और रूस की थल सेना के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई है। दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बहनों, अभी आपने सुना मधुर गीत। बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गर्मी बहुत अधिक पड़ने लगी है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं। और इन छुट्टियों में वो धमाचौकड़ी तो मनाएंगे ही मनाएंगे, पर इसके साथ जो है हमें उनका जो समय रहेगा उसको सदुपयोग कैसे किया जाए, इसका बिल्कुल ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक और फिर रात सारा दिन बच्चों के पास खाली है, और बच्चे तो बच्चे ही हैं, खाली तो बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। हाँ। है ना, तो उनका ये जो समय है इसके सदुपयोग के लिए हमारी माँ के तौर पर हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, इसी विषय पर कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों के सदुपयोग में माँ की भूमिका, इस विषय पर डॉक्टर श्वेता सिंह के साथ बातचीत सुनवाते हैं अपनी बहनों को। और इनसे बातचीत कर रही हैं रेणु सिंह और रीना भटनागर।
2: विषय है बच्चों के ग्रीष्म अवकाश में माँ की भूमिका।
3: आपका स्टूडियो में बहुत स्वागत है। अभी छुट्टियाँ शुरुआत हो चुकी है स्कूल्स में, और छुट्टियों के दौरान अब माँ और बच्चे घर पे रहेंगे, और उनके बीच में किस तरह से सामंजस्य बने इस विषय पर हम बात करेंगे आज।
4: जहाँ तक माँ और बच्चे का छुट्टियों के साथ आपने संबंध की बात की है, तो ये तो सब कहा ही जाता है कि माँ बच्चे की सबसे पहली गुरु।
2: आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्वेता सिंह, जो कि प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ खानपुर यूनिवर्सिटी खानपुर से हैं। तो श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है बच्चों के ग्रीष्म अवकाश में माँ की भूमिका।
3: आपका स्टूडियो में बहुत स्वागत है। अभी छुट्टियाँ शुरुआत हो चुकी है स्कूल्स में, और छुट्टियों के दौरान अब माँ और बच्चे घर पर रहेंगे, और उनके बीच में किस तरह से सामंजस्य बने इस विषय पर हम बात करेंगे आज।
4: जहाँ तक माँ और बच्चे का छुट्टियों के साथ आपने संबंध की बात की है, तो ये तो सब कहा ही जाता है कि माँ बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है
2: जी।
4: और जहाँ तक इस आज के दौर में बच्चों के कंपटीशन को देखते हुए, इनके पढ़ने के रवैये को देखते हुए हम कहें, तो हर बच्चा इस आपाधापी में व्यस्त है कि क्या स्कूल, होमवर्क, प्रोजेक्ट, और उन्हें शायद अपने रिश्ते, अपने माँ बाप से बात करने की वो फुर्सत नहीं मिलती। तो ये छुट्टियों का समय खास तौर पर माँ के लिए एक ऐसा समय है जिसमें वो अपने बच्चों के साथ बहुत ही करीबी तरीके से रह सकती है, और खास तौर पर कामकाजी महिलाएं, क्योंकि उन्हें दोहरा जीवन जीना पड़ता है, कहीं बच्चों का कहीं खुद का।
3: और श्वेता जी, ये जो छुट्टियां हैं ये एक सुकून का एहसास करवाती हैं, और बच्चे तो इंतज़ार करते हैं कि कब छुट्टियां होंगी, गर्मी की छुट्टियां, और उन्हें मिलेगा ननिहाल जाने का मौका या बुआ के घर जाने का मौका। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर होता है जब वो इधर उधर घूमने का अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो स्कूल का शेड्यूल इतना टाइट रहता है कि बच्चों को अवसर ही नहीं मिलता, और माँ के साथ रहने का मौका, और ना जाने कितने सारे शौक जो उन्हें पूरे करने होते हैं इन छुट्टियों में ही। तो इन छुट्टियों के दौरान बच्चों की दिनचर्या क्या रहे, कि उनका ये जो एक इतना लंबा इंतज़ार था वो भी, उनकी उमंग जो है वो भी ख़त्म ना हो, दबे ना, और छुट्टियों के दौरान वो पूरा इंजॉय भी करें, तो कैसी दिनचर्या उनकी रखे माँ, कैसे उनके साथ इन्वॉल्व रहे, क्या किया जाए?
4: जी हाँ रेणु बहन, जैसे आपने एक सुकून का को कहा, सच में ही ये एक सुकून की स्थिति होती है छुट्टियाँ, लेकिन अगर हम सही मायने में अगर इसका अर्थ समझ पाएँ तो ही हम सुकून को ले पाएंगे
3: जी।
4: सबसे पहले तो छुट्टियों के बारे में मैं ये कहूँगी, जो ग्रीष्मकालीन छुट्टियाँ होती हैं, ये कंप्लीट छुट्टी, पूर्ण रूप से छुट्टी ना होकर सिर्फ स्कूल जाने से छुट्टी होती हैं, और इस चीज़ को माँ भी समझे और बच्चों को भी ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझाई जाए कि आपकी हर चीज़ से छुट्टी ना होकर सिर्फ स्कूल जाने से छुट्टी है, क्योंकि गर्मी का माहौल है, बसों में जाना होता है, स्कूलों में भी कई बार एयर कंडीशन स्कूल्स नहीं हैं, और गर्मी में बच्चे परेशान ज़्यादा होते हैं, पढ़ कम पाते,
3: बीमार ना पड़ जाए, यही सोचते हुए छुट्टी की जाती है। परंतु वो बच्चे कुछ ये भी सोच लेते हैं कि अब तो बिल्कुल हर काम से छुट्टी है, तो क्या उनका ये सोचना ठीक है, या माँ को किस तरह से उन्हें व्यस्त रखना चाहिए, क्या किया जाए?
4: इसी चीज में माँ की सबसे बड़ी भूमिका ये है कि सबसे पहले तो बच्चे की दिनचर्या को ना बिगड़ने दें। स्कूल जाते हुए बच्चे समय पे उठते हैं, हर चीज समय पर करते हैं, लेकिन छुट्टियों में लेट उठना, तरीके से प्रॉपर ना ब्रेकफास्ट हो पाता ना लंच, तो सबसे पहले तो बच्चे की दिनचर्या के ऊपर विशेष ध्यान दें और माएँ एक प्रॉपर टाइम टेबल ऐसे ही बनाएं जैसे स्कूल में टाइम टेबल होता है।
3: जी।
4: दूसरी बात यह है कि हर रोज पढ़ें वो, और पढ़ने के लिए भी ये ना हो कि छुट्टी है तो पढ़ना ही नहीं है। पढ़ने से छुट्टी नहीं है, प्रॉपर होमवर्क हो, उन्हें प्रॉपर काम दिया जाए। और इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है बच्चे की शारीरिक देखभाल, जो कि

0: होगी, और बच्चों को एक अच्छा भी लगता है कि हाँ हम भी कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं काम करने में,
1: जी
0: माँ की
1: हाँ,
0: हेल्प कर रहे
1: बच्चे
0: हैं।
1: बहुत एंजॉय करते हैं जब वो माँ बाप के साथ किसी न, चाहे वो गाड़ी धो रहे हैं, चाहे वो
0: जी
1: स्कूटर पे कुछ क्लीनिंग कर रहे हैं,
0: जी
1: कुछ भी है उन्हें इन्वॉल्व करें, बच्चे भी खुश रहते हैं। और हर उम्र के हिसाब से ही उन्हें बचपन से ही छोटे छोटे काम ऐसे करने सिखाएं कि वो किसी काम को बोझ ना माने, किसी को ये ना माने कि मुझसे पता नहीं क्या कराया जा रहा है। हर चीज़ को वो अपना महसूस करें, हर
0: जी
1: काम को वो
0: बिल्कुल
1: अपनी ड्यूटी महसूस करें।
0: जी बिल्कुल। और जैसे कि अभी आपने बताया सेल्फ डिपेंडेंट होना बच्चों का,

0: देखिए, ये तो कहा जाता है कि थोड़ा सा जो हमारा एक नॉर्मल रूटीन से उससे हटके अगर हम कुछ चेंज फील करते हैं तो आगे
1: जी
0: आने वाले समय में हम अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं।
1: जी
0: तो ये तो मैं चाहूँगी कि हाँ, बच्चों को घर से बाहर तो थोड़ा लेकर जाना चाहिए। वो ये नहीं है कि किसी हिल स्टेशन पर ही आप कहीं बहुत दूर जा रहे हैं जिससे कि शारीरिक परेशानियाँ मौसम की वजह से हों। वो हो सकता है आप अपने किसी रिलेटिव के पास लेके जा रहे हैं, या ऐसे कम डिस्टेंस के लिए, एक दो दिन के लिए, या किसी ठंडे मौसम में लेके जाएं जहाँ की बच्चे भी खुश हों, उन्हें चेंज भी महसूस हो और आपको भी अच्छा लगे, और आकर वो और ज़्यादा अपने कामों में कंसंट्रेशन से काम कर सकें। तो ज़रूरी तो है, लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप कहीं किसी भी वजह से नहीं जा सके हैं
1: जी
0: तो ये कोई आपने उन बच्चों के साथ इनजस्टिस किया है, तो आप अपने बच्चों के साथ इस तरह का रिलेशनशिप डेवलप करें कि उन्हें आप कन्विंस कर सकें, उन्हें बताएं ये हालात हैं तो जाना अच्छा है, नहीं जा पाएं तो घर में ही ऐसी क्रिएटिव चीज़ें करें। अपने रिलेटिव्स को आप अपने यहाँ बुला लें, आसपास के एरिया में पार्क्स हैं, पिकनिक्स हैं, छोटी मोटी लेक्स, इस तरह के करके भी आप बच्चों का मनोरंजन कर सकती हैं।
1: और
0: जी
1: श्वेता जी, जहाँ मनोरंजन की बात आती है, यहाँ पे अब एक बात जो है जो कि बच्चों से अब छूटती जा रही है कि बड़े बुजुर्गों के साथ रहना।
0: जी हाँ बिल्कुल, इस समय में तो ये है कि माएँ एक जो गिद्ध वाली नज़र है बच्चे पर वो तो रखें कि वो काम
1: जी
0: करते हैं या नहीं करते, और उसके अलावा अपने आप को बहुत दूर करें और बच्चों को बिल्कुल बड़े बुजुर्गों, दादा दादी, नाना नानी के साथ ही छोड़ दें और
1: जी
0: अपने कंट्रोल को बंद कर दें। सिर्फ एक ऊपर सुपरफिशियल कंट्रोल रहे कि हाँ बच्चों ने काम कर लिया है, ठीक तरीके से खा रहे हैं, ठीक पहना हुआ है, उसके बाद उन्हें बिल्कुल फ्री किस तरह से वो दादा दादी के साथ हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अपना गाने सुना रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं, कहानियाँ सुन रहे हैं, तो इसमें उनको बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए, अनकंडीशनल, कोई समय की बाधाएं ना हो, किसी तरह की कोई बाधाएं ना
1: और
0: हो।
1: जो एक ये कहानियों का जो खजाना है जो कि बुजुर्गों के पास है, वो अब उन्हीं तक सीमित होके रह गया, वो बच्चों तक आ नहीं रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर रहेगा कि वो कहानियां सुनते हैं तो अगली पीढ़ी को वो
0: जी
1: ट्रांसफर होता है
0: जी
1: वो
0: बिल्कुल
1: ज्ञान
0: बिल्कुल
1: जो। तो और छुट्टियों के दौरान किस तरह से उनको एक बहुत ही मतलब मनोरंजन के लायक बनाया जा सकता है, आप क्या कहती हैं?
0: देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, हर बच्चे में कोई ना कोई एक स्पेशल क्वालिटी होती है,
1: जी
0: एक गुण होते हैं, वो माँ बाप बचपन से ही कुछ ना कुछ तो ज़रूर पहचान पाते हैं, चाहे वो किसी तरह की भी हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कोई भी स्पोर्ट्स में है, तो उस तरह की क्रिएटिविटी भी बच्चे में, चाहे अगर म्यूज़िक है तो उसको डांस क्लासेस में भेजें, थोड़ा शाम को ठंडा हो जाए उस समय में, 2 महीने के दौरान उन्हें जो जिस चीज़ में भी उनकी रुचि है उस
1: जी
0: रुचि को उभार करने की भी कोशिश करें, ये भी एक माओं की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है।
1: जी तो ये कितनी अच्छी रहेंगी ऐसी छुट्टियां यदि बिताते हैं, तो माँ का भी बर्डन कम हो जाएगा और बच्चे भी ऐसी छुट्टियों
0: इन
1: को
0: छुट्टी
1: एंजॉय करेंगे।
0: बिल्कुल
1: तो ये इतनी अच्छी जानकारी आपने हमें प्रदान की है कि बच्चों को छुट्टियों को के दौरान माँ की क्या भूमिका रहे, कैसे उनको इंजॉयबल बनाएं। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और माओं के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। तो श्वेता जी, आपने स्टूडियो में आके हमें ये जानकारी उपलब्ध करवाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
0: आप। बहनों, अभी आपने सुनी बातचीत गर्मियों की छुट्टियों के सदुपयोग में माँ की भूमिका। श्वेता सिंह के साथ इनसे बातचीत कर रही थी रेनू सिंह और रीना भटनागर। बहनों, घूमना किसे पसंद नहीं, हम सब घूमने के शौकीन हैं, और बात अगर गोवा घूमने की करें तो बस कहना ही कहाँ क्या। हाँ बहनों, 30 मई यानी 30 मई को हम गोवा स्थापना दिवस मनाते हैं, और गोवा का इतिहास बहुत खास है। यह लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगालियों के अधीन रहा और फिर 1961 में भारत का हिस्सा बना। बाद में 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राष्ट्र का दर्जा मिला।
2: बिल्कुल सही। और गोवा का तो मतलब ही है सूरज, समुद्र और संस्कृति का संगम। और गोवा में 100 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा समुद्री किनारा और खूबसूरत बीच हैं। और गोवा संस्कृति, चर्च, मंदिर, कार्निवल और सी फूड के लिए दुनिया भर में मशहूर है।
0: यहाँ के त्यौहार, संगीत, नृत्य और खान पान इसे और भी खास बनाते हैं। इस दिन हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को सजो कर रखना चाहिए और देश की एकता और विविधता का सम्मान भी करना चाहिए।
2: बिल्कुल सही। और कुसुम इसी के साथ एक ऐसी सब्जी जो हम किसी भी सब्जी के साथ मिक्स कर लेते हैं आसानी से, वो सबके साथ घुल मिल जाती है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस जो कि 30 मई को मनाया जाता है। आलू एक ऐसी सब्जी है जो लगभग हर घर की रसोई में मिलती है।
2: बिल्कुल सही। और

0: आलू सिर्फ सब्जी ही नहीं, ये करोड़ों लोगों का भोजन भी है और इसमें विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है।
1: जी, आलू की जो उत्पत्ति है वो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पहाड़ों में 8000 साल पहले हुई थी। 16वीं सदी में स्पेनिश लोग इसे यूरोप लाए, भारत में पुर्तगालियों के जरिए 17वीं सदी में आया।
0: बिल्कुल सही। और कुसुम, आपको पता है कि जो आलू है अंतरिक्ष में उगाई जाने वाली पहली सब्जी थी और दुनिया भर में लगभग 5000 किस्मों का आलू पाया जाता है, मतलब 5000 तरह की किस्मों का आलू पाया जाता है। और पूरे विश्व भर में हमारे भारत का आलू के उत्पादन में तीसरा स्थान है।
1: हाँ, आलू कम पानी में भी उग जाता है और कई तरह की मिट्टी में भी टिक जाता है। आलू की खेती दुनिया के कई देशों में होती है, यह किसानों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। कविता जी,
0: बिल्कुल सही। और बहनों, अब जब आलू की बातचीत कर ही रहे हैं और आलू इतनी खास सब्जी, छोटे बड़े सभी को पसंद आती है, तो क्यों ना आज आलू से ही संबंधित कोई व्यंजन बनाया जाए।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो बनाते हैं बहनों फ्रेंच फ्राइज। इसके लिए मध्यम आकार के आलू लें आप और उसको धोकर छीलकर उसके लंबे लंबे आकार में उसको काट लें और उसको एक बार फिर दोबारा से धो लें। धोकर उसका पानी, कोशिश करें सारा निचोड़ दें पानी, और पानी निचोड़ के फिर उन लंबे आलू को आप घी या तेल में फ्राई कर लें अच्छे से, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तब तक आप उसको फ्राई करें। और उसके बाद उसको निकाल कर एक पेपर पे फैला लें ताकि उसका अतिरिक्त घी या तेल है वो निकल जाए,
1: सोख ले उसको ताकि वो
0: ताकि वो नुकसान भी ना दे
1: जी।
0: और उसके बाद उस आलू में आप नमक, काली मिर्च, नींबू और एक धनिया पुदीना की चटनी मिलाकर खाएं।
1: हाँ बहनों, अपने स्वाद अनुसार आप सब कुछ मिलाकर
0: मिला सकते हैं और ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। और गर्मियों की छुट्टियां हैं तो बेटा और बेटी दोनों ही घर पर हैं, तो आप खुद भी बनाएं और बच्चों को भी सिखाएं ताकि समय आने पर वो भी इसको आसानी से बना सकें। और बहनों, इसी के साथ हम एक और आलू की रेसिपी बना सकते हैं, वो है आलू की टिक्की। वो बहनों का तो मेरे ख्याल से मुँह में पानी ही आ गया होगा सुनकर। और इसके लिए बहनों 4-5 उबले हुए आलू लें और आलू को अच्छे से कद्दूकस कर ले, और कद्दूकस करे हुए आलू में नमक, मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला मिला ले, और थोड़ा सा ताकि उसमें कुरकुरापन रहे उसके लिए ब्रेड का चूरा या 2 या 3 से चम्मच अरारोट मिला लें
1: जी।
0: और इस सबको अच्छे से मिक्स करके और इसका जैसे थोड़ी सी आलू ले उसकी पेड़ी बना के हथेली से उसको हल्का सा दबा दें, टिक्की का आकार दें, और उसके बाद हल्के घी में इसको तवे पर सेक लें।
1: कुछ लोग जैसे इसमें कविता जी आलू के साथ जो चने की दाल होती है उसको भी मिक्स
0: मिक्स कर सकते हैं, उसको आलू में भरने के लिए भरावन हम बना सकते हैं। उसके लिए चने की दाल को भिगोकर उसको उबाल लें और उसमें मसाला मिला लें और उसका भरावन जो है आलू की टिक्की बनाकर उसके अंदर आप मिला सकते हो।
1: हाँ, क्योंकि उससे वो और स्वादिष्ट और ज्यादा पौष्टिक
0: हो जाती है और पौष्टिक भी हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: और जब आप आलू की टिक्की सेक लें, दोनों साइड से ब्राउन हो जाए, तो आलू की टिक्की लेकर उसमें दही, धनिया पुदीना की चटनी और इमली की चटनी मिलाकर आप उसको खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। और कुसुम, इसमें जो इमली की चटनी है, आपको पता है गर्मी के मौसम में इमली की चटनी बहुत ज़्यादा फायदा करती है, और जो इमली है वो लू को भी मारती है।
1: जी बिल्कुल सही कहा, अभी लू का ही मौसम
0: चल रहा है। और इमली की चटनी ना बनानी भी बहुत आसान है। आप इमली लें, उसको पानी में भिगो के रखें, 2-3 घंटे के बाद वो भीग जाए तो उसको हाथों से मसल कर उसको छलनी से छान लें और उसमें जैसे नमक, मिर्च, गरम मसाला मिलाकर और काला नमक मिलाकर भुना हुआ जीरा मिलाएं और उसको थोड़ा सा गैस पे सेक लें चीनी डालकर। इसमें चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डलेगी, उस बहनों हमें जानते हैं कि रसोई में किस तरह से चीनी मिलानी है, मसाले किस तरह से मिलाने हैं। तो इमली की चटनी बनाएं, खुद भी खाएं और सबको परिवार को खिलाएं। हाँ। और सेहतमंद रहें।
1: घर आंगन सुनने वाली सभी बहनों को हमारा नमस्कार।

0: बहनों ने सुना अपना कार्यक्रम घर आंगन। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन का एक बजने वाला है। थोड़ी ही देर के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों का वक्त है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा 25-26 मई को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल अब टाल दी गई है। ये फैसला बैंक प्रबंधन और कर्मचारी संघों के बीच मुंबई में हुई सकारात्मक बातचीत के बाद लिया गया। दोनों पक्षों के बीच कई अहम मुद्दों पर प्रगति होने के बाद हड़ताल स्थगित करने पर सहमति बनी। बैंक कर्मचारी संघों ने पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती, आउटसोर्सिंग पर रोक और पेंशन संबंधी अपने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पिपली, सोनीपत एवं गुरुग्राम के नए बस अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी से बनाया जाएगा। श्री विज कल देर शाम अम्बाला छावनी के निकट लोकल बस सेवा में शामिल हुई 10 नई इलेक्ट्रॉनिक वातानुकूलित बसों को हरी झंडी दिखाने से पहले आपार जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में बस अड्डा मेट्रो स्टेशन के नजदीक बनाया जाएगा, यानी जैसे ही यात्री मेट्रो स्टेशन से बाहर आएगा तो उसे वही नजदीक से इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बस सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ कुछ अन्य बस अड्डों के निर्माण का काम चल रहा है, उन्हें भी तेजी से पूरा करवा कर जनता को समर्पित किया जाएगा। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि लगभग 20 साल तक अम्बाला छावनी में लोकल बस सेवा बंद रही। परिवहन विभाग का दायित्व मिलने के बाद उन्होंने पहली नवम्बर 2024 से यहाँ पर दोबारा लोकल बस सेवा शुरू करवाई। श्री विज ने कहा कि 10 नई बसों के साथ अब यहां पर 25 इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसें हो गई हैं। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित उत्कृष्ट कृति वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में कर्मयोगी कृष्ण पुस्तक को बेस्ट बुक ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया। इसका लेखन हरियाणा सरकार में कार्यरत जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉ. कृष्ण के आर्यन ने किया है। इसके लिए उन्होंने चंडीगढ़ साहित्य अकादमी का आभार व्यक्त किया। डॉ. आर्यन ने अपनी पुस्तक कर्मयोगी कृष्ण के विषय में बताया कि ये पुस्तक भगवान श्री कृष्ण के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके महान चरित्र की शुद्ध अभिव्यक्ति है। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिड्डा ने आज जींद में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकांश जन समस्याओं का निवारण मौके पर ही किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल, डीजल और सोना बचाने के आह्वान पर विपक्ष का राजनीति करना गलत है। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय भी देशवासियों से सोना व डीजल पेट्रोल बचाने की अपील की गई थी। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने अन्न संकट के समय देश से एक वक्त का उपवास रखने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि जब देश का प्रधानमंत्री कोई आह्वान करता है तो पूरे देश को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उसका समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री को लेकर राहुल गांधी द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर उन्होंने कहा,
1: एक छोटी सोच का परिचय राहुल गांधी ने देने का काम किया जो अपने आप को प्रधानमंत्री के दावेदार बताते हैं, लेकिन इतनी छोटी सोच। तो उन्होंने कहा था कि सुरक्षा में कमी के लिए प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है। 8-10 नेता पूरे वर्ल्ड में जुटे उग्रवादियों के टारगेट पे, तो उनमें सारे देश के प्रधानमंत्री भी। हर जगह आज राहुल गांधी को मात मिली है। कांग्रेस आज हाशिए पर है।
0: शिक्षा को अधिक रोजगार परक व तकनीक युक्त बनाने के उद्देश्य से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने केंद्र सरकार की संस्था परख की मदद से स्कूलों में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व रोबोटिक कोडिंग की शिक्षा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार ने भिवानी में पत्रकारों को बताया कि इसके लिए प्रदेश भर के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार के शिक्षा से जुड़ी संस्था परख शिक्षकों को प्रशिक्षण देगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे आपके अनुरोध पर कार्यक्रम।

0: अजनबी फिल्म का गीत आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था आर डी बर्मन का। पसंद आप सभी की। हमारे नियमित रूप से सुनने वाले श्रोता जानते हैं कि महीने के चौथे और पांचवें रविवार को दिन में 1:10 से लेकर 2 बजे तक पत्रों पर आधारित आपके अनुरोध पर कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं। अलावा इसके महीने के पहले और तीसरे रविवार को आप सुनते हैं फोन इन आपके अनुरोध पर कार्यक्रम, और महीने के दूसरे रविवार को होता है ईमेल आधारित आपके अनुरोध पर कार्यक्रम। तो आज पत्रों वाले आपके अनुरोध पर कार्यक्रम में हमारे सभी सुनने वालों का हम स्वागत करते हैं और आपको बताते हैं कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाने के लिए हमें लिखा किस किसने था। आप हैं दतरंगी से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा, सनावत से किशोर सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु, अनुराग सुलोचना, चारुवी और प्रणव सांवले, खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप, बागपत से संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया, कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वद सानवी देशमुख, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा अदिति गुप्ता, राधे दीपक, अंकु राघव गुप्ता, कर्मपुरा नई दिल्ली से कविता गौरव मानसी, अनिल मदान, मोहला से राजकुमार ढोचक, गीतामन, सानिया सुभाष, उषा, राहुल, रोहित, जोगेंद्र, दर्शना, इंदु और यक्षित। और अब कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सुनने वालों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं। आप हैं फुल चिंचोली पंढरपुर महाराष्ट्र से जाकिर मुलानी, सुमैया सुबहान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलानी, बानू बी मुलानी, बादशाह और इनके परिवार के सभी सदस्य, हरगोविंद नगर नवाशहर से सुरेंद्र संधू, अनीता रोहित, रितेश, प्रीतिशा और मैक्स संधू, रघुनाथपुरा श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, शेरड़ा हनुमानगढ़ से मंटू शर्मा, सोनू शर्मा, सुशीला, लीलाधर शर्मा, वारणा शाहपुर कोल्हापुर से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्वनी चौहान, माई इंदुरकर, शौर्या श्रेयस, अंकिता, अनिकेत चौहान, कैथल से ये पत्र है मधु नायक का, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और भिवानी से जितेंद्र खेड़ा। आप सभी की पसंद पर प्रेम पुजारी फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने इसे गाया है, नीरज ने लिखा है, संगीत पद किया है एस डी बर्मन ने। इन सबके साथ आइए हम भी सुनते हैं।
1: शोखियों में भोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में गाया हुआ हमने सुना। और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमारे इन सुनने वालों के अनुरोध पर आप हैं धामणी मानोरा वाशिम से, तुलसीराम डेरे, माया संदेश आदेश, किरण प्रज्वल, अनुत डेरे, शब्बीर भाई, चंद्रकांत पाटिल, अमोल दादुल्या, मायावती डेरे, गुलशन नितिन खाड़े, किशन वायले, आकाश ढोले, ध्रुव गिरी, ज्योति तेजस, प्रणीता मंगेश पाटिल, अरुण कोल्हे, परमेश्वर टिकाले, बाला खाड़े, गुंडी मानोरा वाशिम से वच्छला बाई खिराड़े, चंदाबाई नगराले, सोमठाणा से डॉक्टर विशाल, ललिता पायल, आरुष कवाणे, तुलसीराम कवाणे, तुकाईराम कवाणे, नीलू राउत, शेखर सोनोने, पीयूष कवाणे, रहमानिया मनोरा से संजीदा बानो खान, साइमा खान, बुशरा खान, शब्बीर, गोविंदपुरा सीकर से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद, कालिंद्री लहरे, सिरसिला चुरू से संदीप सोनगरा, प्राची सोमल, कार्तिक सोनगरा, पदमपुर श्रीगंगानगर से मिहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमन नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा चाहत और सादिया का खत है, बेमेतारा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, हिसार से राजेंद्र सैनी, राहुल सैनी, अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा झालिया, शोएब खान, मुस्तफा रऊफ भाई शाहिद, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर वैशाली, फतेहाबाद से बिट्टू मोहरवाला, गगन अमरपुरी, युवराज भोविक, भड़भूजी आगर से रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, दुर्गा, श्याम बाबू, भावना, मधुबाला, मिलन, उमंग, आयुष, ओम प्रकाश, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू, चरखी दादरी से जगनेश सांगवान, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन, प्रतिभा, ईशप्रीत शर्मा।

0: महात्मा सोनिया कालका विपाशा शर्मा नरेंद्र तनेजा मीनाक्षी तिवारी किरण ठाकुर जग्गी दुआ प्रेमलता सुनीता शर्मा लोहारू से बिल्लू चिंडालिया लक्ष्मी सुरेंद्र बरखा योगेंद्र और नरेंद्र चिंडालिया। आप सभी की पसंद पर बनारसी बाबू फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में गाया हुआ सुनवा रहे हैं। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।
1: अरे मेरे यार, अपने रंग हजार

किशोर कुमार का गाया बनारसी बाबू फिल्म का गीत आपने सुना, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगते हैं, आपके विचारों का, सुझावों का, टिप्पणियों का और मार्गदर्शन का हमारे फोन इन कार्यक्रम श्रोता मंच में स्वागत है। आप हमें इन टेलीफोन नंबरों पर संपर्क करें, 01262-255-446, 255-447 और 255-448। महीने के अंतिम रविवार को शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक श्रोता मंच कार्यक्रम प्रसारित होता है लाइव, और इस बार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 31 मई को शाम 7:30 बजे। ये थी जानकारी आपके लिए, और अब बढ़ते हैं आगे, आपको सुनवाते हैं अपने इन सुनने वालों की पसंद का गीत। आप हैं कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा प्रियंका, पूजा लीलू, रितु सिंह, ऋषभ सिंह, तोरनाला वाशिम से सुखदेव राउत, बागपत से एहसान अली, सच्चाखेड़ा से वेद बिहारी, मटोर से रामदिया नीलम, अजय विजय, तमन्ना पायल, रामफल धर्मवीर, डोंडी लुहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, आरती तुषार, डोली पूजा, प्रभा देवी तामुरिया, बन बघेरा राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा नीरज, नीलेश, अंजलि सारवा, जाखूद से शंभुदयाल खटक, बिमला अमरजीत, सुंदरलाल योगेश, दीपक पूजा, कोंडागांव से सुभाष चक्रधारी, कविता मुस्कान, अनुष्का चक्रधारी, शालर पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मेहरुजुद्दीन, केसरुद्दीन और नजमुद्दीन, भिलाई से अशोक, श्याम कुंवर, दीपक, प्रमिला और ज्योति, बगबुड़ुआ पथरिया से नरेन, नेताम, कुसुम, प्रोणिका, प्रणामिका, उत्कर्ष, राजिम से अनिल, अंजुलता, आदित्य, कृष्ण श्रीवास्तव, अमरपुर पिंडरा से दीपक रोशन, वंशीलाल, रेखा श्रीवास्तव, श्वेता, सुरुचि, दिशा लंबी श्रीवास्तव, केलंगा से सुंदरपाल कौशिक, अभी निशु देबू, परी पीहू पाखी, नयापारा भिरई से बसंत सूर्यवंशी, सरोज ईश्वरराज, चंद्रकांत, प्राची टीयूषी, सेरगर गांव से नजीत कौर, मुकेंद्र, जसबीर कौर, हसनप्रीत कौर मान, वडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिव सागर, इंदिराबाई, सुनैना, तनुजा, खंडवी से रामधाड़े, दीपाली, स्वराज धाड़े, मलोट से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत, गगनदीप और रौनकदीप कौर। दाग फिल्म का गीत आप सभी ने सुनना चाहा है, लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाज़ें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये था दाग फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाज़ें आपने सुनी। अगला गीत आप सभी के लिए। आप हैं चांडूर बिस्वा, बुलढाणा से नारायण भावखड़ से रक्षाताई, पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या आदि, शैलेश, सोनम धनुषपुरी, बीटी वाड़ोदे, जरूड़ वरुड़ महाराष्ट्र से बाबा साहेब, मीनाक्षी चरपे, चंद्र प्रभा वाड़ोदे, रजनी कानीरे, कार्तिक युवराज, वरुड़ जौलका से महेंद्र सरकरे, विजया मिलिंद सरकरे, निमुलता नगर नई दिल्ली से सुरेंद्र खुराना, सुमित सुरभि, अनीता खुराना, राजीव ढींगरा, कन्हैया लाल, शेरगढ़ मलोट से बलराज राम कालवा, भोलाराम, लक्ष्मी बेबी, कुदरत मनप्रीत कालवा, मेवा सिंह, हरप्रीत, शिवराज मान, भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा, पिरदा कोरासी से रोहित साहू, हरीश कुमार, पुष्पलता, राधा साहू, दिल्ली से डॉक्टर सोनम अदीबा, बक्सर से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, राजंसारी, आसमा खातून, गुलफराज भागलपुरी, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और आसमा नास। आप सभी के लिए उम्र कैद फिल्म का गीत आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में गाया हुआ सुनवा रहे हैं। गुलशन बावरा के बोल हैं, संगीत है सोनी कौमी का।

0: बटन पड़ जाएगी, खुलेगा फिर दरवाजा, आएंगे सुनहरा राजा, मेरा घूंघट खोलेंगे, मुझे कुछ यूं बोलेंगे, मेरे हिजाब कुछ तो बोलो, ये नाजुक लत्ते खोलो, जरा शर्मा ना तू, जरा सी घबरा ना तू, रूठी लियो नहीं जाने, और मेरी पन्नो हरानी, कसूरी खुशी मनाना, हमें पर भूल न जाना, हमें पर भूल न जाना, हमें पर भूल न जाना।
1: आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में उम्र कैद फिल्म का ये गीत था। फरमाइशी फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत आप सभी की पसंद का गीत है। आप हैं खंडवा से विजय महोबिया, कविता विशाल, विवेक सोनू, मोनू रानू, अनय अनाया, सपना शिवी सलोनी। साउथ एक्सटेंशन से गुरमीत सिंह मीता, महोबा बुंदेलखंड से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न गौरव, मनीगाछी जतू कबाट से विजय लाली, साफी आलम मिस्त्री, मोहम्मद वकील राही, फिरोज नाज, प्रवीण शबाना, रिजवान हिना, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री वैष्णवी, चंचल ढोमणे, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासेरे, कापशी अकोला महाराष्ट्र से संतोष बाकड़े, ज्योतिताई, पवन कुमार, कैलाश राव, वंदनाताई बाकड़े, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दकी, नजमा बेगम, मोहम्मद रेहान, शमरीन रियाज, रिफाकत, माहिरा नूर, पत्रोड़ा अनूपगढ़ से मंगल जनागल, रोशनी अंकुर, इंदु सुनील जनागल, इंदौर से वंदना मराठा, गणेश कार्तिक, परी संजना, मालती स्वाति प्रयाग, ललिता और नारायण खर्चे। आप सभी के लिए उलझन फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और सुदेश कुमार की आवाज़ों में गाया हुआ। एम जी हशमत का गीत है, संगीत है कल्याण जी, आनंद जी का।

ये आपने सुना उलझन फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और सुदेश कुमार की आवाज़ें थी, एम जी हशमत के बोल थे, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। आपको हमारे केंद्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगते हैं, आपकी राय हम जानना चाहेंगे अपने फ़ोन इन कार्यक्रम श्रोता मंच में। हमारे टेलीफोन नंबर आप नोट करें, 01262 555 4446 255 447 और 255 448। श्रोता मंच कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से महीने के अंतिम रविवार को शाम 7:30 से 8 बजे तक प्रसारित होता है। इस बार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 31 मई को शाम 7:30 बजे। ये थी जानकारी आपके लिए और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना आप सभी के अनुरोध पर है। भिवानी से सुशील सोनी, पवन, कमल, साहिल, प्रेमलता, ओम प्रकाश सोनी, मेरठ छावनी से दिग्दर्शन कविता गोड़, कलाना भादरा से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्ध, झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मयंक, मंजू भाटिया, यमुनानगर से विनोद नैन। ये अगला खत है रघुनाथपुरा श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी का, फ्रांसी से राजकुमार डूडी, प्रमोद, पुष्पेंद्र डूडी, भिवानी से जितेंद्र खेड़ा, गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास, रोशनी, शगुन बारासा, धाड़ी नांदूरा से श्री कृष्ण पाठे, संदीप पाठे, अमूल्य पाठे, बड़वाहा खरगोन से प्रवीण और मीना श्रीमाली, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, गांव राजपुर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेलसाय मरकाम, नयन, प्रकाश, शारदा, सीताराम, सतबीर, संतोषी, रूपमती, पुष्पम, कविता, आरती मरकाम, कुरावली मैनपुरी से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ, और लुम्बिनी अकोला से राहुल बंसोड़, सम्यक शरण और मीरा बंसोड़। आप सभी की पसंद का गीत है जीत फिल्म से, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की हैं। इन सब के साथ आइए हम भी सुनते हैं।

0: आपने सुना आपके अनुरोध पर कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। 2 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिड डे न्यूज। The headlines: India and United States reaffirms strength of strategic partnership between the two countries. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for early trade deal, stresses on diversified energy supplies for the country. U.S. Secretary of State Marco Rubio describes India as one of the United States' most important strategic partners. BJP candidate Debangshu Panda secures massive lead in West Bengal's Falta Assembly constituency re-polling. Government advises all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan in view of Ebola outbreak. 24 people killed in a blast near railway track in Quetta in Pakistan's Balochistan province. And in tennis, French Open Grand Slam begins today in Paris. External Affairs Mr. Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio today held wide-ranging discussions in New Delhi. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlining key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Dr. Jaishankar said India and the U.S. share a comprehensive global strategic partnership with deep and broad-based cooperation. He said both countries' ties impact and influence the world and that they have converging interests across several regions. He noted that discussions took place in a complex global environment and expressed confidence in open and productive talks. He also highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcome the expansion in energy trade, and stress that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India. We devoted some time to nuclear energy cooperation as well. The passage of the Shanti Act has opened up new possibilities.
1: Dr. Jaishankar also underlined the importance of people-to-people ties and said legal mobility should not be adversely affected. India's position in favor of dialogue and diplomacy as well as safe and unimpeded maritime commerce was also reiterated. On the Iran conflict, Mr. Jaishankar said that both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce.
2: I apprised Secretary Rubio of challenges that legitimate travelers face in respect of visa issuance. While we cooperate to deal with illegal and irregular mobility, our expectation is that legal mobility would not be adversely impacted as a consequence. After all, this is very relevant to our business, technology and research cooperation.
1: U.S. Secretary of State Marco Rubio strongly underscored the strategic dimension of the partnership, describing India as one of the United States' most important partners in the world. He said both countries have suffered due to terrorism and added that India and the U.S. are strategically aligned on all key issues that will define the new century.
3: A strategic partnership is something very different. It's something much broader than that. And you work together strategically to solve those problems. And the list of issues that we work together with India on, the breadth and scope of them, is what highlights the fact that India is one of our most important strategic partners in the world. It begins with the fact of our shared values. We are the two largest democracies in the world.
1: Secretary Rubio further said that the two countries are also strategically aligned on energy. Responding to a question, he said, the United States is modernizing its immigration system for the 21st century. Responding to a question on Iran, he said, there's good news on that front and indicated that further positive developments are expected in the next few hours.
3: The United States remains committed to finding a peaceful, a diplomatic solution to this crisis. But let's be clear who we're talking about here. We're not talking about some pacifist government over there, or some pacifist regime. We're talking about one of the most vicious regimes.
1: The leaders also discussed regional issues, including developments in the Gulf and the Indo-Pacific, ahead of the upcoming Quad Foreign Ministers meeting. Earlier in the opening remark, Mr. Jaishankar said that India and the United States shared a comprehensive global strategic partnership marked by deep and broad-based cooperation. The External Affairs Minister said that the relationship between India and the US impacts and influences not only the two countries, but also other regions and the wider world. US Secretary of State Marco Rubio arrived in India yesterday on a four-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting, which will be held on the 26th of this month. In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Debangshu Panda has secured a massive lead in the 15th round of counting for the Falta Assembly re-poll. Counting is underway at the Diamond Harbour Women's University. Debangshu Panda of BJP was leading by 69,673 votes when reports last came in. Shambhunath Kurmi of the Communist Party of India Marxist was running in second position. Abdul Razak Molla of the Indian National Congress is third. And Jahangir Khan of All India Trinamool Congress was in fourth position. The counting has been conducted across 14 tables and will span a total of 21 rounds for the Falta constituency. Senior BJP leader and Union Minister Piyush Goyal today accused Congress leader Rahul Gandhi of creating a serious plot to spread anarchy in the nation. In a social media post, he said that Mr. Gandhi's statement against Prime Minister Narendra Modi points towards a major conspiracy by the Congress Party, along with all opposition parties. Mr. Goyal alleged that Congress Party's true intentions are to defame the country, insult constitutional institutions, and going abroad to appeal to foreign powers to interfere in India's internal affairs. The Union Minister stated that the citizens of the country are wise and have a clear understanding of Rahul Gandhi and the opposition parties that are acting against the nation's interests. He said that the public has repeatedly given a resounding responses to these people. Mr. Goyal added that the INDI alliance's conspiracy will never succeed. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download news on AIR app. The government has advised all Indian citizens to avoid non-essential travel to the Democratic Republic of the Congo, Uganda and South Sudan until further notice in view of the evolving Ebola outbreak situation. It also directed Indian citizens currently residing in or travelling to these countries to strictly follow public health guidance issued by local authorities and maintain heightened precautions. Ministry of Health and Family Welfare informed that India has not reported any case of Ebola disease. Earlier, the World Health Organization, WHO, had declared Ebola outbreak a public health emergency of international concern following the reported outbreaks of Ebola disease in the Democratic Republic of Congo and Uganda. Ebola disease is a viral hemorrhagic fever caused by infection with the Bundi Bagyo virus strain of the Ebola virus. India has dispatched the first tranche of urgent medical supplies and protective kits to the African Centres for Disease Control and Prevention today. In a post on X, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said the supplies have been sent in response to the emerging Ebola public health emergency. He added that India remains committed in supporting Africa in responding to the crisis in coordination with the African Union. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has issued an update regarding the Class 12th post-result process after technical issues on 21st and 22nd of this month led to incorrect fee deductions in some cases. In a statement, CBSE said that the issue occurred during applications for scanned copies of evaluated answer books. It added that in some instances, excess payment was deducted, while in others, lesser amounts were charged. The CBSE noted that in all cases of excess payments, the exact excess amounts will be refunded to the same payment method which was used for payment. Similarly, in cases where lesser payment was deducted, candidates shall be informed separately regarding payment of the balance amount if required. It further noted that scanned copies of the evaluated answer books shall be provided in all such cases without candidates being required to submit fresh requests. Prime Minister Narendra Modi today shared an article by Union Minister Jyotiraditya Sindhia highlighting how the five treasures of the Kanchenjunga continue to illuminate Sikkim's journey, paving the way for Visit Sikkim 2047. In a social media post, Mr. Modi said that the article portrays Kanchenjunga as a protector of the land, memory and consciousness of Sikkim. Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, Rajiv Ranjan Singh, will chair the regional review meeting for the Northeast region tomorrow in Aizawl, Mizoram. The meeting will primarily focus on reviewing the progress of various schemes and programs being implemented in the fisheries, animal husbandry and dairying sectors across the northeastern region. Discussions will also be held on future strategies for sustainable sectoral growth, farmers' welfare and livelihood enhancement. In Pakistan, 24 people were killed and several injured after a powerful explosion ripped through a railway line in Balochistan province today. The explosion occurred near the Chaman Fatak railway station in capital city Quetta. A train suffered partial damage in the blast, while 10 vehicles parked in the area were also damaged. Following the incident, an emergency was declared in government hospitals across Quetta, with doctors and medical staff summoned to handle the situation. Railway authorities said the Peshawar-bound Zafar Express was stopped at Quetta railway station after the blast as a precautionary measure. Babar Yusufzai, the spokesperson to the Home Minister, said that all relevant institutions have been placed on high alert following an explosion in the city. U.S. President Donald Trump has thanked law enforcement authorities and Secret Service agents for the swift action after a shooting near the White House. In a post on Truth Social, he said the suspect had a violent history and noted the incident occurred shortly after another recent security-related shooting in Washington. The Secret Service said a man opened fire near White House security checkpoint at the 17th Street and Pennsylvania Avenue, following which officers returned fire. The suspect was yet taken to hospital and later died. A bystander was also injured, though it is not yet clear whether the person was struck by the suspect's bullets or by gunfire from officers. The suspect has been identified as a 21-year-old man. President Trump was inside the White House at the time of the incident, and this is the third such shooting-related incident reported near the president in recent weeks. The 125th edition of the French Open, commonly known as the Roland Garros, begins today in Paris. Novak Djokovic will launch his bid for a record-extending 25th Grand Slam title. The three-time champion seeded third opens against French big server Giovanni Mpetsi Pericard. Night session on court Philippe Chatrier, second seed and 2024 finalist Alexander Zverev, and seventh seed Taylor Fritz are also among the key men's singles players in action on the opening day. World number one Yannick Sinner will aim for his maiden French Open crown after finishing runner-up to Carlos Alcaraz last year. He will be in action tomorrow. In the women's draw, Coco Gauff will head into the French Open as a defending champion. Meanwhile, world number one Aryna Sabalenka will be aiming to win a first-ever French Open title, having come up second best to Coco Gauff in the final last year. India will also have representation in the men's doubles, with top-ranked Indian player Yuki Bhamri partnering New Zealand's Michael Venus, while N. Sriram Balaji teams up with Brazil's Marcelo de Molina. In IPL cricket, the Super Sunday double header will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Mumbai Indians will take on Rajasthan Royals at the Wankhede Stadium in Mumbai at 3:30 p.m. For Rajasthan Royals, it is a must-win game in the pursuit of a playoff berth. For Mumbai Indians, it was one of the most disappointing seasons in the franchise, as they've already been eliminated from IPL 2026. In another clash of the day, Kolkata Knight Riders will face Delhi Capitals at Eden Gardens in Kolkata. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Last night, riding on an unbeaten 101 runs by skipper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at the Ikana Cricket Stadium in Lucknow. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants, Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. Prav Simran Singh made 69 runs. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and United States reaffirm strength of strategic partnership between the two countries. External Affairs Mr. Dr. S. Jayashankar calls for early trade deal, stresses on diversified energy supplies for the country. U.S. Secretary of State Marco Rubio describes India as one of the United States' most important strategic partners. BJP candidate Devangshu Panda secures massive lead in West Bengal's Faulta Assembly constituency re-polling. Government advises all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan in view of Ebola outbreak. 24 people killed in a blast in a railway track in Quetta in Pakistan's Balochistan province. And in tennis, French Open Grand Slam begins today in Paris. And with that, we end the Midday News.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
5: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
4: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
6: We want peace and stability.
5: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
6: These would be the principles with which we would approach that region.
4: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
7: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है। ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
4: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बाद नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
5: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल विनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
8: आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
4: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने अशोक भाई की राम राम। भाइयों, गर्मी बहुत तेज पड़न लग रही है, तो इससे हमने बचाव करना है अपना, किसान भाई ने खुद का भी, अपने पशुओं का भी और अपनी फसलों का भी। चाहे भाइयों कुछ भी है, आप ये देखने लग रहे हो कि इतनी तेज गर्मी पड़े है भाई। चलो ठीक से किसान भाई, हम तो खुद बच सका हाँ, मान लिया भाई कि देखो एक वैसे तो ये है भाई, अपना 10 बजे तो पहले बल्कि 9 बजे तक अपना खेत में काम करें जो भी काम है, उसके बाद घर आ जाए, घर आने के बाद मतलब अपने छाया में या उसमें भीतर रहें तो बढ़िया है। जितना हो सके मतलब 9 बजे से लेकर न शाम 5 बजे तक हमने बाहर नहीं घूमना चाहिए, गर्मी इतनी तेज़ पड़े, यूँ ही अपने पशुओं के लिए करना चाहिए। पशुओं का भी यही हाल है, अगर मान लिया पशु बाहर रह गए या उसमें धूप में रह गए तो गर्मी उन्हें सेज जाएगी। जो ये कहें कि वह लू लागी तो उसका यू एक कारण है, लू चल रहे हैं और ज़्यादा, और एक जगह पशु बंद रह जाएगा तो उसमें और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, घूमते फिरते ने भी ज़्यादा लू लाग सके हैं, तो इस चीज़ का हमने बचाव करना। साथ में अपनी फसलों का भी है भाइयों, फसलों में भी ये देखा गया है कि अगर मान लिया ये भी इतनी तेज़ गर्मी पड़ने लग रही, आप देखो जो जिस तरह पत्ते हैं उनके फसलों के मारे किस तरह एकदम मुरझा खड़ी हो जाए, तो उसको भी बचाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ये भाइयों कि हम शाम के समय 6 बजे के आसपास ही अपने उसमें पानी लगा दें फसल में, तो वो रह जाए, ऐसा सुबह नहीं लगाना और ना दिन में लगाना पानी, क्योंकि गर्म हो जाएगा पानी और गर्म होने के बाद में फसल ख़त्म हो जाएगी। ये हमने उसमें ध्यान रखना कि वह शाम के समय ही फसल में पानी, हाँ पानी हल्का हल्का लगाओ, ज़्यादा उसका ठोक या गहरा पानी ना लगाओ। तो और साथ में अपने खुद का ये देखा भाइयों, जिस तरह मान लिया खेत में है कोई काम जा रहे हो, अपने खेत में ज़्यादा देर तक काम है तो एक तो अपना पानी का इंतजाम रखे साथ के साथ में, पानी पीते रहे, उसमें कोई भी छोटी हांडी ले जाए अपने खेत के नीचे, उसमें कोई खेत में जो पेड़ पौधा है अपना कोई भी, क्योंकि आजकल किसान भाई अब ये तो देखो अपने पेड़ पौधे लगाओ खेतों में, तो उसमें उसके नीचे रख ले, जिस तरह जामुन है, आम है या और दूसरा कोई पौधा है उसके नीचे रखे रखे, ताकि और जब भी मान लिया आपने थोड़ी ये देखा कि वह थोड़ा काम कराया और उस टाइम पर आकर ने अपना जोटा लगाना, छाया लगाना, ये नहीं करना कि वह छाया दूर है तो उसमें वो यहीं लगा ले जोटा, ना धूप में नहीं लगाना, यानी छाया जितना उसके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहे उसको, क्योंकि पानी पीते रहेंगे तो भाई हमें लू नहीं छेद देगी ना, वरना हमने लू का ऐसा काम आजकल आप देखो, चाहे अपने और चाहे पशुओं और चाहे फसलों, किसी मान लिया लू लागी तो इतना भारी नुकसान हो जाएगा कि उसकी पूर्ति किसी प्रकार भी नहीं होगी। तो ये हमने देख लेना कि वह अपने लू से बचाव करना, अपना भी, अपने पशुओं का भी, फसलों का भी, पशुओं ने अपना ऐसा कर ले, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाओ, क्योंकि ये देखा गया है पशुओं ने ना मैं पानी कम पिलाओ कि वह 2 बजे पिला दिया 3 बजे पिला दिया, नहीं, बार बार पशुओं को पिलाते रहे, देखो जिस तरह जीव है वो, और वो तो भैंस ने तो ये कह रहे हैं भाई इसका तो पानी का जीव है, जीव है, इसने बार बार पानी पिलाया जावा, और ये देखें उठाई बाल्टी रख दिया पशु के सामने, जब भी चाय मान लिया वो 2 घूट पियो चाहे 4 घूट पियो जितना ही पियो उसने कर ले, बार बार पिलाना पशु को बहुत ज़रूरी है। और ये रखे पंखा है या कूलर है भाई जो, वो अपना उस पर चलाते रहे पशु के ऊपर, सीधी उसके मतलब हवा ना लागे दरवाजा, ऐसा दरवाज़ा सामने ना बांध उसे कि दरवाज़ा खुल जाओ और उसके बाद उसके पशु को मतलब सामने बंद रहो, तो सीधी लू उसके पशु में भीतर भी लागेंगे। और कई बार ऐसा कर ले भाई, उसने 2-3 बार दो पशु ने मतलब जोड़ मतलब लेगा जहाँ दम आराम, तो उसमें लिटा कर ले, साफ़ सुथरा पानी हो जाए तो उसमें लिटा लो, घर में भी जिस तरह पशुता ही पानी पिला, तो एक दो उसका लोटा पानी है या जग का पानी है उसका सिर के ऊपर गिर दे, उसके कमर के ऊपर गिर दे, उसमें पशु उससे खुश होगा और एक उसकी गर्मी है जो वह गर्मी भी निकल दी रही ऊपर, फिर उसका ये चलो वह लाइट हो तो उसका पंखा चलता रहे। तो ये हमने उसमें ये देख लेना, सारे के सारे पशु चाहे छोटे कटड़ू बछड़े चाहे बड़े हैं कामकाजी हैं और चाहे दुधारू चाहे कोई भी पशु है, अपने उस तरह उसमें देख लेना। साथ में वे फसलों में है भाइयों, जिस तरह वे है इस टाइम पर जो चल रही है बात है कि भाई जो बेल वाली सब्जी हैं उनकी देखभाल की, आज हमारा विषय भी यही है। तो वैसे तो इसका बिजाई का समय भी चल रहा है, क्योंकि देखो बिजाई का हमें ये करा कि बताऊँ भैया की वह या तो अगेती है या उसकी पछेती, उसमें भाव हम लोग चाहे कोई भी फसल है या सब्जी फसल है उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा मिला है। और जो बीज का है, बीज का हम उसमें फ़ायदा तो मिला है लेकिन इतना नहीं मिल पाता जो अगेती में पछेती मिले। तो अगेती तो भैया जी ने लगा रखी थी, वो तो खूब चल रहे बाजार में आ रही, और ईब उसका टाइम पर है हम ये कृषकान जो बीज का समय है उसमें हम बिजाई उसकी कर सका है बरसात के मौसम के लिए। उसमें भैया चाहे उसमें चाहे घिया है तोरी है कद्दू है जितने भी ये हैं बेल वाली सब्जी हम उनकी बिजाई कर सके हैं और आराम से उसकी मतलब पैदावार ले सके हैं। और इसमें एक चीज़ का और ये भी ध्यान रखा हमें कि भाई जो सही ई मारी फसलें हैं जो पाक रही हैं जो जो दिखे वह तैयार होगी झाकना अपने बाजार में बेचें, और दवाई छिड़कनी है दवाई का ये ध्यान रखा एक दो दिन में ये देखा कि भाई एक हफ्ते बाद हमने उसमें तोड़ेंगे उससे पहले अपने उसमें तोड़ाई करके ना दवाई छिड़क दें और एक हफ्ते तक उसमें से ना तोड़ें तो बढ़िया है। और बात इसमें और भी करा, लेकिन भाई उससे पहले अपने रागनी सुनवा दिया गायक कलाकार रहेंगे श्री भगवान शर्मा और उनके साथी।

Super!

0: तो भाई ये तो आपने रागनी सुनी, गायक कलाकार थे श्री भगवान शर्मा और उनके साथी। रागनी आपने और भी सुनवाएंगे, और जिक्र चल रहा था बेल वाली सब्जी फसलों की देखभाल का। तो इसमें भाई जो हमारी पुरानी फसलें हैं जो खड़ी हैं, जो यानी पैदावार देने लग रही हैं, उसमें एक तो फल छेदक मक्खी है, उससे बचाने खातर भी हमने 400 मिलीलीटर मेलाथियन है जो 50% ताकत की दवाई है ये, और इसमें साथ में 1.25 किलो गुड़ है वो मिला लें, और 250 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे तो जो फल छेदक सुंडी है या मक्खी है इसके पीछा छूट जाएगा हमारा। लालड़ी भी आ जाए इसमें, अरुआ भी काफ़ी इसमें हमला कर रहा है, तो इसके लिए 25 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन है या 25% ताकत की रहेगी, या फिर 30 मिलीलीटर फेनमलरेट ले लें इसमें या 20% ताकत की रहेगी। इसका 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे तो जो लालड़ी है इससे भी हमारा पीछा छूट जाएगा। और एक सफ़ेद चूनी रोग हो रहा जाए इसमें, यू भी काफ़ी नुकसान कर दे है, इसके लिए 8 से 10 किलो जो बारीक गंधक का धूड़ा दूड़ना है हमने इसमें, और खरबूजा में यू धूड़ा ना दूड़े में, इसके लिए हमने गंधक का धूड़ा है वो उसके हर बाग पर छिड़क देना है। और इसमें गंधक में सल्फेक्स या वेट सल्फ है यू ले लें, 200 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे तो जो इन जो सफ़ेद मक्खी है, फल छेदक है या लालड़ी है, इन सारे तो हमारा पीछा छूट जाएगा। और एक बात और भी है भाइयों, जो वर्षाकालीन है इसमें हम इसकी बिजाई भी कर सका है, इसमें हमें जिस तरह कद्दू है, घिया है, तोरी है, इसकी बिजाई हम आराम से हम कर सका है। इसके लिए हमने ईब खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। खेत की तैयारी खातर जिस तरह पहले बताया था, आपने पहले भी तैयारी कर रही है, इसमें 6 टन तो इसमें गोबर की गली सड़ी खाद है, यानी 6 गाड़ी हमने गोबर की गली सड़ी खाद वो देनी है। 8 किलो इसमें नाइट्रोजन है, इसमें 15 किलो यूरिया है, और 10 किलो इसमें फास्फोरस है या 60 किलोग्राम इसमें सिंगल सुपर फास्फेट है वो हमने ले लेना है, और 10 किलो पोटास है या 16 किलोग्राम इसमें म्यूरोटॉप पोटास है, या जब हम खेत की तैयारी करा उस टाइम पर हमने खेत में मिला देना है। बजाई हमने नाली बना ली है, नाली के दोनों सिरों पर करनी है, और किस्म का चुनाव है वो आपने ये करना है। इसमें जैसे घिया घिया है, पूसा समर प्रोफेलिक लॉन्ग है और पूसा समर प्रोफेलिक राउंड है, और इसमें एक और है GH22 है। करेला में कोयम्बटूर लॉन्ग है और पूसा दो मौसमी है। तोरी में पूसा चिकनी और गुच्छेदार और पूसा नसदार है, धारीदार। इसमें खीरा है, खीरा में जापानी लॉन्ग लेस का है और या फिर स्थानीय लेस का। टिंडा है, इशार सिलेक्शन है, बीकानेर ग्रीन और इशार टिंडा, इनमें से कोई सा भी लीज का। लाइना में बिजाई करनी है जिस तरह बताया, बटोड़िया में लॉन्ग में बिजाई करनी है, उसके दोनों सिरा पर करना है। और एक चीज़ का और हमने ध्यान रखना, जो इनका बीज है घिया करेला तोरी और खीरा है, इनका तो हमने टिंडा तो लेना है 0.5 किलो बीज, और खीरे का हमने 1 किलो बीज लेना है, उसका खीरे का 1 किलो बीज और इनका 1 से 1.5 किलो बीज हमने लेकर उसकी बिजाई हमने एक आराम से कर देनी है। और ध्यान ये रखें लाइना में इसकी बिजाई करें और डोड़िया वह करें, इसमें जिस तरह बताया घिया करेला तोरी और टिंडा है, इसमें तो 1.5 से 2 किलो बीज लगेगा इसका, और अकेला जो खीरे का है, खीरे का बीज इसमें हमने लेना है भाई 1 किलो इसमें, तो इस तरह हमने इसकी बिजाई कर लेनी है। और ये देखें कि वजह वे कि उसके अच्छी तरह बीज का बढ़िया भरोसे जगह पर बीज लें और तो उसकी बिजाई कराएंगे तो हमने इसमें ज़्यादा फायदा होगा, और समय रहते हम इसकी बिजाई कर लेंगे तो ज़्यादा फायदा इसमें हमने मिलेगा। और बात इसमें और भी करा, लेकिन आपने रागनी एक और सुनवा दिया, गायक कलाकार एक बार फिर श्री भगवान शर्मा और उनके साथी।
1: डंडा जालिया तू

भजन रागनी सुनी, पर गायक कलाकार थे श्री भगवान शर्मा और उनके साथी, और जिक्र कर रहे थे बेल वाली सब्जी फसलों की देखभाल। भाई इसमें जो ही मरी फसलें खड़ी हैं, आन लाग रही हैं, बाजार में चल रही हैं, उनमें जिस तरह बताया था कि भाई एक तो फल छेदक मक्खी ये काफ़ी नुकसान करे, तो उसके बचाव करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आप देखो, जब मान लिया फल हम कोई भी बाजार में सब्जी बेचने जाओ, जब उसमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत है, मान लिया काना है, कीड़ा है उसमें, तो आप देखो ग्राहक नहीं लेगा उसको। तो इसलिए उसमें हमने ये ध्यान रखना है, चाहे कीड़ा है चाहे बीमारी है, उसकी पहले समय रहते देख लें। और वो भाइयों ये रहेगा कि हम खेत में जाकर देखेंगे तो पता चल जाएगा, और रोज़ जाना पड़ेगा उसमें, तभी तो हमें पता चलेगा कि शुरुआत होते ही उसमें हम देख सका हैं और फिर उसका इलाज कराया जा सके। बाद में देर हो जाए तो उसमें कोई समस्या तो और बढ़ जाएगी, समाधान नहीं होगा। तो फल छेदक के लिए जिस तरह बताया था, वह इसमें 400 मिलीलीटर मेलाथियान है, 50% ताकत की दवाई है, यह ले लें। और इसमें यह ध्यान रखें, 1.25 किलो गुड़ भी ले लें और 250 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर छिड़काव कर दें हम। तो जो यह सफ़ेद फल छेदक मक्खी है इसके पीछा छूट जाए हमारा। देखिए लालड़ी है, इसका भी आक्रमण ज़्यादा हो जाए तो इसके लिए जिस तरह बताया था वह 25 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन है, 25% ताकत की दवाई है साथ में इसमें, या फिर आप 30 मिलीलीटर फेनवल रेट ले इसके, ये 20% ताकत की है। इसमें 100 लीटर पानी या गुड़ बनाकर छिड़काव करना तो लालड़ी के पीछा छूट जाएगा। और सफ़ेद चूनी रोग है, यू भी लाग जा, इसके लिए हमने 8 से 10 किलो ये जो बारीक गंधक का धूड़ा है वो उसमें खेत में अपने धूड़ना, फिर उस पर बेला में, हाँ खरबूजे में धूड़ जगह पर हमने 50 ग्राम, इसमें सॉरी 500 ग्राम घुलनशील गंधक है, सल्फेक्स या वेट सल्फ है, ये 200 लीटर पानी में घोल बना के इसका छिड़काव हमने कर देना है। तो इससे जो सफ़ेद चूनी रोग है वो उसमें नहीं आएगा, और नई फसलें जिस तरह बताया था वह बिजाई आप उस टाइम पर कर सके हैं। और भाई वो ईव घड़ी के ना देख लो, कार्यक्रम का समय हो रहा समाप्त। सारे बाण भाइयों ने राम राम।

आपने सुना खेत खलिहान कार्यक्रम। मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यूज़ ओनी IR पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.67 मीटर DTH और न्यूज़ ओनी IR पर आपसे फिर मुलाकात होगी।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 और 13 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी सभा आरंभ होती है। आइए सुनते हैं युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

0: युवा संसार सुन रहे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है और आप सभी को रिशिता का नमस्कार
1: और आप सभी साथियों को दीपांशु का भी नमस्कार।
0: साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम मना रहे हैं राष्ट्रमंडल दिवस, जो प्रत्येक वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। यह दिवस कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के सभी सदस्य देशों द्वारा मिलकर मनाया जाता है, जिसमें विश्व के लगभग 56 देश शामिल हैं। इस दिवस की शुरुआत 1902 में हुई थी, जब इसे एम्पायर डे के नाम से जाना जाता था, और बाद में 1958 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया गया। इस दिन सभी सदस्य देश आपसी सहयोग, मित्रता, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने का संकल्प लेते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और भाषाओं के बावजूद सदस्य देशों के बीच एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करना है।
1: बिल्कुल साथियों, जैसा कि ऋषिता ने बताया, 24 मई के दिन राष्ट्रीय मंडल दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। यह दिवस उन सभी देशों में मनाया जाता है साथियों, जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे। और आप सभी को बता दें कि कुछ देशों में यह दिवस मार्च के दूसरे सोमवार को भी मनाया जाता है। और साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, आज है रविवार का दिन और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम युवा पसंद, जिसमें हम आपको कुछ सुनवाते हैं फरमाइशी गीत। तो पहले गीत की फरमाइश जो है हमारे साथियों की तरफ से मिली है, बेरडी से हमारे साथी हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने वैष्णवी, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे, अकोला महाराष्ट्र से संतोष राव बकाड़े, ज्योति, पवन कुमार, कैलाश राव और वंदना बकाड़े, बुंदेलखंड यूपी से हमारे साथी हैं नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न और गौरव, कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना और मोहम्मद कैफ, और हमारे साथी हैं लुम्बिनी अकोला से राहुल बंसोड़, सम्यक शरण और मीरा बंसोड़।
0: साथ ही खंडवा मध्य प्रदेश से आप हैं विजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, अनम, अनाया, सपना, शिवी और सलोनी। साउथ एक्सटेंशन से गुरमीत सिंह मीता, महाराष्ट्र से तुलसीराम डेरे, माया, संदेश डेरे, आदेश, प्रज्वल, दादुल्या डेरे, ध्रुव गिरी, ज्योति, अनुज, गुलशन डेरे, चंद्रकांत पाटिल, किरण, नितिन खाड़े, शेखर सोनोने, किसान वायले, तेजस और प्रणीता। बागपत यूपी से आप हैं एहसान अली और दिल्ली से सोनम और अदीपा। और ये गीत है फिल्म धुरंधर से, जिसे संगीत दिया है शाश्वत सचदेव ने। आवाज़ें हैं मधुबंती बागची और जैस्मीन सैंडलेस की, और बोल लिखे हैं जैस्मीन सैंडलेस और शाश्वत सचदेव ने। आइए साथियों, सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का ये गीत।

0: साथियों, भी हमने सुना था ये गीत फिल्म धुरंधर से, जिसे संगीत दिया था शाश्वत सचदेव ने, आवाज़ें थी मधुबंती बागचे और जैस्मिन सैंडलेस की, बोल लिखे थे जैस्मिन सैंडलेस और शाश्वत सचदेव ने।
1: और बढ़ते हैं साथियों अगले गीत की तरफ, जो लिया गया है रंग फिल्म से, गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, गीतकार हैं समीर और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। इस गीत की फरमाइश की है साथियों तिरुपति नगर से हमारे साथी हैं संतोष वसाने, उषा ऋषिकेश, अनिकेत वसाने, लाहौर से कमलनाथ पटेल, राकेश, समीर और राजकुमारी पटेल, लोहगढ़ पंजाब से हमारे साथी हैं स्वर्ण सिंह दलजीत, राजदीप, गुरलाल, अविराज, गुरनूर और शुभदीप, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता, कलानौर से हमारे साथी हैं नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा।
0: साथ ही बक्सर से आप हैं शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा राज अंसारी, आसमा, गुलफराज भागलपुरी, मनीगाछी जतुका बाट से आप हैं विजय लाली आलम, वकील राही, फिरोज आलम, नाज प्रवीण, शबाना, रिजवान और हीना, उत्तराखंड से रेहान, शमरीन और माहिरा नूर, पत्रोड़ा अनूपगढ़ से आप हैं मंगल, रोशनी, अंकुर, इंदु और सुनील जनागल, साथ ही इंदौर से आप हैं वंदना मराठा, गणेश, कार्तिक मराठा, परी, संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, ललिता और नारायण।
1: आइए साथियों सुनते हैं फरमाइशी गीत।

0: साथियों, अभी आपने सुना रंग फिल्म से गीत गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने, गीतकार थे समीर और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। और साथियों, आइए बात करते हैं, आज 24 मई का दिन है और आज के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ मारखोर भी मनाया जाता है। हर साल 24 मई के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ मारखोर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मारखोर नामक दुर्लभ बकरी के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। मारखोर एक पहाड़ी बकरी है साथियों, जिसकी पहचान इसके लंबे व घुमावदार सींग हैं। अवैध शिकार, जंगलों की कटाई व प्राकृतिक आवास के नष्ट होने के कारण इसकी संख्या लगातार घटती जा रही है। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाने की घोषणा की गई साथियों, ताकि लोग वन्य जीवों के महत्व को समझ सकें और इनके संरक्षण के लिए आगे आएं। साथियों, हम सभी को हमें भी वन्य जीवों और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए और जानवरों के प्राकृतिक आवास को भी सुरक्षित करना चाहिए।
1: और साथियों, मारखोर एक अत्यंत ही सुंदर जंगली बकरी की प्रजाति है, जो मुख्य रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की पहाड़ों क्षेत्रों में पाई जाती है। यह पाकिस्तान का राष्ट्र पशु भी है। और आपको बताएं कि मारखोर की सबसे विशेष पहचान उसके पेचदार सींग हैं, जो इसे अन्य पशुओं से अलग और अनोखी बनाते हैं। मारखोर शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है सांप खाने वाला। यह प्रजाति एक समय विलुप्ति के कगार पर थी, परंतु संरक्षण प्रयासों के कारण संख्या में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य इस दुर्लभ प्रजाति के प्रति जागरूकता फैलाना, इसके प्राकृतिक घर की रक्षा करना और अवैध शिकार को रोकना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत है फिल्म बैंड बाजा बारात से, जिसे संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने, बोल के हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और आवाज़ें हैं सलीम मर्चेंट और सुनिधि चौहान की।
0: इस गीत को सुनना चाहे साथियों, गंज डुंडवारा से हमारे साथी हैं मोहम्मद इकबाल सलमानी, मोहम्मद आफाक सलमानी, मोहम्मद फैजान सलमानी, मोमिन इकबाल और इरम इकबाल। रघुनाथपुरा से हमारे साथी हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। केलंगा से सुंदर पाल कौशिक, अभी, निशु, देबू, परी, पिंटू और पाखी कौशिक। राजिम छत्तीसगढ़ से हमारे साथी हैं अनिल, अंजुलता, आदित्य और कृष श्रीवास्तव। नयापारा भीरई से बसंत सूर्यवंशी, सरोज, ईश्वरराज, चंद्रकांत, प्राची और ट्यूशी सूर्यवंशी।
1: साथ ही मेरठ से आप हैं कविता। महाराष्ट्र से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर, इंदिराबाई, सुनैना खोबरखेड़े और तनुजा। जलगांव से राम घाड़े, दीपाली, स्वराज घाड़े। मलोट पंजाब से आप हैं छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत, गगनदीप और रौनकदीप कौर। साथ ही पुणे से आप हैं पंकज दाड़ोदे, आर्या, आदि, शैलेश, सोनम, धनुषपुरी और बीटी दाड़ोदे। आइए साथियों, सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

0: साथियों, अभी हमने सुना ये गीत फिल्म बैंड बाजा बारात से, जिसे संगीत दिया था सलीम सुलेमान ने, बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और आवाज़ें थीं सलीम मर्चेंट और सुनिधि चौहान की।
1: चलिए रिचेता, अगले फरमाइशी गीत की तरफ बढ़ते हैं जो लिया गया है साथियों डोन फिल्म से। गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, गीतकार हैं अनजान और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत की फरमाइश की है साथियों अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत और गुरशब्द राहुल। चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, नवनीत, अमनदीप और अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज और करनाल से जग्गी दुआ। छत्तीसगढ़ से हमारे साथी हैं देवशंकर तामूरिया, अजय, तुषार, डोली, पूजा और प्रभा देवी तामूरिया। गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा राठौड़। राजनांदगांव से योगेश सारवा, आशा, नीरेज, नीलेश और अंजलि सारवा।
0: साथ ही महाराष्ट्र से बाबा साहेब, मीनाक्षी चरपे, चंद्रप्रभा दाड़ोदे और महाराष्ट्र से ही आप हैं महेंद्र, विजय मिलिंद सरकरे। नई दिल्ली से सुरेंद्र खुराना, सुमित सुरभि, अनीता खुराना, राजीव ढींगड़ा और कन्हैया लाल। मलौट पंजाब से आप हैं बलराज राम कालवा, भोला राम लक्ष्मी, कुदरत, मनप्रीत कालवा, मेवा सिंह, हरप्रीत और शिवराज मान। भिवानी से आप हैं कृष्ण मेहरा, कोमल, कपिल और कुणाल। साथ ही पिरदा कोरासी से आप हैं रोहित साहू, हरीश कुमार, पुष्पलता और राधा साहू। आइए साथियों, सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

0: और किसको। साथियों, अभी आपने सुना डोन फिल्म से गीत गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, गीतकार थे अनजान और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने।
1: और इसी के साथ साथियों, वक्त हो चला है कार्यक्रम को यही समाप्त करने का। उम्मीद है आपसे मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी दिन, तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहाँ इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 3rd ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम रूपरेखा। पहले आपको आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। रात्रि 10 बजे सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर सुनीता रानी से गर्मियों में मछलियों की देखभाल विषय पर बातचीत सुनेंगे। ग्रामीण संसार कार्यक्रम में शाम 7 बजे भेंट वार्ता एक कलाकार के तहत लीला सैनी से भेंट वार्ता होगी।

देर शाम 7:30 बजे समय रहेगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। सुगम संगीत कार्यक्रम को सुनेंगे रात्रि 8:25 पर। रात 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से। लोक संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 9:30 बजे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। श्रोताओ, अब आपको बताते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। शाम 5 बजे आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में पद्म पुरस्कार वितरण व संबोधन का सीधा प्रसारण। और रात 9:30 बजे सुनेंगे पब्लिक स्पीक। दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 6:30 बजे आप सुनेंगे साप्ताहिक समीक्षा, जिसे रिले करेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

एनसीईआरटी द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम को सुना जा सकता है दिन में 12:30 बजे। शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर राजू शर्मा से बातचीत का विषय होगा गर्मी के मौसम में मुर्गी घरों की देखभाल। दिन में 2:30 बजे खेत खलिहान कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा ग्रीष्मकालीन मूंग की काश्त। ग्रामीण संसार कार्यक्रम में शाम 7:00 चौपाल फोन इन कार्यक्रम सुनेंगे। अब प्रातः 7:15 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे आर्यन बीट्स का गाया राग अहिर भैरव।

सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात 8:25 पर। प्रातः 9 बजे आप सुनेंगे पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। दिन में 1:10 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम, फिल्म संगीत कार्यक्रम

सुन सकते हैं देर शाम 7:30 बजे और रात 9:15 पर कार्यक्रम रहेगा एक फिल्म से। मन चाहे गीत कार्यक्रम को सुनेंगे रात्रि 10 बजे और प्रातः 8:30 बजे लोक संगीत कार्यक्रम में हमारे कलाकार रहेंगे बालवीर सिंह नागर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले करेंगे।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका? गुड्डी की फीस का।
1: दिखा।
2: 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के,
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के टाउन पार्क में विभिन्न निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने युवाओं को स्वस्थ और नशों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। पलवल में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन पंचकुला में होगा। सभी 23 जिलों में योग प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी। और फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने गांजा और स्मैक की तस्करी में लिप्त 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। हरियाणा के राजस्व एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने आज फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित टाउन पार्क में 4 दीवारी के निर्माण, सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक, कंक्रीट पैदल पथ, ओपन एयर थिएटर, मुख्य प्रवेश द्वार के नवीनीकरण तथा 3 नए फाउंटेन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, गणमान्य व्यक्ति और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री विपुल गोयल ने कहा,
10: टाउन पार्क के अंदर जो आज ये काम है, देखो 6 महीने का हमने ड्यूरेशन रखा, 3-4 महीने के अंदर हम इसे पूरा करने का काम करेंगे। और सिर्फ ये 9 करोड़ रुपए नहीं, कुछ काम इसमें रह गए थे जो टेंडर के अंदर नहीं आए, लगभग 6-7 करोड़ रुपए और इसके अंदर ऐड होंगे, 15-16 करोड़ रुपए लग के इस पार्क को और बेटर किया जाएगा। इसके अलावा 28 तारीख को नए वाटर कूलर की डिलीवरी हो जाएगी, 29 तारीख को तो वाटर कूलर और जगह जगह पर लग जाएंगे, जिससे हमारे लोगों को पानी पीने की कोई दिक्कत ना हो। और ये भी बताना चाहता हूँ, वाटर कूलर के साथ आरओ वाटर सिस्टम भी है, और जो पहले आरओ वाटर लग रहा है उसको भी हमने बेटर करने का काम किया है।
9: उन्होंने कहा कि सेक्टर 12 के खेल परिसर और स्टेडियम के विकास पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बड़े स्तर पर काम चल रहा है। इसके तहत स्टेडियम को नया स्वरूप देने के साथ साथ उसमें कई आधुनिक सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं मिल सके। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने तथा युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित

करने के उद्देश्य से आयोजित मैराथन को झंडी दिखाई। मैराथन दौड़ में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्राओं सहित हजारों की संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिला प्रशासन एवं बी सत्य फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित ये मैराथन सेक्टर 2 स्थित सामुदायिक भवन से शुरू होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पर आकर समाप्त हुई। इंदौर स्टेडियम में आयोजित समापन कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री ने युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए सुबह की दौड़ के लिए प्रेरित किया। श्री गौतम ने युवाओं से नशों से दूर रहने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

0: तख्त लेकर आएगा, किनारे वाले तुम्हें तो ठीक है, नंदे से दूर रहेंगे।
1: उन्होंने कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और अपनी मेहनत, लगन तथा क्षमता के बल पर नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। श्री गौतम ने लड़कियों द्वारा दी गई प्रस्तुति को भी सराहा।
0: हमारी बहनों में बहुत अच्छी सांस्कृतिक करते हम सबको वो इच्छा, हमारी बहनों ने माँ दुर्गा और माँ काली का अपमान दिखाकर ये बताया कि हमारी बेटियां हमारी बहनें इस प्रकार के तख्ता लगा रही है।
1: इस अवसर पर मैराथन दौड़ में भाग लेने वाले प्रतिभागियों सहित कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा परिणामों में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। आज कुरुक्षेत्र में शहीद स्मारक पर ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण को समर्पित एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सैनिकों एवं वीर जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली के दौरान आमजन को ऊर्जा बचाने के लिए प्रेरित किया गया और स्वच्छ एवं हरित भारत के लिए पर्यावरण संरक्षण प्रति जागरूक किया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉ. जयदीप आर्य ने कहा है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में होगा। उन्होंने कहा कि सभी 23 जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस बार सभी जिलों के उपायुक्त योग दिवस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी होंगे। इस कार्यक्रम को हरियाणा योग आयोग, आयुष विभाग हरियाणा द्वारा अन्य विभागों के तालमेल से मनाया जा रहा है। डॉक्टर जयदीप आर्य ने कहा कि इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हरित योग के तौर पर मनाया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक जिले में 10,000 औषधीय पौधे आयुष व वन विभाग के सहयोग से लगाए जाने का प्रावधान है। इसके तहत नीम, पीपल, जामुन, अर्जुन, बड़ का पेड़ और फिर हर्ब्स जैसे तुलसी, गिलोय, हार श्रृंगार, एलोवेरा लगाए जाएंगे। ये पौधे प्रत्येक योगशाला में सभी निजी व सरकारी विद्यालयों के प्रांगण में लगाए जाएंगे। उन्होंने सभी प्राचार्यों से अपील की कि यदि कोई विद्यालयों में पौधे लगाना चाहता है तो वो उस जिले के जिला आयुष अधिकारी व जिला वन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की कड़ी में आज भिवानी के बाल सेवा आश्रम प्राथमिक विद्यालय में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जिला रोलर स्केटिंग एसोसिएशन, आपकी योगशाला, सर्व मंगल संस्था एवं गोरक्षा दल भिवानी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यालय के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने अत्यंत उत्साह, ऊर्जा और अद्भुत अनुशासन का परिचय देते हुए विभिन्न योगासनों, प्राणायाम और ध्यान क्रियाओं का अभ्यास भी किया। फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने गांजा और स्मैक की तस्करी में लिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 30 किलोग्राम से अधिक गांजा और 8 ग्राम 56 मिलीग्राम स्मैक बरामद किया है। सहायक पुलिस आयुक्त अपराध वरुण कुमार दहिया ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि अपराध शाखा ऊंचा गांव की टीम ने साहिल और अनीश को MBN पाली रोड से एक कार सहित गिरफ्तार किया। इनके पास से 21 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद हुआ।
2: हैबिचुअल ऑफेंडर जो कि साहिल नाम से एक लड़का है, 24 वर्ष उसकी उम्र है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, काफी इस तरह के NDPS रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है और उससे 21 किलो 55 ग्राम लगभग जो गांजा है उसकी गाड़ी से बरामद करा गया है। 23 तारीख की ये घटनाक्रम है जब हमारे ऊंचा गांव इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुंदर के पास सूचना प्राप्त हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने टिप ऑफ किया और नाकाबंदी करी और फिर जब मौके पर इंटरसेप्ट करा गया एक व्हीकल को, जिस जब उसकी छानबीन करी गई और जानकारी ली गई तो राजपत्रित अधिकारियों को बुलाया गया और तलाशी के दौरान उसके पास कमर्शियल क्वांटिटी का NDPS सब्सटेंस मिला।
1: इसके अलावा ग्रेटर नोएडा निवासी अमित को फतेहपुर तगा गांव से 8 किलो 200 ग्राम गांजा सहित और संतोष को 352 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि हसीन उल्ला को 480 ग्राम गांजा सहित दबोचा गया। वहीं वसीम को 8 ग्राम 56 मिलीग्राम स्मैक के साथ नेहरू कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के टाउन पार्क में विभिन्न निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने युवाओं को स्वस्थ और नशों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। पलवल में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: खो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: आरबीआई कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सारे वन भाइयों ने अशोक भाई की राम राम। भाइयों, गर्मी है अपने कति सही पीक पॉइंट पर चल रही है, तो इससे बचाव करना बहुत जरूरी है, अपने आप का भी, अपने पशुओं का भी और फसलों का भी। साथ में भाइयों, अभी जो नई फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं, उनकी भी हमने बिजाई की तरफ ध्यान देना है। हाँ, जो भी एक तो अपना ये चुनाव करें कि हम इस खेत में हमने ये फसल लगानी है, उसमें हर तरह का हमारा इंतजाम होना चाहिए। जैसे पानी का है भाई, पानी का कितना पानी लगा, काम किस तरह देश का, हाँ वो चीज़ होनी चाहिए। उस ज़मीन में वह फसल हो सके कि नहीं हो सकती, यानी आपने अपनी ज़मीन का तो पता है ही है, साथ में उसमें ये देख लेना कि भाई ये फसल इसमें हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और सारी चीज़ें का हम इसमें एक बढ़िया प्रबंधन करके ने अच्छी पैदावार ले सका कि नहीं ले सका, इन चीज़ें हमने पूरा ध्यान रखना। और भैया, आजकल तो ये देखा जो जागरूक किसान है, पढ़े लिखे किसान तो वैसे हैं, सारे सारे हर तरह की जानकारी ले सके, किसी भी माध्यम से ले सके हैं, इंटरनेट के माध्यम तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसमें अगर हमें अब भी उसमें पिछड़ते हैं तो फिर मुश्किल है बात है। किसान भाई ने अपनी खुद की आमदनी बढ़ानी है और अपने परिवार को खुशहाल करना है, और परिवार खुशहाल होगा तो किसान भाई का फिर देश भी खुशहाल होगा भाई। तो इस ओर हमने पूरा ध्यान ये रखना है कि भाई अपनी फसल जो लगानी है वो उसका देख लें कि भाई इसमें इस खेत में लगानी है। जैसे अब

0: बात करें आगे ये धान की खरीफ में, उसमें धानों में ये नहीं देखना, किसी दूसरे को देख कर नहीं देखना है, या यूँ कह सकता कि उसमें कोई भाई ये कहे भाई उसमें इतनी आमदनी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने ये ध्यान रखना है कि मैं अपने खेत में ये यहाँ लगा सकता हूँ या नहीं, और फिर ऊपर से उसमें जितने पानी आऊँ उतने पानी दे सकता हूँ या नहीं दे सकता, इन चीज़ों की तरफ हमने पूरा ध्यान रखना भाई। नहीं तो अगर जमान ले ये नहीं रहा तो आगे जाकर ना तो पैदावार होती और फिर उसमें हमने भारी परेशानियाँ उठानी पड़े। तो ये इन चीज़ों का तो हमने ज़रूर ध्यान रखना आगे चल कर, नहीं है ये देखना कि अगर जब मान लिया आमदनी नहीं हुई पैदावार नहीं हुई तो फिर उसका फ़ायदा क्या है, इन चीज़ों ने देख कर अपने उसमें चलना है। और एक पढ़ा लिखा जागरूक और किसान हम ये कह सकें कि वो सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देगा, जैसे अब खेती के साथ साथ है अपने जो उसके खेती से लगते व्यवसाय हैं उनकी तरफ भी भैया खूब ध्यान हो रहा है, चाहे उसमें कोई भी व्यवसाय है उसमें पूरा ध्यान दे रहा है, और उसके लिए सरकार भी और यूनिवर्सिटी भी उसमें क्या करती है प्रशिक्षण देती है, और कई बार तो उसमें क्या सब्सिडी भी मिलती है भाइयों। तो इसलिए ये देखें कि भैया क्योंकि ज्योति भी कम रह रही है अपनी, तो खेती के साथ साथ हमें अपना जो दूसरा धंधा है वो कर लेना सबसे बढ़िया रहे। इसमें देखो जैसे भाई मुर्गी पालन है, मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, शुक्र पालन है, डेयरी फार्मिंग है, कितने व्यवसाय हैं, जैसे फूलों की खेती में यानी हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी थोड़ी ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकते हैं। दूसरे व्यवसाय करेंगे तो और भी ज़्यादा फायदा रहेगा, उसमें एक तो ज़्यादा काम पाया रहेगा, क्योंकि आजकल जो कृषि में तो है भाई वो आ गई भाई मशीनी युग आ गया है, काम इतना नहीं रहा भाई ने, तो अपना आमदनी बढ़ाने खातिर या आमदनी को और ज़्यादा आगे ले जाने के लिए इसमें दूसरा व्यवसाय कर सके। इसमें जिस तरह जिक्र किया था वह मछली पालन का है, मछली पालन का भी कई भाई अपने खेतों में तालाब खुदाई कर रहे हैं और वहाँ मछली पालन खूब कर रहे हैं इसमें। तो इन दिनों में देखा जाए गर्मी के दिनों में है, गर्मी के दिनों में मछलियों की देखभाल कैसे की जाए, तो ये आपने एक पूर्व प्रसारित बातचीत सुना लिया, तो ये सुने बातचीत।
1: भाइयों आज हमारी बातचीत का विषय रहेगा गर्मियों में मछली तालाबों की और मछलियों की देखभाल कैसे की जानी चाहिए, क्या बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इस सब के बारे में बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता जी को। आप फिशरीज कॉलेज है, महाविद्यालय है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में, वहाँ से आप अधारी हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है स्टूडियो में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो क्योंकि गर्मी का मौसम है तो इसमें पानी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो पानी की कमी की वजह से क्या क्या दिक्कत होती हैं मछलियों को, और किस तरह की कोई बीमारी आने की इसमें संभावना रहती है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे।
2: नमस्कार, आप सबको मेरा नमस्कार जी। किसान भाइयों को मेरा राम राम। गर्मी का मौसम एक ऐसा मौसम है कि जहाँ पे ना ये आज हम देख रहे हैं कि तापमान जो है
1: जी
2: वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हमने यहाँ देखा अपने अगर आसपास हम देखते हैं रोहतक, हिसार, सिरसा, जहाँ 50 डिग्री तक टेम्परेचर गया, वो तापमान मछलियों के लिए बहुत ही क्रूशियल था,
1: वो नुकसानदायक है,
2: बहुत ज़्यादा नुकसानदायक था
1: जी।
2: क्योंकि मछलियाँ आती हैं सतह पे, पानी की सतह पे
1: जी,
2: वो खाना खाने के लिए आती है। अब हम भी जहाँ हैं इतने हाई टेम्परेचर पे या इतने ज़्यादा तापमान पे हमारा सर्वाइव एसी कूलर भी लगाते हैं, और जो मछलियाँ पानी के अंदर रहती हैं उनके लिए तापमान की स्थिरता या तापमान प्रॉपर होना, सही मात्रा में होना, उसका एक सही लेवल होना, वो बहुत ज़रूरी है
1: जी।
2: अगर हम ऐसे देखें अपनी स्टडी को करते हैं तो हमारी जो मछलियाँ जो हरियाणा में हम पैदा करते हैं, प्रजनन करते हैं, जो मछलियाँ जो हम रोहू की बात करते हैं, कटला की बात करते हैं, मिर्गल की बात करते हैं, या हम ग्रास कार्प जो एक मछली जो हमारे हरियाणा में स्पेसिफाई होती है जो घास खाती है इसलिए हम उसको ग्रास कार्प बोलते हैं, इस तरह की मछलियाँ हैं जो बड़े ही हाई लेवल पर यहाँ पर पैदा की जाती है, प्रजनन की जाती है
1: जी।
2: यहाँ का जो वाटर है, पानी है जो यहाँ का, वो हम कहेंगे कि खारा पानी है थोड़ा। हम यहाँ पे जो हम कल्चर कर रहे हैं या प्रजनन कर रहे हैं वो मछलियों का हम करते हैं कि उसको हम करेंगे उसको लोअर, यहाँ का जो फ्रेश वाटर ताप जो हमारा तापमान होगा ताज़ा पानी जो होगा वो ताज़ा पानी को हम वहाँ पे उसका जो तापमान रखेंगे 28 से 32 डिग्री जो हमारा सूटेबल है सही तापमान जहाँ पे मछलियाँ अच्छे से सर्वाइव कर जाती है अच्छे से रह लेती हैं।
1: इतना यानी कि 32 डिग्री तक तापमान होना चाहिए।
2: हाँ जी,
1: मतलब इससे कम हो तो अच्छा रहेगा।
2: लेकिन आप यहाँ देखिए कि जो तापमान है वो अब या तो हो रहा है 40 डिग्री
1: जी
2: बहुत ज़्यादा, इसमें मछलियों का क्या हो रहा है कि उनको ऑक्सीजन जो हम कहते हैं वो जो बहुत ज़रूरी है पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है वो बहुत इफ़ेक्ट करती है
1: जी।
2: हमारे किसान भाइयों को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो तापमान है पानी का वो सीधा इफेक्ट जो प्रभाव डालेगा मछलियों के गिल फेफड़े उन पे डालता है
1: जी। यानी कि अगर पानी गर्म हो जाएगा ज़्यादा तापमान की वजह से तो उनके जो फेफड़े हैं जिनको गिल्स बोलते हैं तो उनमें सबसे पहले समस्या आएगी
2: जी। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है पानी के अंदर
1: जी।
2: अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो हम मछलियाँ क्या करेंगी स्तय की तरफ आएंगे
1: जी,
2: वो स्ट्रेस में आ जाएंगे। हाँ जी, उन्हें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप एक किसान भाई अगर देखता है कि मेरे तालाब का पानी कैसा है मेरे तालाब में कि मछलियाँ मुझे कहाँ तक दिखाई दे रही हैं वो तापमान के ऊपर बहुत डिपेंड कहने की बात है कि ओवरऑल हम कहेंगे सबसे पहले हमारे एक तालाब का जो तापमान है वो सही होना चाहिए
1: जी। तो सब इसको नाप सकते हैं किसी तरह से थर्मामीटर वगैरह
2: थर्मामीटर आते हैं
1: जी।
2: हम थर्मामीटर से चेक करेंगे प्रॉपरली। हम दिन में 5 से 6 टाइम 5 से 6 बार हम तापमान को चेक करेंगे।
1: डॉक्टर साहब, अब मान लो 5 फुट पानी हमने भर रखा है तो क्या अलग अलग स्तर के हिसाब से उसका तापमान लिया जाएगा या सिर्फ ऊपर से लेंगे तो उसी से काम चल जाएगा?
2: नहीं सर, हम क्या करेंगे उस तापमान को अंदर तक
1: जी
2: टेम्परेचर है सुपरफिस लेते हो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो ऊपर की जो लेयर होगी हम उसको करेंगे वहाँ से हम अपने जो भी तालाब होगा तालाब की हम किनारे पे जाएंगे जहाँ पे फिशेस को हम खाना देते हैं मछलियों को खाना देते हैं वहाँ पे जाए और वहाँ पे हम क्या उस तापमान को चेक करेंगे एक जगह पे जहाँ पे पानी एक जगह रुका हुआ होगा। किसी भी तालाब के अंदर देखिए एक टाइम पे क्या होता है कि पानी ठहर जाता है अदरवाइज जैसे जैसे मछलियाँ चलेंगी आगे की तरफ जैसे जैसे चलेंगे जैसे उनकी मूवमेंट होगी पानी क्या है उसी के साथ साथ आगे आगे चलेगा
1: जी।
2: हमें यहाँ पे देखना है कि हमारी मछलियाँ हमें सबसे पहले क्या है कि अपने तापमान को अगर हम वैसे देखें थर्मामीटर भी नहीं है तो वहाँ पे मछलियों की जो मूवमेंट है वो किस तरीके से है हम देख सकते हैं कि हमारी मछलियाँ ऊपर तो नहीं आ गई स्तर पर
1: जी।
2: अगर स्तर पे आ गई हैं तो हमें सबसे पहले तो टेम्परेचर चेक करेंगे थर्मामीटर से उसके बाद उसका ऑक्सीजन चेक करेंगे
1: जी। वो कैसे चेक करेंगे?
2: आजकल ऑक्सीजन के अगर आप करेंगे तो सिंपली है कि सिंपली आप ये लगाइए देखिए अगर मछलियाँ बिल्कुल ऊपर की तरफ आ रही हैं और अपना मुँह खोल रही हैं यानी कि उनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो रही है
1: जी।
2: उसी वे में आप सबसे पहले क्या कीजिए अपने हाथ को पानी के अंदर डालिए और सेक करिए लेकिन ये जो प्रयोग है आप एक छोटे टैंक में कर सकते हैं तालाब में करेंगे क्या उसके लिए हमारे एरिएटर होते हैं जो किसान भाइयों को बड़े आसानी से मिल जाते हैं
1: या एरिएटर यानी कि हवा उसमें मिलाने वाले
2: हवा मिलाने वाले हम बोलेंगे या फिर जो कहेंगे पानी की स्तर के स्तर को बार बार हटाएंगे वहाँ से कि जो पानी ऊपर की तरफ है वो नीचे जाएगा वो और नीचे जाएगा जैसे जैसे वो एरिएटर चलेगा उसकी वजह से क्या है वो पानी नीचे की तरफ जाएगा जो सतह का पानी है अगर वहाँ का तापमान अगर हम कहेंगे 35 डिग्री सेल्सियस है और बहुत हाई है अगर वो पैडल दिन रात चलेगा हमारे एरिएटर हम देखते अगर 1 हेक्टेयर का हमारा तालाब है तो हम उसमें 3 से 4 एरिएटर लगाएं लेकिन वो हम जरूरी है जो गर्मियों का जो मौसम है उसमें ज़्यादा जरूरी है।
1: यानी मोटी बात ये है कि पानी की अदला बदली करनी है ऊपर का पानी है वो नीचे नीचे का पानी है वो ऊपर आ जाए
2: ऊपर इससे होगा क्या
1: जी।
2: सबसे पहले तो जो पानी का तापमान है वो चेंज हो जाएगा वो बदल जाएगा वो बदलेगा तो तापमान बदलने के साथ साथ जो मछलियां हैं वो भी नीचे जाना स्टार्ट कर देंगे।
1: जी।
2: अब हम मछलियों को जान रखते हैं कि हम कहेंगे तालाब का जो पानी है वो उसका रंग देखते हैं
1: जी।
2: कि अगर तालाब का पानी है हरा है या वो आपको कुछ एक या दो फुट की नीचे तक आपको साफ दिखाई दे रहा है या उसका कलर ब्राउन कलर का है या भूरे रंग का है और भूरा भी कैसा है, गहरा भूरा है या हल्का भूरा है
1: जी,
2: तो उसमें क्या होते हैं हमारे सैवाल होते हैं जी, काई वगैरह होते हैं जो खाने के लिए यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, मछलियां को लेती हैं
1: जी।
2: अगर वो भी ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो उससे भी क्या है हमारे तालाब के अंदर क्या है तापमान बढ़ जाता है।
1: अच्छा,
2: क्योंकि सूरज की रोशनी सीधी ऊपर सतह पे आएगी, उससे जितने भी हमारे काई है, जितने भी हमारे पौधे हैं, जलीय पौधे हैं, वो जलना स्टार्ट हो जाएंगे, वो उगना स्टार्ट हो जाएंगे और वो इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं कि उनको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है
1: जी।
2: हमारे किसान भाइयों को नई टेक्निक का इतना थोड़ा सा अभी अंदाज़ा नहीं है कि अभी हम क्या करते हैं, किसान भाई सिंपली क्या है ऊपर से हाथों से उस काई को उठा देते हैं लेकिन वो नीचे तक होती है
1: जी।
2: तो जिसकी वजह से क्या है तापमान वो वहीं पे उसका स्थिर रहेगा
1: जी।
2: अब जब स्थिर रहेगा तो मछलियां जो नीचे के लेवल पे हैं, नीचे के स्तर पे हैं, वो क्या करेंगी अपने आप को ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आएंगे
1: जी।
2: जैसे जैसे वो ऊपर आएंगी उनके अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी। अब आप ये देखिए कि तापमान का सीधा असर हमारे ऑक्सीजन लेवल पे पड़ रहा है। हम पहले क्या करते थे, पैडल एरिएटर होते थे सिंपली वाले जिससे क्या वाटर एक्सचेंज किया जाए। अब इसके साथ क्या गया, जो मैंने आपको बताई जो काई है हम वहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं, फिल्ट्रेशन
1: जी।
2: फिल्ट्रेशन सिस्टम से होता क्या है, उस सिस्टम से जो हमारे पोंड के अंदर जो हमारी मछलियाँ जहाँ पे हैं हम लगाते हैं, जहाँ पे हम अगर एक हेक्टेयर का आपका तालाब है उसमें हम दो फिल्टर लगाएंगे
1: जी।
2: दो फिल्टर से होगा क्या, आपका सिंपली कि जहाँ पे आपका चल रहा है जो प्रोसीजर कि जितने भी हरे ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलते हैं या हरी काई है जो ऊपर से है आप उसको वहाँ से उठाएगा।
1: अच्छा,
2: और पानी को क्लीन करने का काम करेगा, फिर
1: साफ कर देगा,
2: जैसे हमारे घरों में आरओ होते हैं जैसे साफ करते हैं, कुछ इस तरीके की मशीनें लगी होती है जो तालाबों के अंदर लगाई जाती है और उनको साफ करेगा
1: जी।
2: अगर जब वो उनको साफ करता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। अगर वहाँ पे मछलियाँ भी ज़्यादा हैं और वहाँ पे ये हमारे जलीय पौधे भी ज़्यादा हैं
1: जी,
2: तो उसका सीधा असर हमारे जो पानी है तालाब का पानी है उस पे पड़ता है। उस पानी से होता क्या है कि जहाँ पे क्या है हम इनकी मात्रा को कंट्रोल रखें, उसको प्रॉपर वे में रखें, उसको सही ढंग से रखें, तो हम क्या करेंगे एक तापमान, एक तालाब के तापमान को हम स्थिर रख सकते हैं
1: जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पानी हमने जांच करनी है कि तापमान उसका कितना है, और उसका जानने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप यूँ देखें भी मछली बाहर आके सांस ले रही है, मुंह खोल के अगर सांस ले रही है तो इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी है, और तापमान उसका बनाए रखने के लिए पानी को हमने ऊपर नीचे करना है, अदला बदली उसी करनी है। ये तो बात होगी ऑक्सीजन की और पानी की। दूसरी बात हम करेंगे कि इन दिनों उनका चारा दाना है, उनका खाना पीना है, उसका हमने किस प्रकार से ध्यान रखना है?
2: जी आपने सही कहा कि देखो हम जब तालाब में कहीं से मछलियाँ ला के डालते हैं
1: जी,
2: तो पहले जब हम लेके आते हैं मछलियों को तालाब में छोड़ने, हम उनको भूखा रखते हैं।
1: अच्छा,
2: हाँ जी,
1: मतलब ये क्या बात, उनको दंड मिलता है इस बात का?
2: ये दंड नहीं कहेंगे, ये उन्हीं के ही स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है,
1: जरूरी होता है।
2: हाँ जी जी, जैसे आप कहीं से आप लेके आए मछली का बीज लेके आते हैं
1: जी,
2: तो वो खाना खाएंगे वही है पानी के अंदर
1: जी,
2: जहाँ आप उनकी पैकेजिंग करेंगे तो उस जो उसका जो निष्कासित पदार्थ होता है
1: जी,
2: उस पदार्थ से क्या है उस पानी के अंदर अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है।
1: अच्छा,
2: जो फिश की या हम कहेंगे मछलियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है
1: जी,
2: तो वो जितना कम खाएंगे उतना ज़्यादा उसका निष्कासित वो कम होगा
1: जी।
2: तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि उनको एक या दो दिन हम बुखार रखते हैं, तालाब के अंदर डालते हैं जब हम
1: जी,
2: पहले दिन हम उसको पानी खाने के लिए कम देंगे खाना
1: जी।
2: यहाँ पे हम मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हमारी मछली का साइज अगर उसका हम कहेंगे 4 से 6 इंच या 8 इंच का है, तो हम यहाँ पे ध्यान रखें कि मछली का हमारे वेट कितने ग्राम की है, वो कितने ग्राम की फीस,
1: वजन कितना
2: है, वजन कितना है उसका
1: जी।
2: अगर वो वजन में 100 ग्राम की है
1: जी,
2: तो वहाँ पे 1 फीस को हम वहाँ पे 2% के हिसाब से 2 ग्राम फूट देंगे।
1: अच्छा
2: जी। अगर हमारी फीस अगर वो 10 से 11 वजन साय की इंच की है
1: जी,
2: तो वहाँ पे हमारा जो फीड खाना है वो बढ़ जाएगा, वहाँ पे हम 5 से 7 ग्राम देते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है किसान भाइयों को कि हम जहाँ से भी लेके आ रहे हैं, मछली का बीज लेके आ रहे हैं या मछली का बड़ा बच्चा लेके आ रहे हैं जिसको हम फ्राई और फिंगरलिंग्स बोलते हैं, हम किस साइज़ की, हमें किस वजन की कहेंगे हम वहाँ से फिश लेके आ रहे हैं और कितनी मात्रा में लाए हैं
1: जी।
2: अगर आपका 1 हेक्टेयर का पोंड है, अगर हम फ्राई की बात करें तो हम कहेंगे 3 से 4 जहाँ पे होगा मिलियन हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर में इतनी हम फिश एक तालाब के अंदर डाल सकते हैं
1: जी।
2: वो डालने से क्या हुआ, यहाँ पे भी क्या है जो तापमान पे सीधा असर डालता है। देखिए आप एक तालाब है, अगर उसमें आप 100 फीस रख रहे हैं या उसमें 1000 रख रहे हैं या, ये सीधा असर उसके तापमान पे करेगा और जो ऑक्सीजन उसको चाहिए जी। अगर आप उस ताप आप उस तालाब के अंदर आपने हम कहेंगे कि 3 से 4 मिलियन हेक्टेयर में आप उसके अंदर मछलियां रखें, लेकिन साइज क्या हो उसका 3 सेंटीमीटर
1: 3 सेंटीमीटर
2: 3 सेंटीमीटर जिसको हम फ्राई बोलते हैं, बिल्कुल छोटी मछली, बीज से बड़ी मछली। अगर यहाँ पे हम बीज की बात करेंगे वो होगा 5000 नंबर में, तो 15000 नंबर हम क्या करेंगे अब एक तालाब के अंदर डालेंगे बीज की। अगर फ्राई की बात करेंगे तो वहाँ हमारा नंबर कम हो जाएगा
1: जी,
2: जैसे जैसे
1: जी। डॉक्टर साहब अब ये बताओ थोड़ा सा कि उनको भोजन गर्मियों में उनकी मात्रा बढ़ जाती है, भोजन की उनकी डिमांड मांग है वो बढ़ जाती है या कम होती है, और वो दें तो कैसे दें।
2: हाँ जी, खाने की बात करें, अगर हम भोजन की बात करते हैं मछलियों के भोजन की, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम 3 से 4 बार नॉर्मली खाना देते हैं
1: जी।
2: जैसे आपने एक तालाब में मछलियों को छोड़ा, आप 3 से 4 टाइम जब देना शुरू करोगे एक दिन के बाद 3 से 4 बार कोशिश कीजिए अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह सूर्य उदय से पहले
1: जी।
2: उसके बाद जैसे आपने 4 या 5 घंटे का गैप आप रखिए, उसका अंतराल रखिए
1: जी,
2: उसके अंतराल पे शाम को और रात में आप उसको क्या है भोजन दीजिए। लेकिन अगर आपने देखा कि गर्मियां बहुत हैं, तापमान पानी का बहुत बड़ा, तो आप खाने की मात्रा को कम कर दीजिए।
1: अच्छा,
2: पहले जैसे जैसे अगर तापमान बढ़ता है जो 4 बार आप भोजन दे दीजिए उसको 3 बार कर दीजिए,
1: कम करना पड़ेगा।
2: लेकिन आजकल का जो आप तापमान देख रहे हैं
1: जी,
2: उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपने क्या करना है उसको 2 ही टाइम दीजिए।
1: अच्छा, मतलब ज़्यादा तापमान हो तो भोजन देने का जो है वो कम कर
2: कम कर दीजिए।
1: अच्छा, अब डॉक्टर साहब बात करेंगे कि इस गर्मी की वजह से मछलियों में कोई बीमारी, कोई रोग या कोई इस तरह की समस्या ज़्यादा बढ़ती है।
2: जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि खाना कम कर दीजिए
1: जी।
2: अगर खाना कम करेंगे तो जो हमारी मछलियों में क्या है वो एक दूसरे के साथ खाने के लिए लड़ेंगी
1: जी।
2: हमें कोशिश करनी चाहिए जितना भी हमारा जो हमारा कहेंगे नेचुरल फूड है यानी कि जो प्राकृतिक हमें जो फूड मिला हुआ है
1: जी,
2: हमें वो देने की कोशिश करनी चाहिए। जो मैंने आपको बताया कि पहले जलीय पौधे हैं वो मछलियों के लिए बहुत अच्छा भोजन है, अगर मछलियां उस भोजन को लेती हैं तो वो उनकी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है
1: जी।
2: बीमारियों की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले अगर कुछ बीमारियां आती हैं, अगर वो खाने के लिए वहां पे लड़ाई करेंगी तो उनके जो गिल होती हैं, उनके पंख जिनको बोलते हैं, एक उनकी पूंछ की जहाँ है
1: जी,
2: वो आपस में टकराती हैं खाने के लिए हैं
1: जी,
2: तो वहाँ पे क्या है जैसे घाव हो जाता है ना, कुछ इस तरीके की कंडीशन हो जाती है, इस तरीके का आप देखोगे
1: जी।
2: अगर आप मछली को पानी से बाहर निकालते हैं, नेटिंग करते हैं, जाल बिछा के अगर चेक करते हैं तो आपको उसकी सतह पर, उसके स्किन के ऊपर रेडिशनेस दिखाई देगी, लालिमा जिसे हम कहेंगे वो दिखाई देगी आपको।
1: अच्छा,
2: आप उसको देखेंगे
1: तो उसका अगर इस तरह का दिखाई देता तो फिर उसका उपचार क्या
2: कर? हाँ जी, देखो इतने बड़े तालाब इतना बड़ा है
1: जी,
2: तो अगर आप जाल बिछाते हैं, जाल बिछाने के दौरान भी मछलियों को चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है
1: जी जी।
2: आप थोड़े थोड़े अंतराल के बाद जाल बिछाइए, एक बार में सारी मछलियां बाहर ना निकालें
1: जी,
2: और उनको एक सॉल्यूशन दिया जाता है हमारे यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का,
1: लाल दवाई जिसको बोलते
2: लाल दवाई जिसको बोलते हैं
1: जी,
2: उसमें हम यहाँ क्या एक मिंट का डिप ट्रीटमेंट देते हैं,
1: डुबोते हैं उसमें,
2: सिर्फ आपने उसके अंदर डुबोया और मछली को बाहर निकाल के दोबारा तालाब में छोड़ दिया
1: जी।
2: सबसे प्राथमिक जो उपचार है उसका सबसे पहले यही सबसे अच्छा उपचार है
1: जी।
2: इसके बाद दूसरी एक और दवाई भी है, कॉपर सल्फेट जिसको हम बोलते हैं
1: जी,
2: वो भी यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। अगर आपके पास लाल दवाई नहीं है, आप कॉपर सल्फेट, या फिर आप उसको क्या कीजिए, अगर खाना कम है तो वहाँ पे विटामिन सी की टैबलेट डाल दीजिए, सिंपल
1: विटामिन सी की गोली
2: गोलियाँ जेटा हैं वो डाल दीजिए।
1: अच्छा,
2: हाँ जी, उससे होगा क्या कि जो अगर बाहरी सतह पर उनको कोई लालिमा है, कोई किसी और तरीके की कोई आपको दिखाई दे रहा है कि उसकी आई, उसकी आँख के पास जो उसकी लेयर है वो कम झिली कम दिखाई दे रही है, या जहाँ से वो सांस लेती है गिल है वहाँ पे भी घाव हो जाते हैं, या लालिमा बन जाएगी, या वहाँ पे नीले नीले धब्बे पड़ जाएंगे, उसके जो स्केल कहेंगे वो बाहर निकल वो कम होने लग जाते हैं, टूट के झड़ने लग जाते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या है एक तरीके से ये डिप ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है
1: जी।
2: हाँ जी, इसके बाद बहुत सारी ऐसे बीमारियां हैं जो कहते हैं, जैसे अगर मैंने आपको पहले बताया कि जलीय पौधे ज्यादा हो जाएं, वो पानी से ऑक्सीजन ज्यादा लेगा
1: जी,
2: तो उसमें भी क्या होगा कि बैक्टीरिया जनरेट हो जाते हैं, सूक्ष्म जीवाणु हो जाते हैं
1: जी।
2: वो क्या करते हैं, अगर एक फिश का घाव है वो उस फिश के साथ जुड़ जाते हैं और उस पे ही बड़ा एक जैसे उसको अंदर तक
1: उसका बड़ा घाव सा बना
2: उसका बड़ा घाव बना देते
1: जी जी जी,
2: और उस दौरान फिश के लिए जो सर्वाइव करना या उसके लिए आगे करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी जो मछली है वो बहुत सेंसिटिव है
1: जी जी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया है कि गर्मियों में तालाबों की हमने देखभाल करनी है, सबसे पहले मछलियों का व्यवहार है वो हमने जांच करना है, अगर वो बाहर आके मुंह खोल के सांस ले रही हैं तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की मात्रा पूरी बना के रखें, तापमान ज़्यादा ना बढ़ने दें, किसी भी तरह से उसका तापमान है वो बना के रखें, उनके खाने के लिए हमने भोजन है उसमें थोड़ी सी कमी कर देनी है ताकि उनका आपस में एक जो लड़ाई है या कंपटीशन है या प्रतियोगिता है वो ना हो, और कोई बीमारी अगर दिखाई देती है तो लाल दवाई है उसका आप एक मिनट का उपचार कर सके हैं। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर सुनीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: तो भाइयों, जिस तरह आपने मछली और मछली तालाबों की देखभाल की बात करी है, इसमें आप ये देखो, जिस तरह जितना जितना तापमान बढ़ता जा, गर्मी बढ़ती जाएगी उतना है, तो देखो हर जीव को उसमें दिक्कत वही होगी। तो ये तो हमने जिस तरह डॉक्टर साहब ने सारी जो चीज़ बता दी, भाई किस किस तरह उसका तापमान का देखना है, पानी की उल्टा पलटी करनी है, भोजन किस प्रकार देना है, उन इतनी सेंसिटिव है कि भाई कोई किसी प्रकार के उनके वो ना हो, घायल ना हो जाए, तो ये सारी चीज़ें देख कर करने। देखो भाइयों, जो इस तरह पहले बात कर रहे थे कि बच्चा कोई भी काम हम करा है, उस काम के लिए हमने एक तो ये कि पूरा प्रशिक्षण दे दें, और उस यानी प्रशिक्षण में हमें क्या होगा कि पूरी जानकारी हासिल हो जाएगी, और जानकारी हासिल होने के बाद फिर हमें कोई किसी प्रकार के किसी व्यवसाय में धंधे में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन चीज़ों का हमें समय रहते और ठीक उसमें काम करते हुए उस मुकाबला कर सका हमें। तो चलो भाई, ये तो अब अपने बातचीत सुनी, ई वे बात है मनोरंजन की, और आपने एक रागनी सुनवा दिया गायक कलाकार रंगे प्रमोद कुमार और उनके साथी।

तो भैया ये तो आपने रागनी सुनी, गायक कलाकार थे प्रमोद कुमार और उनके साथी। और भैया ये बे जिस तरह देखो खेत अपने खाली हैं, उनमें खेत में हमने ये कराया जा सके है कि भाई अपना मिट्टी पानी की जांच करवा सके। देखो ये बहुत ज़रूरी है, आजकल देखा है कि भाई जो अपनी ज़मीन में पोषक तत्व की कमी है बहुत ज़्यादा हो गई और लगभग ये कह सके सारे के सारे पोषक तत्व उसमें कम हो गए। उसका सबसे बड़ा कारण तो जैसे भैया आप भी जानो हो कि भाई जो गोबर की खाद है वो खाद हमने डालनी बंद कर दी, जो कि सारा का सारा नुकसान ही सामने आने लग रहा है। जब भी हमारी फसलों की जांच करी जाए उसमें पोषक तत्व तो मिलते ही नहीं, और उसका ये कारण है कि जो अपने बड़े बुजुर्ग भी कह रहे कि भाई तो जहर का खाना है, यानी उसमें पोषक तत्व तो नहीं है तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या है। तो एक तो भाई यू ध्यान रखो अपना गोबर की खाद उसमें जो देसी खाद है गली छड़ी खाद है वो डाल। कई बार ये देखा गया, ध्यान ये करें कि वह चलो कोई नहीं गोबर की खाद की बात आओ गोबर उठा के सीधा खेत में डाल दें ना, वो नहीं है। या फिर उसका करें कि उसके सड़क के सारे उसमें डालते हैं और फिर उठा के उसमें ट्रैक्टर से या उससे खींच कर उसमें कर दें, उससे भाई ये क्या है गली छड़ी खाद नहीं, इससे तो दीमक होगी यानी नुकसान होगा फ़ायदे की।

0: तो यू इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है भाई। जब मान लिया खाद डालना है, देसी खाद डालना है, तो सच्ची गली सड़ी खाद है वो डालें खेत में, वो ही मनुष्य में फ़ायदा कर सके, बाकी फ़ायदा नहीं करेगा उसमें। उसमें तो दीमक होगी, यानी दूसरे उसको कीड़े बीमारियों को आमंत्रण देना है। ये ना करके ने अपना अच्छी तरह उसने गोबर ने गड़ा सड़ा कर ने कुरुड़ी बना कर उसमें उस गड्ढा खोद कर ने, उसके बाद ही जब वो अच्छा गड़ सड़ जाए फिर उसमें उसमें खेत में अपने डालेंगे, तो जो पोषक तत्व तो उनकी कमी पूरी हो जाएगी। और हाँ, इन रासायनिक सार कितने दिन कराएंगे इस चीज़ का अपने ध्यान रखेंगे। और भाई ध्यान ही टाइम इसका समय का भी रखना है, कृषि जगत कार्यक्रम का तो समय हुआ समाप्त। E22 कार्यक्रम ग्रामीण संसार, आकाशवाणी का यू रोहतक केंद्र है। E22 कार्यक्रम ग्रामीण संसार, भाइयों आज रविवार है और हर रविवार ने कोई ना कोई आपने नई जानकारी दिलवावा, या तो किसी बढ़िया कलाकार से या कोई महान हस्ती से, यानी कोई जाना पहचाना आदमी से आपकी भेंटवार्ता करवाऊँ। तो उसे क्रम में आज भेंटवार्ता एक कलाकार से मैं आपकी भेंट करवाएंगे लीला सैनी।
1: भेंट वार्ता एक कलाकार से। श्रोताओं, इस क्रम में आज एक विख्यात और प्रसिद्ध हरियाणा की संस्कृति से जुड़ी हुई एक कलाकार को हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आपका परिचय करवाते हैं, आप है मैडम लीला सैनी जी। लीला जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
1: सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपका प्रारंभिक जीवन कहाँ पर गुजरा?
2: मेरा प्रारंभिक जीवन जो है वो रोहतक में ही गुजरा, मेरा जन्म भी रोहतक का ही है
1: जी।
2: और मेरे परिवार में हम लोग 8 बहन भाई थे
1: जी।
2: हाँ, और हमारे परिवार में मेरे मदर और फादर को संगीत का बहुत शौक था।
1: अच्छा,
2: हाँ,
1: तो ये घुट्टी आपको बचपन से मिली हुई है?
2: मुझे जन्म से ही मिली है जी, ये, हाँ जी। उनको देखते देखते हम लोग बड़े हुए। होली के दिनों में, तीज के दिनों में, जब वो तीज के दिनों में झूले के पास गाते थे, होली के दिनों में खुड़िया खेलते थे रात को
1: जी।
2: तो मुझे जो कल्चर की शिक्षा मिली, समझो मुझे मेरे घर से, मेरे मदर फादर से मुझे मिली
1: जी।
2: और मेरी शिक्षा दीक्षा जो है वो रोहतक से ही है
1: जी,
2: बस वहाँ से मेरे संस्कारों में आ गई।
1: तो क्या आपका जो लोक संस्कृति है, लोक संगीत है, या इससे संबंधित कोई शिक्षा आपने प्राप्त की?
2: हाँ, मैंने लोक संगीत में तो देखो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे को जन्म से ही है
1: जी, जी।
2: परिवार में सीखा
1: जी।
2: और बाकी मैंने कथक में मैंने डिग्री प्राप्त की है, MA किया मैंने कथक में
1: जी।
2: और बाकी साथ साथ मैं करती रही।
1: तो ये रुझान आपको किस उम्र से लगा, किस कक्षा में थी तब ये आपको लगा कि आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए?
2: सर, मुझे वैसे देखूं अगर मैं अपने बचपन में जाऊं और अपने आप को मैं याद करूं तो मुझे बचपन से शौक था। हम बहनों को सबको संगीत का बहुत शौक था, नाचने का बहुत शौक था। वो अलग बात है कि इस तरह की शिक्षा दीक्षा नहीं दी जाती थी
1: जी,
2: क्योंकि लड़कियों के लिए तो एक टाइम था कि नाचने के लिए बहुत बुरा माना जाता
1: जी,
2: था। लेकिन मैं और मेरी जो छोटी बहन थी, हम दोनों राधा कृष्ण बनकर डांस करते थे। खुद ही हम अपने मुकुट बनाते थे, खुद ही अपने वो ढोल बाजे चिमटे विमटे सब खुद ही बनाते थे हम
1: जी।
2: और इतने सुंदर बनाते थे बहुत। और जहाँ हम रहते थे वहाँ पे मकान भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जब कोई घर में कीर्तन करता था, कुछ करता था, तो हम दोनों बहनें जाते थे
1: जी।
2: फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, कॉलेज में भी रुझान रहा। कॉलेज में प्रभु की कृपा रही, टीचर्स की बहुत मेहरबानी रही
1: जी,
2: उन्होंने मेरे कला को सराहा क्योंकि उनका आशीर्वाद था, बाकी मैं तो क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ
1: जी।
2: और
1: तो कॉलेज के दिनों में आपकी क्या कुछ गतिविधियाँ रहती थी और कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म किया?
2: कॉलेज के दिनों में यूथ फेस्टिवल्स होते थे, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया
1: जी।
2: और हर बार कुछ ना कुछ इनाम लेके ही आती थी
1: जी।
2: और वेस्ट कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई है
1: जी।
2: मैं फिर उसके बाद मैं जॉब में चली गई थी।
1: अच्छा, जॉब आपकी क्या लगी, कहाँ पर लगी?
2: मैं एज ए आर्टिस्ट लगी थी सांस्कृतिक कार्य विभाग में, SS बोर्ड के थ्रू।
1: अच्छा,
2: हाँ, पहले क्या था कि एम्प्लॉयमेंट के थ्रू या SS बोर्ड के थ्रू जॉब लगती थी
1: जी।
2: तो SS बोर्ड से मेरी सिलेक्शन हुई थी एज ए कलाकार के नाते
1: जी।
2: फिर उसमें मेरे सीनियर्स जो थे वो मुझे बहुत अच्छे मिले, मुझे मेरे टीचर्स भी बहुत अच्छे मिले। धीरे धीरे मैं पूरा इंडिया घूमी हूँ
1: एज ए। किसी का नाम लेना चाहेंगे?
2: हाँ, मिस्टर कमल तिवारी हैं जो मेरे गॉडफादर रहे हैं
1: जी।
2: हाँ, उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला क्योंकि वो मेरे एडिशनल डायरेक्टर होते थे
1: जी।
2: और उनके साथ रह के मैंने एशिया डे 22 किया और आपका देश विदेश 10-12 कंट्रीज में बाहर जाके आई। थ्रू आउट ऑफ इंडिया मैं खूब घूमी हूँ।
1: तो वहाँ के संस्मरण क्या रहे आपको, कैसा?
2: मतलब आज भी जब मैं याद करती तो मुझे लगता है वो समय आएगा क्या दोबारा
1: जी।
2: मतलब बहुत अच्छा लगता है। हम जब विदेश गए ना सर, हम अपने कॉस्ट्यूम में गए थे, यहाँ से हम अपने कोई सूट सलवार नहीं लेके गए थे, वहाँ हम कॉस्ट्यूम में ही रहे थे महीना डेढ़ महीना जो भी रहे थे। और हवाई जहाज में हम अपने कॉस्ट्यूम में ही बैठे थे, सब देख रहे थे बड़ा अच्छा लग रहा था। और अभी भी कभी कभार जो है मेरे सर से बात होती रहती है, वो भी बहुत गदगद होते हैं उन दिनों को याद करके
1: जी।
2: हाँ, सबसे पहले बहुत बड़ा फंक्शन मैंने जो है एशिया 82 ही किया था, उस समय मेरी 82 में ही जॉब लगी थी
1: जी। एशियाई खेल
2: हुए थे जो, हाँ जी हाँ जी, उसमें हाँ उसमें 500 बच्चों को डांस करवाया था।
1: अच्छा।
2: पूरे हरियाणा से हमने बच्चों को तराश के ढूंढ के निकाला, फिर राई में उनकी वर्कशॉप की, राई के बाद फिर उनकी दिल्ली में हुई।
1: अच्छा।
2: हाँ, तो इस तरह से लगे रहे, परमात्मा की कृपा रही
1: जी,
2: करते करते शौक पैदा होता रहा, करते रहे
1: जी। तो विदेशों का आपका किस प्रकार का अनुभव रहा?
2: विदेशों में तो मैं आपको बताऊं कि जब हम गए थे, हिमाचल की टीम गई, हरियाणा की टीम गई और पंजाब की
1: जी,
2: मतलब जो लोक संस्कृति होती है ना, वो मेरे हिसाब से जो मुझे अनुभव होता है कि लोक संस्कृति किसी भी देश की हो, किसी भी राज्य की हो, वो मिट्टी से जुड़ी होती है, तो वो अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली हम लोग होते हैं कि हम उससे जुड़े होते हैं
1: जी।
2: इतना पसंद करते थे कल्चर को बहुत ज़्यादा। और हम लोग 6 लड़कियाँ थी, टोटल 12 मेंबर गए थे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम पे हम 15 मेंबर गए थे
1: जी।
2: लगातार लगातार डांस करने होते थे, फटाफट फटाफट आते थे, कॉस्ट्यूम चेंज किया फिर भाग गए, कॉस्ट्यूम चेंज किया फिर भाग गए, बहुत ही अच्छा लगा
1: जी,
2: बहुत अच्छी यादें।
1: तो इसमें कोई आपने नवाचार किया हो, कोई नया आपने करने की कोशिश की हो जो हमारे पारंपरिक नृत्य हैं उसमें?
2: देखो डांसेस में तो हमारे जो लोक नृत्य है उसमें मैंने घूमर, खोड़िया, लूर, जलवा पूजन और आपका मतलब तरह तरह के डांसेस जो हमारे हुए हैं उनमें मैंने सब में बहुत काम किया है
1: जी।
2: हाँ,
1: तो कुछ नयापन उसमें या कुछ और ऐड किया हो?
2: नयापन देखो क्या, कॉस्ट्यूम में सुधार किया।
1: अच्छा।
2: पहले हमारे होते थे, हालांकि मुझे तो पुराने वाले दामन बहुत प्रिय है
1: जी,
2: छींट के दामन होते थे
1: जी,
2: प्लेन तो कम ही होते थे लेकिन छींट के ज्यादा होते थे, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर गोटे का काम होने लग गया
1: जी,
2: और लामन मगजी निकलने लग गई, और फिर वाइट कुर्ती होती थी, अब आपको मैचिंग की कुर्तियां मिलेंगी उसके साथ
1: जी,
2: और दुपट्टे तो पहले भी अच्छे होते थे चुंदड़ी
1: जी,
2: अब उसमें बहुत काम करते हैं सितारे वितारे गोटे, अच्छा लगता है।
1: अच्छा, जो आपने नृत्य की अलग अलग विधाएं बताई हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताइए।
2: जैसे घूमर डांस है हमारा
1: जी,
2: घूमर डांस जो है हमारा, क्योंकि राजस्थान का एरिया और नारनौल का एरिया साथ लगता है
1: जी,
2: उसका हमारे ऊपर बहुत असर
1: है
2: ना, क्योंकि राजस्थान का भी घूमर बहुत फेमस है
1: जी,
2: और हमारा भी घूमर, घूमर का मतलब कि हर तीज त्योहार के मौके पे महिलाओं द्वारा किया जाने वाला डांस जिसमें घूम ज्यादा होती है, इसलिए उसको घूमर डांस कह देते हैं
1: जी, जी।
2: जैसे राजस्थान में भी घूम ज्यादा होती है, हमारे हरियाणा में भी घूमर डांस में बहुत घूम होती है
1: जी।
2: खोड़िया, खोड़िया जैसे आपको पता है कि ब्याह शादियों में खोड़िया खेला जाता है
1: जी,
2: और जब बारात चली जाती थी पहले औरतें नहीं जाती थी साथ में, तो पीछे से औरतें जो स्वांग भरती थी ना
1: जी,
2: वो मतलब शायद मैं अभी यहाँ आपको भी नहीं बोल पाती उसके बारे में
1: जी,
2: मतलब खूब इंजॉय करती हैं औरतें उस समय
1: जी,
2: और वो इसलिए करती थी क्योंकि बारात चली गई, घर की रखवाली भी करनी होती थी, मनोरंजन भी हो जाता था
1: जी,
2: और सारी औरतें जुड़ जाती थी, अड़ोस पड़ोस की हो, रिश्तेदारी हो, क्योंकि रिश्तेदारी में भी पहले तो 15-15, 20-20 दिन पहले लड़कियां घर आ जाती थी
1: जी,
2: लेकिन अब उस तरह का टाइम नहीं रहा
1: जी,
2: क्योंकि सबकी व्यस्तताएं हो गई हैं, जॉब हो गई हैं, तो इसलिए नहीं जा पाते। मतलब मेरा तो मानना ये कि आज के टाइम में शादी विवाह जो है ना, एक ये मानो कि आधे घंटे का काम है, क्या होता है जाना, आपने शगन देना है और अब वापस आ जाना है, खाना वाना खा के अब वापस आ जाते हो। पहले तो घर में बड़ा कुछ होता था, चिट्ठी लिखने से लेके और विदाई तक
1: बहुत काम होता था।
2: मैंने मेरे डिपार्टमेंट में रह के मैंने एक बैले करवाया था शादी के ऊपर ही।
1: अच्छा।
2: वो मैंने जहाँ भी किया ना वो सबने बहुत सराहा। एक मैंने जन्म पे किया, एक मैंने तीज पे किया, एक मैंने शादी पे किया, सावन का भी किया, हाँ तीज पे।
1: अच्छा।
2: तो अच्छा लगता है।
1: अच्छा, एक और आपने बताया था लूर।
2: लूर, हाँ जी।
1: वो क्या होता है, किस
2: लूर जो है हमारे, जब लड़की पैदा होती है
1: जी
2: उससे संबंधित है, और ये ज़्यादातर ये हमारे नारनौल एरिया में ज़्यादा इसको प्रचलित है, ये अब तो खैर हरियाणा में पूरे में खेला जाता है। पहले लड़के को ज़्यादा अच्छा मानते थे, लड़का पैदा होता था कि वंश वेल बधेगी और ये और वो, लड़कियों को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था इसलिए उसको छुपा देते थे
1: जी,
2: तो किसी को भनक नहीं लगती थी कि लड़की पैदा हुई है, तो उसमें फिर दो टोलियों में लेडीज लड़कियां होती हैं आपस में
1: जी,
2: फिर वो एक दूसरे सवाल जवाब करती हैं
1: जी,
2: जैसे शुरू में वो बोलती हैं आए आए मारे करो सगाई,
1: थोड़ा सा गुनगुना के
2: आए आए मारे करो ए सगाई, दूसरी टोली बोलेगी कौन कहे से मारे छोरी जाई, फिर वो कहती है दाई कैसे थारे छोरी जाई, झूठी झूठी वो तो दाई ताई। फिर नेक्स्ट बोलेंगे, देखी देखी है हमने पालने में झूलती, होगी होगी है वह पड़ोसियाँ की छोरी। इस तरह से सवाल जवाब होते थे। फिर लास्ट में, उड़ी जाइयो रे कबूतर तन्ने मारे बिजली, उड़ी जाइयो रे। क्योंकि लड़कियां तो पराई मानी गई हैं और
1: जी,
2: होती भी है
1: जी,
2: आप जो मर्जी कर लो लड़कियां, तो आपको विदा करनी पड़ती है
1: जी,
2: है ना
1: जी।
2: बाकी लड़कियां रौनक होती हैं जी घर की।
1: बिल्कुल,
2: मैं कहती हूँ जिस घर में लड़की नहीं है ना, समझो वहाँ पे कोई रौनक नहीं है।
1: जी
2: हाँ,
1: और इसीलिए शायद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है ये।
2: हाँ,
1: भी
2: नारा है,
1: है
2: और इस पे काम भी बहुत अच्छा हो रहा है
1: जी।
2: अभी मैं आपको एक अपने एकेडमी की, क्योंकि आजकल मैं अपनी एक एकेडमी चलाती हूँ लीला कला मंच के नाम से
1: जी,
2: वहाँ पे बहुत से बच्चे लेडीज सभी, ओनली फॉर लेडीज है
1: जी,
2: फीमेल,
1: जी,
2: तो वहाँ आते हैं। अभी एक डॉक्टर आती है मेरे पास, डॉक्टर शेफाली,
1: जी,
2: उनके पास दो बेटे हैं।
1: जी,
2: वो कहती है कि भाई लड़की नहीं है घर में, लड़की बहुत ज़रूरी है।
1: जी,
2: तो लड़की का होना तो बहुत अच्छा,
1: बिल्कुल
2: रौनक रहती है जी घर में लड़की से।
1: और एक सुशिक्षित बेटी हो तो वो दो परिवारों को सुधारती है।
2: बिल्कुल सुधारती है जी, सच में
1: जी। अच्छा, उसके बाद में आप विभाग में कार्य करती रही, तो वहाँ आपका किस प्रकार का कार्य होता था?
2: वहाँ मेरा, हम लोग मान के चलो कि साल में 4-5 बार तो हम इंटरस्टेट जाते थे, जिसमें हमारे
1: दूसरे
2: 30-35
1: जाते थे।
2: हाँ जी,
1: जी,
2: इंटर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते थे पहले,
1: ठीक है,
2: जो आजकल आई थिंक मेरे हिसाब कम हो गए होंगे
1: जी।
2: तो उसमें हमारा 30-35 लोगों का ग्रुप चलता था, जिसमें 10-15 लड़कियां होती थी, 10-15 जेंट्स होते थे, कुछ ऑफिसर्स होते थे।
1: जी,
2: और जब वो चलता था रेला चल के, गाड़ियों में बुकिंग होती थी, बड़ा आनंद आता था। और दूसरे स्टेट में जाके कार्यक्रम करके, उनकी संस्कृति के बारे में पता करके, और अपनी संस्कृति आप वहाँ जाके दिखाते हो लोगों को, और लोग बहुत पसंद करते, क्योंकि हमारी जो हरियाणा की संस्कृति है ना, बहुत समृद्ध है
1: जी।
2: मतलब मेरी तो धड़कन है
1: जी,
2: मेरी सांस है, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो
1: जी।
2: तो हमारी ड्रेस बहुत पसंद आती है लोगों को, हमारा संगीत बहुत पसंद आता है लोगों को, और हमारे यहाँ गाने वाले भी बहुत अच्छे हैं
1: जी। अच्छा, एक हमारी जो बोली, खड़ी बोली इसको मानते हैं, तो उसके बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है?
2: वो तो एंजॉय करते हैं जी।
1: अच्छा,
2: हाँ बिल्कुल करते हैं
1: जी।
2: ये तो हमारे अपने एरिया में कह देते हैं कि लठमार लठमार, लेकिन उसमें ही ह्यूमर है
1: जी,
2: बहुत आनंद आता है उसके अंदर
1: जी।
2: मतलब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आज का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है, अदरवाइज तो इसमें बहुत रस होता था, एक दूसरे से बात करते थे तो उसमें बुरा नहीं मानता था कोई, आजकल जल्दी बुरा मान जाते हैं
1: जी। अच्छा, इसमें ये देखने में आ रहा है कि कुछ फिल्मी धुने हैं उनका प्रचलन हो गया है, और कुछ अपने हिसाब से काट छांट करके प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
2: देखो, आप कुछ भी उसमें नयापन डालें
1: जी,
2: लेकिन आपकी संस्कृति को बिगड़ना नहीं चाहिए, उसका स्वरूप नहीं बिगड़ना चाहिए,
1: जो आधारभूत है, जो बेसिक है,
2: हाँ वो आपको बचा के रखना पड़ेगा, तभी आपकी लोक संस्कृति जो है जिंदा रहेगी
1: जी।
2: आप उसमें जैसे चेंज करते हो, ड्रेसेज में आप चेंज कर लो, चुंदड़ी में चेंज कर लो, आपके ऑर्नामेंट्स हैं
1: जी,
2: उसमें बदलाव ले आओ, कोई बात नहीं है
1: जी,
2: लेकिन उसको बिगाड़ो मत, मेरा ये मानना है
1: जी,
2: मुझे अच्छा भी नहीं लगता
1: जी। तो अभी आपकी क्या एक्टिविटी क्या रहती है, अभी क्या आप उसी प्रकार से अपने नृत्य में और उसमें गतिविधियों में भाग लेती हैं?
2: हाँ सर, मैं बिल्कुल लेती हूँ, जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं नाचती भी हूँ
1: जी,
2: और मैं अपनी एकेडमी चलाती हूँ जिसमें बच्चों को मैं प्रोफेशनली जो है उनको डिग्री करवाती हूँ प्रयाग से।
1: अच्छा,
2: कथक की।
1: अच्छा,
2: साथ साथ फोक सिखाती हूँ
1: जी,
2: और फोक तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हूँ बच्चों को, उनसे कोई चार्जेज नहीं लेती हूँ, कोई भी आए
1: जी,
2: कोई भी आए, तो ये मेरा ध्येय है।
1: बहुत बढ़िया। तो आपको कोई विशेष पारितोषिक या कोई विशेष कोई पुरस्कार मिला हो कोई?
2: हाँ, समय समय पे मिलते रहे
1: जी।
2: जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से था लोक कलाविद सम्मान था
1: जी,
2: फिर सीएम साहब ने दिया था तीज पे सम्मान दिया था, ऐसे बहुत सारे हैं, लोक संस्कृति रक्षक अवार्ड है
1: जी। अच्छा, अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उसमें क्या रुझान आप देख रही हैं? क्योंकि जो दूसरे नृत्य परफॉर्मेंस हैं, जैसे अलग अलग स्टेट की कोई ना कोई एक खासियत होती है, कि गुजरात की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, उनकी सबकी परंपराएं हैं, राजस्थान की कालबेलिया नृत्य है और घूमर और इस तरह की होती हैं, तो हमारे जो नए बच्चे हैं उनका किस प्रकार से रुझान है, कितना रुझान आप मानती हैं?
2: देखो जी, मैं 2016 में रिटायर हुई थी
1: जी,
2: और मैंने 17 के लास्ट में, मान के चलो 2017 के लास्ट में मैंने अपनी एकेडमी शुरू की थी
1: जी।
2: शुरू में तो मुझे लगा यहाँ आके रोहतक में, क्योंकि मैं 35 साल चंडीगढ़ रही,
1: जी
2: कि मेरा टेस्ट तो मुझे यहाँ नहीं मिलेगा
1: जी,
2: क्योंकि डांस कुछ और किस्म के होते थे जो हम परिवार के साथ तो बैठ के देख नहीं सकते ना। मैं नहीं लूंगी, सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का
1: जी।
2: तो लेकिन जब मैंने प्रयास किया, पहली वर्कशॉप मैंने लगाई 2018 में, और उसके बाद आज तक मैंने मुड़ के पीछे देखने का मुझे मौका नहीं मिला
1: जी।
2: बच्चे जुड़े मेरे साथ और आज भी मेरी एकेडमी में बहुत बच्चे आते हैं। आपको उनके अंदर रुझान पैदा करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है
1: जी।
2: आपका इंटरेस्ट होगा तो आप किसी को काम करवा सकते हैं, वैसे नहीं करवा सकते। देखो मैं 10 बार तो दिल्ली रिपब्लिक डे में गई हूँ।
1: अच्छा।
2: हाँ, 4 साल तो मैं रोहतक के बच्चों को लेके गई हूँ अभी लगातार
1: जी।
2: हाँ, तो बच्चों में इंटरेस्ट तो है।
1: अच्छा, एक बात और है, ये देखने में आता है कि बच्चा अगर कोई हरियाणवी में बोलता है स्कूल में खासतौर से, तो उसको डांटा जाता है कि नहीं आप ये क्यों बोल रहे हो। उस कंडीशन में बच्चों को हरियाणवी सिखाना, बुलवाना, गवाना कैसा लगता है आपको?
2: नहीं देखो, आम हर प्रदेश की अपनी अपनी संस्कृति होती है
1: जी।
2: और कहाँ तो हमारे ड्रेस होती थी, परिधान होता था हमारा, दामन, कुर्ता, चुंदड़ी, धोती, अब वो तो कोई पहनता नहीं है, अब वो स्टेज तक सीमित रह गया, चलो वो मान लिया, लेकिन अपनी बोली जरूर बोलनी चाहिए और जिसको बोलनी होती है वो बोलता है और लोग उसको इंजॉय करते, बच्चे उसको इंजॉय करते हैं
1: जी।
2: हाँ,
1: तो ये कोशिश करनी चाहिए सभी ने कि जिसको अपनी,
2: बिल्कुल करनी चाहिए जी। और मैं तो एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि स्कूल कॉलेजेस में सब्जेक्ट होना चाहिए,
1: विषय हो, कोई
2: विषय हो
1: जी,
2: डांस का हो, संगीत का तो कर है
1: जी,
2: लेकिन हमारी लोक संस्कृति के प्रति, थिएटर का हो, डांस का हो, म्यूजिक का हो, जिसमें हमारी संस्कृति के बारे में सिखाया जाए बच्चों को। बाकी तो ठीक है, कंपटीशन होते कुछ होते उसके लेवल का सिखाते रहो
1: जी,
2: लेकिन उनको ज्ञान होना चाहिए कि हमारे लोकगीत क्या है, हमारी रागनी क्या है, तो ये बच्चों को ज्ञान होना चाहिए और आजकल बच्चों को नहीं पता होता है
1: जी। बल्कि सोशल मीडिया से देख देख के वो उल्टी सीधी चीज़ें सीख सकते हैं, जब तक उनको सही ज्ञान नहीं दिया जाएगा, सही बताया जाएगा, तो वो उसी को सत्य मानते रहेंगे जो वो देख रहे हैं।
2: नहीं देखो, आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं, हमारे सामने भी आ जाती रील्स वगैरह
1: जी,
2: वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब अभी तो मैं देखती हूँ कि क्योंकि मैं हरियाणा के बारे में जानती हूँ, लड़कियों को छोड़ दो आप, आजकल की बहुएं भी
1: जी
2: रील्स में कैसा कैसे डांस करती हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्या उनके परिवार वाले नहीं देखते क्या
1: जी?
2: अच्छा काम करो ना
1: जी,
2: अच्छा लगता है, मेरा ये मानना है
1: जी। तो आप हमारे जो श्रोता हैं, और ख़ास तौर से ग्रामीण अंचल की हम बात करें, तो लड़कियों पर अभी भी कुछ ना कुछ बंदिश रहता है, उनको नृत्य या गायन वगैरह के बारे में कई जगह पर रोक है,
2: कुछ थोड़ी बहुत रोक है, लेकिन अभी इतना नहीं है, क्योंकि मैंने एकेडमी चलाती हूँ, उसमें पेरेंट्स बहुत पेन लेते हैं, उनको लेके आते हैं, छोड़ के जाते हैं, और कंटिन्यूसली मेरे पास चल रहे हैं 18 से बच्चे
1: जी।
2: हाँ, अभी उनके एग्जाम होने वाले हैं, तो उनको शौक तो है, और मैं खाली उनको कथक नहीं सिखाती हूँ, जो कथक के लिए आते हैं उनको मैं फोक भी सिखाती हूँ
1: जी,
2: उनकी परफॉर्मेंस भी करवाती हूँ, उनको प्लेटफॉर्म दिलवाने की कोशिश करती हूँ, और टाइम टू टाइम साल में 2-3 मैं वर्कशॉप भी करती हूँ, फंक्शंस भी करती हूँ अपने लेवल पे ही
1: जी,
2: कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेती कभी भी, अपने लेवल पे करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है
1: जी। तो आपको पसंदीदा कोई गीत जो आप सुनाना चाहें?
2: अच्छा, गीत भी सुनेंगे क्या
1: जी?
2: गीत तो बहुत हैं
1: जी, वो अभी जो बता रहे थे उड़ जाइए रे कबूतर तने,
2: हाँ, वो सुना देती हूँ
1: जी।
2: उड़ी जाइयो रे कबूतर तने मारे बिजली, उड़ी जाइयो रे, उड़ जाइयो रे

0: मुंडा ए सजंती चुंदड़ लियो गजबी उड़ी जाइयो रे। चुंडा ए सजंती चुंदड़ लियो गजबी उड़ी जाइयो रे। उड़ जाइयो रे कबूतर तन्ने मारे बिजली उड़ी जाइयो रे। इस तरह का गाना है
1: जी
0: जिसमें वो अलग अलग अपनी डिमांड करती है कि मेरे कंधे पे बैठी हो, मेरे ढूंगे पे बैठी हो, मेरे
1: जी
0: पंजे पे बैठी हो,
1: जी
0: फिर उससे रिलेटेड वो वस्तुएं अपनी मंगवाती रहती है।
1: जी कुछ समय पहले हमने ग्रामीण अंचल में जाकर वहाँ महिलाओं के गीत थे वो रिकॉर्ड किए थे और वो हमने प्रिजर्व किए हैं। तो उस समय देखने में आता था कि 40 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं थीं उनको हमारे ग्रामीण अंचल में जो गीत गाए जाते हैं, संस्कार गीत हम जिनको कहते हैं, वही आते हैं। उससे छोटी उम्र की जो बेटियां थी, बहनें थी, उनको ये नहीं आते
0: नहीं
1: हैं।
0: आते, आप बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हैं, क्योंकि पुरानी जो औरतें थी, मुझे अपने जीवन का याद है,
1: जी
0: जैसे होली पूजने जाते थे
1: जी
0: हम घर से चलते थे, और मेरी जो माँ थी वो अपना नया परिधान निकालती थी स्पेशल
1: जी
0: होली दिवाली पे, वो
1: जी
0: अपनी पीलिया
1: जी
0: चुंदड़ी
1: जी
0: और वो लहंगा जो भी होता था वो पहन के चलते थे। हम सारे गीत गाते जाते थे,
1: जी
0: मोहल्ले की औरतें भी होती थी, हम होते थे, हम तो 6 बहनें थी,
1: जी
0: और वहाँ तक गीत गाते जाते थे, गीत गाते वापस आते थे।
1: जी
0: आजकल एक ट्रेंड क्यों चेंज हो गया ये, पहले तो क्या था, घरों में गीत होते थे शादी में, तो नीचे दरी पल्ली कुछ भी बिछा देते थे, उस पर बैठ के सारे गाते थे।
1: जी
0: आजकल बैठ के कोई राजी नहीं है
1: जी
0: और गा के राजी नहीं, शर्म आती है। अब
1: जी
0: क्या है कि जब भी किसी के घर में ब्याह शादी होती है
1: जी
0: तो वो किसी गाने वाले को बुला लेंगे या अपने ऑडियो लगा लेंगे,
1: जी
0: उसमें वो रस नहीं होता, जो आप इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें रस ज़्यादा आता है।
1: जी तो इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएं कि बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए, महिलाओं को आकर्षित किया जाए?
0: बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि स्कूल कॉलेज में जैसे सिखाया जाए,
1: जी
0: उनको पता होना चाहिए हमारे जन्म पे क्या होता है,
1: जी
0: हमारी ब्याह शादी में क्या होता है, हमारा तीज क्या होती है, हमारी होली दिवाली क्या होती है, गोवर्धन पूजा क्या होती है, भैया दूज क्या होता है, हर चीज़ पे है।
1: जी
0: हमारे तो संस्कारों में, खैर आपको तो सारा पता है, जन्म से लेके मृत्यु तक
1: हर एक अवसर पे गीत
0: हर
1: है।
0: एक अवसर पर गीत है और रंग है।
1: जी
0: मतलब मुझे अभी तक याद है, मेरे ताऊ जी की डेथ हुई थी तो मैं गई, मैं छोटी सी थी, बहुत छोटी सी थी,
1: जी
0: और मेरी सबसे बड़ी सिस्टर के ससुराल से बहुत सारी औरतें आई थी,
1: जी
0: वो खेड़ा लेके आई थी,
1: जी
0: है ना,
1: जी
0: मतलब वो मेरे दिमाग में आज तक है, और मेरा बड़ा मन करता कि मैं वो खेड़े वाला काम करूँ, मैं दिखाऊँ।
1: जी
0: मैं
1: जी
0: बहुत सारे, जब कोई बुजुर्ग मर जाते हैं तो मैं जाती हूँ,
1: जी
0: लेकिन अब क्या डीजे बजते हैं,
1: जी
0: वो रंग नहीं रहा, वो
1: जी
0: होना चाहिए,
1: जी
0: वो तभी आएगा जब आप उनको सिखाएंगे, उसके अंदर ढालेंगे, तराशेंगे, उनके अंदर टेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, मजा देना पड़ेगा उनको,
1: जी
0: तब वो करेंगे।
1: जी तो आगे की आपकी और क्या कुछ योजनाएं हैं? जैसे आपने बताया कि आप बच्चों को सिखाने की अभी प्रयासरत हैं, चल रहा है आपका कार्य, और क्या कुछ संभावनाएं आपकी?
0: संभावनाएं, जैसे मैं लोक संस्कृति को अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ बचाने की, तो मैं उसके लिए रील्स मतलब वीडियोस बनाती हूँ, फोक
1: जी
0: बनाती हूँ, उसमें मैं दूसरा मसाला नहीं डालती हूँ,
1: जी
0: बिल्कुल ट्रेडिशनल डालती हूँ,
1: जी
0: और लोग पसंद भी करते हैं। मुझे उस तरह का तो है नहीं कि मेरे फॉलोअर्स बहुत सारे बढ़ जाएं,
1: जी
0: इनकम का मुझे कुछ नहीं है, मुझे काम करना है,
1: जी
0: जो लोगों ने मेरे काम को पसंद किया वो आज भी पसंद कर रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है,
1: जी
0: इसको मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ।
1: जी
0: हाँ, और
1: बहुत
0: मैं चाहती हूँ कि परमात्मा आखिरी सांस तक मुझसे काम कराए।
1: जी नहीं, आप जिसके मन में जुनून होता है, जोश होता है, कुछ करने का जज्बा होता है, तो भगवान भी उनको साथ देते हैं और
0: हाँ बिल्कुल, साथ
1: शक्ति
0: देते हैं,
1: देते
0: हाँ
1: हैं।
0: बिल्कुल देते हैं सर।
1: जी तो कोई और विशेष बात आपके जीवन की, कोई और विशेष पहलू आप कोई बताना चाहें?
0: मैं तो इसी संस्कृति में रची बसी हूँ,
1: जी
0: यही है मेरे चारों तरफ,
1: जी
0: मेरे दिलो दिमाग में, मेरे मन में, मेरे सांसों में, यही है।
1: जी तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरह से आपने बताया कि प्रदेश की जो संस्कृति है, संस्कार हैं, और गीत संगीत का खास तौर से आपने जिक्र किया है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और हमारे युवा हैं इस तरफ आए, वो इसको सीखें और इसको अपनाएं, ताकि एक विलुप्त तो होती हुई हमारी जो संस्कृति है, कला है, उसको बचाया जा सके, उसका संवर्धन किया जा सके और उसको हम आगे अपनी आने वाली पीढ़ी को दे सकें। तो इस बातचीत में भाग लेने के लिए लीला सैनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: भाइया ने भेंट वार्ता सुनी लीला सैनी से, और भाइयो ईव थोड़ा समय रह रहा है, और क्यों ना आपने एक हरियाणवी फिल्म का गाना सुनवा दिया। फिल्म रहेगी छन्नो और गायक कलाकार है दिलराज कौर और उनकी सखियाँ।

गाना सुने, गायक कलाकार थी दिलराज कौर, उनकी सखिया। और भाइयों ईब घड़ी कहने देख लो, कार्यक्रम का समय हो रहा समाप्त। अशोक भाई ने जज दो, सारे बाण भाइया ने राम राम।

अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम ग्रामीण संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है फिल्म सन्यासी के इस गीत के साथ। आवाजें हैं लता मंगेशकर मुकेश कुमार की, गीत लिखा है विश्वेश्वर शर्मा ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है गदर टू। आवाजें हैं विशाल मिश्रा, नीति मोहन और मिथुन की। गीत लिखा है शहीद कादरी ने और संगीत दिया है मिथुन ने।

बी पराग और शिल्पा राय के स्वर में आइए सुनते हैं फाइटर फिल्म से ये गीत। गीत लिखा है कुमार ने, संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

श्रोताओ, आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कुर्बानी से। आवाज़ मनहर की है, गीत लिखा है फारूक कैसर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

मंगेशकर के स्वर में आइए सुनते हैं आपकी कसम फिल्म से ये गीत। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

आइए सुनते हैं विजयपथ फिल्म से ये गीत। आवाज़ साधना सरगम की है, गीतकार हैं ज़मीर काज़मी और संगीतकार हैं अनु मलिक।

आशा भोसले के स्वर में आइए सुनते हैं जानी दुश्मन फिल्म से ये गीत। वर्मा मलिक ने गीत को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन तैयार की है।

श्रोताओ, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति और इस गीत को लिया है फिल्म आंधी से। आवाजें हैं लता मंगेशकर किशोर कुमार की। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने।

श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे कलाकार रहेंगे नीरज गांधी। आप सुनेंगे इनकी गाई हुई गजलें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारे कलाकार थे नीरज गांधी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, रात्रि 9 बजे अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 149,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए

यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility.

एक फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुने थे मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से कुछ गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। गायक कलाकार रहेंगे जगबीर सिंह सांगी और किस्सा रहेगा नल दमयंती का।

लते में के चोटी चमके नाग फिर जनु घास में नहीं किसी को दिख्या न लगया दमयंती के पास में 101 बन

चंद्रमा शर्मा जा थी दमयंती ऐसी सुंदर अग्नियम वरण

ऐसा संदेशा मैं बुझू ना मैं बताइए, अग्नि यम वरण।

मेरा पति सुनिया मने और पति ना चाहिए, अरे छोड़ देवता।

बल में मने बता दे दमयंती तू के रही सोचे अकल में के रही सोचे अकल में मैनू सोचू सू नल रजा मन कद ले जा ब्याह करके आ गया तै मने।

यावण गीते स्वंबर के में मर जाएंगी विष खा के देवता धाम स्वर्ग का सुख दे देख जरा।

मने आपका इब के करूं यतन में के जतने बताऊं करे जो कुछ।

बात बूझना चाहू सू नर नंद ये राम किसन में गुरु मैरम जी।

अभी आपने सुना कार्यक्रम लोक संगीत कलाकार थे जगबीर सिंह सांगी, आपने सुना किस्सा नल दमयंती। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य उस समय के बंबई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितारवादक पद्मभूषण उस्ताद अब्दुल हलीम

0: जाफर खां से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांतो दे रॉय।
1: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य। बोर्न इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली of accomplished musicians where his grandfather, the renowned sitarya, Sri Lal Mohan Bhattacharya is said to have laid the foundation of this rich legacy and Pandit Harishankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father, Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Murali Das Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Harishankar Bhattacharya moved to Bombay, present-day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro, Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top-grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Harishankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Jafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An impaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Harishankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Harishankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य सितार वादन की इस प्रस्तुति का आरंभ राग दरबारी के साथ करेंगे। यह बंदिश आलाप और जोड़ के साथ शुरू होगी, जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
1: पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी। बिगिनिंग विद आलाप एंड जोड़, द कंपोजिशन ऑफ द राग is set to gat in vilambit teen tal followed by madhyalaya teen tal।

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You were listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छाया नट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आवद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य कंक्लूड्स हिज प्रेजेंटेशन विद राग जिला काफी, बिगिनिंग विद आलाप। The composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांतो दे रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू राग जिला काफी इन द सितार रिसाइटल बाय पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय प्रशांतो दे रॉय।
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: एंड विद दिस वी एंड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वाज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कोलकाता।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी

0: शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका की विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-US strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
3: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
2: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA.